में आई एक फिल्म जिसने सब कुछ बदल दिया। फिल्म उतनी हिट हुई कि उस वक्त के एक संघर्ष कर रही फिल्म कंपनी को डूबने से बचा दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि रिन टिन टिन की सफलता ने वॉर्नर ब्रदर्स को उस मुश्किल दौर से निकलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सोचिए, एक पपी जो कभी युद्ध के मैदान में अकेला पड़ गया था, अब हॉलीवुड का सुपरस्टार बन चुका था। उस वक्त रिन टिन टिन हर हफ्ते इतना पैसा कमाता था जितना कई बड़े एक्टर्स भी नहीं कमा पाते थे। हजारों फैन लेटर्स आते, बच्चे उसके दीवाने थे, उसकी फिल्में हाउसफुल चलती थी। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी बाकी है। उस समय अमेरिका में एक अजीब सा माहौल था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद लोग जर्मनी से जुड़ी हुई हर चीज से नफरत करने लगे थे और जर्मन शेफर्ड डॉग्स भी इस नफरत का शिकार बन रहे थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके नाम में जर्मन शब्द था। लोग उन्हें अपनाना ही नहीं चाहते थे, कई जगह उन्हें छोड़ दिया जाता था, अबैंडन कर दिया जाता था। लेकिन फिर एक चेहरा सिनेमा की स्क्रीन पर चमका, हमारा रिन टिन टिन। लोगों ने पहली बार जर्मन शेफर्ड को एक वफादार दोस्त के रूप में देखा, एक हीरो के रूप में देखा, एक प्रोटेक्टर के रूप में देखा। और धीरे धीरे वही ब्रीड जो लोग छोड़ रहे थे, अमेरिका की सबसे पसंदीदा डॉग ब्रीड्स में शामिल हो गई। सोचिए, अगर उस दिन ली डंकन रुकते नहीं, अगर वो सिर्फ एक सिपाही बनकर आगे बढ़ जाते, तो शायद रिन टिन टिन की कहानी कभी लिखी ही नहीं जाती। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा हीरो वो नहीं होता जो दुनिया जीत लेता है, हीरो तो वो होता है जो किसी कमजोर को गिरने से बचा लेता है। एक छोटा सा फैसला, एक छोटी सी दया, एक पल की इंसानियत कभी कभी सदियों तक याद रहती है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि काइंडनेस कभी वेस्ट नहीं जाती। आप नहीं जानते कि आपका एक छोटा सा अच्छा काम किसी और की पूरी दुनिया बदल सकता है। तो अगली बार जब आप किसी बेघर जानवर को देखें या किसी जरूरतमंद को देखें, तो एक पल के लिए रुक जरूर जाइएगा। हो सकता है कि उस पल में किसी और की पूरी कहानी बदल जाए, जैसे ली डंकन ने बदल दी, जैसे रिन टिन टिन ने दुनिया को सिखा दिया कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी हो, अगर हौसला और प्यार साथ हो, तो अंजाम इतिहास बना सकता है। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, और फिर मिलूंगी आपसे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की और उधर की। नमस्कार।

कर रहा है और असली बहादुरी बेबस पर वार करने में नहीं होती। अब आया 20 दिसंबर 1943, यूरोप का आसमान, बर्फीली हवा और एक जर्मन फाइटर पायलट फ्रांस स्टिगलर, अनुभव से भरपूर, बहादुर और अपने देश के लिए लड़ने वाला सिपाही। उस दिन उसके सामने आया एक अमेरिकन बॉम्बर प्लेन B-17, लेकिन वो प्लेन का उड़ता हुआ मलबा ज्यादा लग रहा था। उसके शरीर में इतने बड़े बड़े छेद थे कि अंदर बैठे हुए घायल सिपाही दिख रहे थे। टेल गनों की जगह टूट चुकी थी, कई क्रू मेंबर्स खून से लथपथ थे। प्लेन मुश्किल से हवा में टिक पा रहा था। फ्रांस स्टिगलर के लिए ये आसान मौका था, बस एक बटन दबाना था और कुछ ही सेकंड्स में वो प्लेन हवा में बिखर जाता, तितर बितर हो जाता। लेकिन उसका फर्ज था और यही उसके ऑर्डर्स थे और शायद यही उसके देश की उम्मीद भी थी। लेकिन उसने बटन नहीं दबाया। क्यों? क्योंकि उसने प्लेन नहीं देखा, उसने इंसान देखे। उसने दुश्मन नहीं देखा, उसने घायल लोग देखे। उसके मन में एक बात आई, ये लोग तो वैसे ही हैं जैसे पैराशूट से लटकता हुआ कोई बेचारा सा सिपाही। और उस अनलिखे नियम ने उसकी उंगली ट्रिगर से हटा दी। सोचिए, एक तरफ ड्यूटी और दूसरी तरफ इंसानियत, एक तरफ मेडल और दूसरी तरफ दया। और उसने क्या चुना? इंसानियत और दया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। फ्रांस ने सिर्फ प्लेन को नहीं छोड़ा, वो उसके साथ साथ उड़ता रहा। क्यों? ताकि दूसरे जर्मन पायलट्स उस पर हमला ना कर दें, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स उसे निशाना ना बना दें। एक दुश्मन अपने ही दुश्मन की सुरक्षा कर रहा था। जब दोनों प्लेन समुन्दर के पास पहुंचे, फ्रांस ने अमेरिकन पायलट की तरफ देखा। अमेरिकन पायलट का नाम था चार्ली ब्राउन। दोनों की नजरें मिली और चार्ली को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। फ्रांस ने बस हल्का सा सल्यूट किया और अपना प्लेन मोड़कर वापस चला गया। चार्ली ब्राउन अमेरिका लौट आया, उसकी पूरी क्रू बच गई। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहा, कौन था वो जर्मन पायलट और उसने मुझे क्यों बचाया? समय बीतता गया, जंग खत्म हो गई, लोग अपनी जिंदगी में लौट गए। 50 साल बीत गए, 50 years, लेकिन चार्ली ब्राउन उस चेहरे को कभी नहीं भुला पाया। उसने उस जर्मन पायलट को ढूंढना शुरू किया, पुराने रिकॉर्ड्स देखे, लोगों से बात की, लेटर्स लिखे, मिलिट्री फाइल्स खोजी। और फिर 1990 में एक चमत्कार हुआ, उसे पता चल गया फ्रांस स्टिगलर जिंदा है। दोनों मिले पूरे 50 साल बाद। ना यूनिफॉर्म थी, ना जंग थी, ना हथियार, सिर्फ दो बुजुर्ग आदमी, एक जर्मन और एक अमेरिकन। और जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आए, वो जोर से गले लग गए, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। सोचिए, एक पल का फैसला 50 साल बाद भी दो दिलों को इस तरह जोड़ सकता है। उसके बाद दोनों गहरे दोस्त बन गए, फेस्टिवल साथ मनाए, एक दूसरे के घर गए, फैमिलीज मिली और जब तक जिंदा रहे एक दूसरे को भाई कहते रहे। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो कौन है? फ्रांस, चार्ली या वो अनलिखा नियम? मुझे लगता है हीरो वो पल था जब एक इंसान ने यूनिफॉर्म से पहले अपने दिल की बात सुनी। हम अक्सर सोचते हैं कि बहादुरी सिर्फ जीतने में होती है, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी माफ कर देने में होती है, दया दिखाने में होती है।

और सही काम करने में होती है, और वो भी तब जब कोई आपको देख नहीं रहा। आज के जमाने में हम सोशल मीडिया पर अच्छाई दिखाने के लिए फोटो खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन असली नेक काम वो होता है जिसका कोई कैमरा ही नहीं हो, कोई ताली नहीं हो, कोई सर्टिफिकेट नहीं हो, सिर्फ आप और आपका जमीर। फ्रांस स्टिगलर को उस दिन शायद किसी ने मेडल नहीं दिया, लेकिन उसने एक पूरी क्रू को घर पहुंचने का एक मौका दिया। किसी माँ का बेटा बच गया, किसी बच्चे के पिता बच गए, और किसी पत्नी के पति वापस आ गए। और शायद इंसानियत का असली मतलब यही है। तो दोस्तों, आज जब आप भी किसी से गुस्सा हो या किसी को सिर्फ इसलिए गलत समझने लगे क्योंकि वो दूसरी तरफ का है, तो एक बार फ्रांस और चाली को याद कर लीजिएगा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, मिलूंगी फिर आपसे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की और उधर की। तब तक के लिए याद रखिए, असली जीत हमेशा इंसानियत की ही होती है। नमस्कार।

एक ब्रांड, एक फैसला और इतिहास का वो दाग जो आज भी धुलता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, हम सब लोग कभी ना कभी किसी ब्रांडेड शोरूम के बाहर रुकते जरूर हैं। कभी किसी शर्ट को देखकर कहते हैं, वाह क्या ब्रांड है, क्या क्वालिटी है, क्या फिट है। कभी किसी सूट पर लिखा नाम देखकर लगता है, इस कंपनी का तो बहुत नाम है भाई। लेकिन क्या हर बड़ा नाम हमेशा एक खूबसूरत कहानी लेकर आता है? या कभी कभी किसी चमकते हुए लोगों के पीछे इतिहास का एक अंधेरा सा छुपा होता है? आज की कहानी किसी कपड़े की नहीं, किसी फैशन शो की नहीं, बल्कि एक फैसले की है जो बिजनेस को आसमान तक ले गया, लेकिन इंसानियत की नजरों में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ गया। और शुरुआत होती है एक छोटी सी सिलाई की दुकान से, एक छोटा सा दर्जी और उसके बड़े बड़े सपने। साल था 1930, जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा। एक दर्जी जिसके पास पैसे कम हो रहे थे और काम लगभग बंद था, कर्ज बढ़ता जा रहा था और उसकी दुकान में बस कुछ ही सिलाई मशीन्स बची थी। और हर सुबह वो दुकान खोलता लेकिन ग्राहक नहीं आते। उसे लगने लगा था कि शायद उसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर उसे एक मौका मिला, एक ऐसा मौका जिसने उसकी कंपनी को बचा लिया। लेकिन उस मौके की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं चुकाई गई। उस दर्जी का नाम था ह्यूगो फर्डिनेंड बॉस। 1931 में उन्होंने नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली। बाद में वो एसएस के स्पॉन्सर मेंबर भी बने। उस वक्त जर्मनी में अडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी तेजी से मजबूत हो रहे थे और जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ा वैसे वैसे यूनिफॉर्म्स की डिमांड भी बढ़ने लगी। आर्मी के लिए यूनिफॉर्म्स, एसएस के लिए यूनिफॉर्म्स, हिटलर यूथ के लिए यूनिफॉर्म्स, और ये सारे ऑर्डर्स ह्यूगो बॉस की फैक्ट्री को मिलने लग गए। एक छोटी सी टेलरिंग वर्कशॉप धीरे धीरे एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। बिजनेस तेजी से बढ़ा, कमाई बढ़ी, फैक्ट्री बढ़ी और नाम बढ़ा। लेकिन हर सिलाई के साथ एक और चीज भी जुड़ती गई, एक नैतिक बोझ। कभी सोचा है कपड़े सिर्फ शरीर नहीं ढकते दोस्तों, कभी कभी वो एक विचारधारा का पहनावा होते हैं। यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा नहीं होती, यूनिफॉर्म एक पहचान होती है, एक जिम्मेदारी होती है और कभी कभी एक डर की निशानी बन जाती है। जिन यूनिफॉर्म्स

को ह्यूगो बॉस की कंपनी बना रही थी, उन यूनिफॉर्म्स को पहनकर लाखों लोगों ने दुनिया भर में अत्याचार किए। ये बात भी इतिहास का हिस्सा है कि ह्यूगो बॉस ने नाजी यूनिफॉर्म्स का निर्माण किया, हालांकि उन्होंने उनका डिजाइन नहीं बनाया था, डिजाइन अलग लोगों ने तैयार किया था, लेकिन उन यूनिफॉर्म्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन उनकी फैक्ट्रीज में हुआ था। जंग बढ़ती गई, ऑर्डर्स बढ़ते गए, और फिर युद्ध के दौरान फ्रांस और अन्य जगहों से लाए गए फोर्स लेबरर्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर को फैक्ट्री में काम करवाया गया। सोचिए, जो लोग खुद युद्ध के शिकार थे, उनसे वही यूनिफॉर्म सिलवाई जा रही थी जिन्हें पहनकर उनके देश पर कब्जा किया गया। ये इतिहास का बहुत कठिन और दर्दनाक पहलू है, और इसीलिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सिर्फ सक्सेस नहीं, उस सक्सेस की कीमत को समझना जरूरी है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, हिटलर का अंत हुआ, जर्मनी हार गया, और फिर शुरू हुई जवाबदेही। कई लोगों से पूछा गया कि आपने क्या किया, किसका साथ दिया और क्यों। ह्यूगो बॉस पर भी जांच हुई, उन्हें नाजी रिजीम का सपोर्टर और उससे लाभ उठाने वाला एक व्यक्ति माना गया। उन पर जुर्माना लगाया गया, कुछ सालों बाद उनका देहांत हो गया, लेकिन कंपनी बंद नहीं हुई, कंपनी चलती रही, बढ़ती रही, और आज भी दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी फैशन ब्रांड्स में से एक है। आज का ह्यूगो बॉस वही कंपनी नहीं है जो 1930 के दौर में थी। कंपनी ने अपने इतिहास को माना है, पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए हैं, फोर्स्ड लेबर के इतिहास को एक्सेप्ट भी किया है, और समय के साथ अपनी अलग पहचान भी बनाई है। लेकिन इतिहास मिटता नहीं, वो सिर्फ याद दिलाता रहता है। दोस्तों, ये कहानी किसी एक कंपनी की बुराई या तारीफ की नहीं है, ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है। अगर सफलता का रास्ता गलत फैसलों से होकर गुजरता हो तो क्या वो सफलता वैसे ही चमकती है? बिजनेस में प्रॉफिट जरूरी है, लेकिन प्रिंसिपल्स उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। पैसे कमाना गलत नहीं, लेकिन पैसा किस तरह कमाया गया, ये सवाल भी उतना ही जरूरी है। हर जनरेशन को ये याद रखना चाहिए कि एक फैसला सिर्फ आज नहीं बदलता, कभी कभी वो अगले 100 साल तक याद रह जाता है। दोस्तों, जब भी आप किसी ब्रांड का नाम देखिए, उसकी क्वालिटी जरूर देखिए, लेकिन कभी कभी उसकी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि हर लोगों के पीछे एक हिस्ट्री होती है। कुछ कहानियां गर्व से सुनाई जाती हैं और कुछ सिर्फ हमें इतना याद दिलाती हैं कि सफलता और इंसानियत दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा। हम फिर मिलेंगे एक और अनोखी कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की और उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, जीवन के उस दौर से गुजर रहा हूँ, पुराने गाने सुनूं तो बीवी कहती है किसकी याद में मरे जा रहे हो, और अगर नए गाने सुनूं तो कहती बड़ी जवानी छा रही है।

दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर आएंगे। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। आज सबसे पहले सुनते हैं ये गीत, शीर्षक है रीछ।

0: अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, काव्य रचना प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार महेश प्रभाकर, गायन स्वर देवाशीष, धीरा घोष, अनुपमा, मेघा, दीक्षा, संस्कृति, राशि और अनुराग, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
5: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
6: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत

0: तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए, प्रेरणादायक गीतों के साथ, और करते हैं प्रेरणादायक बातें।
1: Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata.
0: दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए। आइए दोस्तों सुनते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, सुभाष दीपक जी द्वारा लिखी हुई, बुआ जी। चार बेडरूम का प्राइम लोकेशन पर बना हुआ वो एक शानदार मकान था, दूर से ही देखने वालों को आकर्षित करता था। इस मकान में रहती थी इंदिरा बुआ। अब आप पूछ सकते हैं ये इंदिरा बुआ कौन है? हम बता देते हैं, इंदिरा बुआ वो शख्सियत हैं जिनके बारे में बताने की यूं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी पहचान है। उनकी चाल ढाल, उनके बात करने का अंदाज, यहां तक कि उनकी मौजूदगी, और मौजूदगी ही क्यों, उनका जिक्र मात्र उनका पूरा इतिहास खोल के रख देता है। इतने बड़े मकान में इंदिरा बुआ अकेले ही रहती थी शुरू से, लेकिन ऐसा नहीं था। भरे पूरे इस मकान की चहल पहल में तमाम मोहल्ले के लोगों की दिलचस्पी होती थी। वहां क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, सब में लोग नजर गड़ाए रहते थे। कहते हैं ना कि सब दिन एक समान नहीं होते। जाने विधाता की क्या मर्जी थी कि एक एक करके परिवार के सदस्य रुखसत होने लगे और इतने बड़े मकान में केवल इंदिरा बुआ ही रह गईं, और साथ में रह गया उनका सबसे छोटा बेटा। इंदिरा बुआ की बढ़ती हुई उम्र और उनके बेटे की कच्ची वय को देखकर उनके शानदार मकान को हड़पने वालों को चाले चलने के मौके मिल गए। पहले तो उन्होंने घर के बेटे को लपेटने की कोशिश की, लेकिन बुआ के कठोर अनुशासन के चलते वो सफल नहीं हो पाए। बस उसे उन्होंने नशेड़ी जरूर बना डाला। इसमें भी जब उनका मतलब नहीं निकला तो उन्होंने तड़कम लगाकर उसे जाने कहां गायब करवा दिया। बेचारी औरत जात बुआ ने भर कस हाथ पैर चलाए, लेकिन वो उसे ढूंढ निकालने में कामयाब नहीं हो सकी। आखिरकार उन्होंने हथियार तो डाल दिए, लेकिन हालात को एक चुनौती के रूप में तब्दील कर डाला। अब उनका यह सिद्धांत हो गया कि अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम सबके हो जाओ, तुम्हारे पास कोई नहीं आता तो तुम सबके पास चले जाओ। वाह, ये फार्मूला कामयाब हुआ, और न केवल अपने मोहल्ले वालों के लिए बल्कि आसपास की कॉलोनियों में रहने वालों के लिए भी वो जरूरत बन गई। कोई भी बड़ा काम हो, चाहे शुभ हो चाहे गमी वाला हो, नेतृत्व करती हुई बुआ ही नजर आ दी। उनकी राय सर्वोपरि हो चली। एक बार उनके शहर में एक फिल्म की शूटिंग करने वाली यूनिट ने डेरा डाला। अब उसकी व्यवस्था करने वाला ठेकेदार बुआ के मोहल्ले में ही रहता था। लोग लगे उसकी मन्नतें करने की उन्हें शूटिंग दिखा दे। बहुत शातिर था वो। उसने मौके का फायदा उठाने की नीयत से कुछ खूबसूरत सी दिखने वाली लड़कियों को बरगला लिया और उन्हें शूटिंग दिखाने के बहाने ले जाने का प्लान सेट कर लिया। बुआ जी को इसकी भनक लगने की देर थी कि वो भूखी शेरनी की मानिंद दहाड़ उठी। अरे अकल के दुश्मनों, क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हें बेचकर वो खा जाता और सारी जिंदगी तुम अपनी किस्मत को कोसती रहती। लड़कियां तो संभल गईं, लेकिन बुआ यही नहीं रुकी। सीधे पहुंच गई फिल्म निर्माता के पास। उसे जाने क्या समझाया कि वो अगले ही दिन पैकअप का आदेश दे बैठा। कहते हैं बुआ ने उसे एक मंत्र का डर दिखाया था जिससे उसकी फिल्म हमेशा के लिए डब्बे में बंद होकर रह जानी थी। बात सब जगह फैल गई और बुआ के तकदीर के भी दरवाजे खुल गए। अब तो आए दिन बुआ के पास कोई ना कोई व्यापारी, तो कभी कोई साहूकार, तो कभी कोई सटोरिया बैठा ही मिलता। बुआ भी जबरदस्त नाटकबाज निकली। कुछ कौड़ियों को हाथ में घुमा घुमाकर पहले फेंकती और फिर एक रहस्यात्मक तरीके से मंत्र बोलते हुए कुछ गिनती करती और अपना रिजल्ट उनके कान में बोल देती। भगवान ही जैसे सब करवा रहा था समझिए। उसकी गणना सटीक बैठने लगी और लोग निहाल होने लगे। जल्द ही कारों वाले बुआ जी के दरवाजे पर खड़े इंतजार करते नजर आने लगे। बुआ अब वो बुआ नहीं रह गई थी, लेकिन एक दिन गजब हो गया। बुआ की कौड़ियां ही कोई चुरा कर ले गया। इन्हीं कौड़ियों में ही तो बुआ के प्राण बसते थे। कौड़ियां नहीं रही तो बुआ जी कैसे रहती। लेकिन जाते जाते वे इतना कह गई कि जिसने भी कौड़ियां चुराई हैं वो खुद कौड़ियों के भाव बिक जाएगा। शायद ऐसा ही हुआ भी होगा, क्योंकि उनका कहा कभी गलत तो होता नहीं था ना।
2: मैंने

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोचिए क्या होता अगर रजनीकांत 150 साल पहले पैदा होते। आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को लड़नी पड़ती।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो

अर्जुन के सच्चे सपूतो उठो, और कलयुग में सतयुग के दूतो उठो, कंस का

मनुष्यों की पहचान उनके कपड़ों से नहीं होती है, स्वामी विवेकानंद। एक बार स्वामी विवेकानंद के एक विदेशी मित्र ने जब उनके गुरु से मिलने की इच्छा जताई तो रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद वो मित्र उनके पहनावे पर कमेंट करने लगा और कहा कि आप जैसे व्यक्तित्व का चरित्र निर्माण करने वाले ये कैसे गुरु हैं जिन्हें कपड़े पहनने का भी सलीका नहीं है। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत विनम्रता से कहा, आपके देश में चरित्र का निर्माण दर्जी करता होगा, लेकिन हमारे भारत में चरित्र का निर्माण आचार विचार से होता है।

क्या आपको पता है बैंगनी रंग किसी भी राष्ट्र के ध्वज में इस्तेमाल नहीं होता। अब यह है ना बड़ी रोचक बात, क्या वजह है? क्या आपको पता है किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग उसकी आन बान शान होता है। देश का हर नागरिक, सेना और उसकी सरकारें झंडे के मान सम्मान के लिए हर कदम उठाती हैं। झंडों पर नजर आने वाले रंग के मायने होते हैं। जैसे भारत के तिरंगे में केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, वहीं सफेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक है और हरा रंग संपन्नता की निशानी है। इसी तरह अलग अलग देशों के झंडों का मतलब भी अलग अलग होता है। मगर क्या आपने कभी किसी भी देश के राष्ट्रीय ध्वज में पर्पल कलर, बैंगनी कलर देखा है? शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि झंडों में बैंगनी रंग बेहद दुर्लभ है। इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही रोचक वजह है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वर्ल्ड मीटर्स वेबसाइट के अनुसार दुनिया में 195 देश हैं। इनमें से सिर्फ 2 देश ही ऐसे हैं जिनके राष्ट्रीय ध्वज पर बैंगनी रंग दिखाई देगा। बाकी दुनिया के किसी भी देश के झंडे पर पर्पल रंग नहीं है। इसके पीछे की वजह भी काफी रोचक है। दरअसल 1800 के वक्त तक बैंगनी रंग को बनाना बहुत ही कठिन और महंगा हुआ करता था। क्वीन एलिजाबेथ ने तो यह घोषणा कर दी थी कि रॉयल फैमिली के अलावा कोई भी बैंगनी रंग नहीं पहनेगा। इस वजह से बैंगनी रंग को हासिल करना आम लोगों की बस की बात नहीं थी। बैंगनी रंग को हासिल करना भी बहुत मुश्किल था। दरअसल उन दिनों बैंगनी रंग लेबनान के छोटे समुद्री घोंगे में पाया जाता था, जिसे जुटाना बहुत मुश्किल था। 1 ग्राम बैंगनी रंग बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा घोंगे मार दिए जाते थे जिनमें वो रंग निकलता था। इसके बाद डाई बनाने के लिए भी उसमें बहुत मेहनत लगती थी और डाई का खर्च भी बहुत ज्यादा था। उन दिनों 1 पाउंड बैंगनी डाई खरीदने का खर्च 41 लाख रुपए से भी ज्यादा था। इस कारण से देशों ने अपने झंडों में बैंगनी रंग रखना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि 1856 में विलियम हेनरी परकिन सिंथेटिक बैंगनी डाई बनाने में कामयाब हुए, जिसके बाद इसकी कीमतें कम होने लगी। मगर देशों ने फिर भी बैंगनी रंग को त्याग ही दिया। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि वो 2 देश कौन हैं जिनके झंडे में बैंगनी रंग है? अब आपको हम उन देशों के बारे में बताते हैं जिनके झंडे में बैंगनी रंग दिखाई देता है। पहला देश है डोमिनिका, जिसके ध्वज को साल 1978 में अपनाया गया था। दूसरा देश है निकारागुआ, जिसके ध्वज को 1908 में अपनाया गया था और इसे आधिकारिक मान्यता 1971 में मिली। स्पेन के राष्ट्रीय ध्वज में भी कुछ वक्त तक बैंगनी रंग देखने को मिला था, उसके बाद हट गया। क्या वजह रही जो नैनो कार फेल हो गई? 2009 में टाटा की नैनो कार के लॉन्च होने से पहले इसको लेकर चर्चा का बाजार बहुत गर्म था। लोग इस कार को लेकर तरह तरह के सपने देख रहे थे, लेकिन लॉन्च के पहले टाटा नैनो को जो शोहरत हासिल हुई थी, मार्केट में आने के बाद उस हिसाब से उसकी बिक्री नहीं हुई, या यूं कहा जाए कि टाटा की नैनो मार्केट में धड़ाम से गिर पड़ी। आखिर टाटा की नैनो का यह दुर्भाग्य क्यों हुआ? इसको समझने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स की सबसे पसंदीदा किताब जॉन ब्रुक्स द्वारा लिखी गई इट इज बिजनेस एडवेंचर से मदद मिल सकती है। इस पुस्तक के एक अध्ययन में एडसल कार का जो दुर्भाग्य हुआ था, उसी पर विस्तृत चर्चा की गई है। 1955 में फोर्ड मोटर कंपनी ने $2,400 से $4,000, मतलब 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच की कीमत की एक कार मैन्युफैक्चर करने की घोषणा की। इस कार को लेकर भी उस समय बहुत शोर था, जैसा टाटा नैनो को लेकर हुआ। कार का नाम फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड के बेटे एडसल फोर्ड के नाम पर एडसल रखने का फैसला लिया गया था। एडसल के हवुए ने लोगों के मन में कार को लेकर कल्पनाओं और सपनों की झड़ियां लगा दी। इसके इर्द गिर्द जो हवा खड़ा किया गया, उससे सब सोचने लगे थे कि यह आम कारों से कुछ हटकर होगी। जब 1957 में इसे मार्केट में उतारा गया तो लोगों ने देखा कि यह तो कार आम कारों की ही तरह है, इसमें भी 4 पहिए लगे हैं और एक इंजन है, तो उनका कार से मोह भंग हो गया।
नतीजा यह हुआ कि कार बाजार में औंधे मुंह गिरी। फोर्ड को इस कार पर 20 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। बस यही कुछ कारण टाटा की नैनो को भी फेल होने पर रहा। 2009 में लॉन्च की गई नैनो की सेल्स 2010-11 में और 12-13 में टाटा मोटर्स की कुल सेल्स का 23-24% थी, लेकिन 2011-12 में 74,527 तक इसकी सेल्स पहुंचने के बाद अचानक इसकी मांग में बहुत जोरदार गिरावट आई। सिर्फ 2 साल के अंदर ही इसकी सेल्स में 70% की गिरावट आई और इसकी सेल्स 2013-14 में 21,129 पर सिमट के रह गई। जबकि टाटा मोटर्स ने गुजरात के सदानंद में 2,50,000 नैनो प्रतिवर्ष उत्पादन के लिए फैक्ट्री भी बनाई थी। आमतौर पर यह होता है कि जब किसी प्रोडक्ट को लेकर ज्यादा हवा खड़ा कर दिया जाए तो लोग तरह तरह की कल्पनाएं करने लगते हैं और कुछ अलग होने का सपना देखने लगते हैं। जब हकीकत कुछ और होती है तो वो खुद को बहुत ठगा हुआ सा महसूस करते हैं और प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाता है।

संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा।

जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए। सारे घर वालों और मोहल्ले वालों को बड़ा अजीब सा लगा था जब राघव ने अपने जन्मदिन पर घोड़े के बच्चे की मांग रख दी और पिता ने उसे पूरा भी कर दिया। शायद राघव ने अपने पिता से इंद्र के घोड़े, उच्चेश्वा की या महाराणा प्रताप के चेतक की कहानियां सुनी होंगी। अब राघव की उम्र उस समय कुल 12 वर्ष ही तो थी। वो अपने अनोखे उपहार को पाकर खुशी से झूम उठा। उसने अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल वस्तु पा ली थी। अब उसकी सुबह, दोपहर और शाम बस उसी के नाम होती थी। आपस में दोनों इतने घुलमिल गए थे कि उन्हें किसी अन्य दोस्त या दुनिया की परवाह ही नहीं थी। पढ़ाई में भी उसका मन जरा अब कम लगने लगा। वक्त बीत गया। राघव अब 20 साल का होने को आया था। उसका घोड़ा, जिसका नाम उसने बहादुर रखा था, वो भी अब मजबूत कदकाठी का जवान घोड़ा हो गया था। राघव की पिता की मृत्यु के बाद घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। खर्चा चलाने के लिए उसने निर्णय लिया कि अपने घोड़े बहादुर से तांगा चलवाया जाए। उसने बहुत प्यार से अपने घोड़े को तांगे में जोतने का काम किया और तांगा स्टैंड में लेकर आया। हमेशा की तरह उसका ध्यान यही रहता कि कहीं उसके बहादुर को कोई पीड़ा ना हो। कुछ ही देर में एक दरोगा ने आकर उसे अपने गांव चलने के लिए कहा। सौदा 100 रुपए में तय हुआ। उसने बड़े प्यार से पुचकार कर अपने बहादुर को चलने के लिए तैयार कर लिया। बहादुर भी अपने राघव की हर बात मानने को तैयार ही रहता था। करीब 10 किलोमीटर का लंबा सफर था। दरोगा घोड़े की धीमी चाल से खींच रहा था और बार बार राघव को घोड़ा तेज चलाने के लिए ताकीद कर रहा था। राघव का दिल बैठा जा रहा था। वो पहली बार बहादुर को तांगे में जोत कर जो लाया था, अब ये बात वो 2-3 बार दरोगा से कह भी चुका था, लेकिन दरोगा बात को अनसुनी कर रहा था। राघव समझ नहीं पा रहा था कि बहादुर को तांगे में जोतने का उसका निर्णय सही है या गलत। वो कभी अपनी गरीबी को कोसता तो कभी अपनी सोच को कि क्या कर बैठा मैं। तांगे के धीरे चलने से अचानक दरोगा का गुस्सा तेज हो गया और उसने वहां पर पड़ी हुई चाबुक उठाकर 2-3 वार घोड़े पर कर दिए। राघव एकदम दर्द से कराह उठा, जैसे वो चाबुक घोड़े पर नहीं उसी पर पड़ी हो। एक बार तो उसे ऐसा लगा कि इसी चाबुक से दरोगा की पिटाई कर डाले, लेकिन किसी तरह वो अपने गुस्से को बस पी गया। सारे रास्ते वो अपने घोड़े बहादुर के बारे में ही सोचता रह गया। दरोगा के आगे वो बेबस था, वरना कोई और होता तो उसे वहीं उतार फेंकता। वो घर आकर उसने घोड़े को तांगे से अलग किया और उसके स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया। उसे लगा कि घोड़ा कातर दृष्टि से उसकी तरफ देखे जा रहा है। तुरंत वो जाने क्या सोचकर घोड़े से लिपट गया और बड़ी देर तक बस वैसे ही बना रहा। थोड़ी देर बाद उसकी मां ने जब उसे इस हालत में देखा तो उससे रहा नहीं गया। चलकर वो उसके पास आई और सांत्वना के लिए जैसे ही उसने राघव की पीठ पर हाथ फेरा, वो दर्द से चीख पड़ा। क्या हुआ? उसकी मां ने पूछा। कुछ नहीं, उसने उत्तर दिया। कुछ नहीं कैसे? कहकर उसकी मां ने उसकी पीठ को उघाड़ दिया। वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी पीठ पर चाबुक मारने के ताजे निशान बने हुए थे और उनमें से खून छलक रहा था।

0: wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
1: दोस्तों आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, कल फिर मिलता हूँ।
2: Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata.
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, झाबुआ की आवाज।
7: मंगल पांडे।
8: सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सन 57 की जय कहानी। कहानी जय है बड़ी पुरानी, मंगल पांडे वीर बड़ा था, अंग्रेजों से खूब लड़ा था, देशभक्त था वह बलिदानी। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सन 57 की जय कहानी।
9: दादी जी। अरे आशीष, दीपिका आओ आओ, कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
10: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
9: हाँ पूछो।
10: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
9: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
10: अच्छा।
9: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
10: अच्छा।
9: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था, देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
11: अच्छा।
9: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
10: ओह, मंगल पांडे।
9: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
11: अच्छा।
9: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी। सही कहे।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
6: नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं।
5: भले ही हमें फांसी के तख्त पर झूलना पड़े,
6: बिल्कुल नहीं देंगे।
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
5: भाइयों, उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
7: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
8: मंगल पांडे
9: जिंदाबाद,
8: मंगल पांडे
9: जिंदाबाद,
8: इंकलाब
9: जिंदाबाद,
8: इंकलाब
9: जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
10: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
0: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
5: अरेस्ट करो, मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
0: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहाँ से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: Tom, bind a cow, take on a mountain high. Durant, hospital, Pedro!
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बलबेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए और उन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली मार दी, स्वाधीनता का बिगुल बजाया और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। क्रांति के पुजारी की चिता की राख से निकली चिंगारी आग का शोला बनकर निकली और चारों ओर फैल गई। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्य

0: കാര്യക്രമം മേരി ദുനിയ റേഡിയോ 90.8 FM ജാബുവ കി ആവാസ്
1: ബഹാദൂർ കശിക
2: കാശു ബേട്ടി തും ഓർ ദേവേന്ദ്ര നാഷ്ട കർലോ
3: माँ आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
2: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
3: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
2: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
3: अच्छा माँ।
4: माँ माँ
3: लो देवेंद्र भी आ गया।
4: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
2: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
3: ठीक है माँ।
4: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठ कर खाऊंगा।
3: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
5: ये बातचीत दिल्ली के किंग्सवे कैंप में रहने वाले भाटिया परिवार के बीच की है। पिताजी की किताबों की दुकान है, माँ घर में ही रहती हैं। पुत्री कशिका 8वीं कक्षा में और पुत्र देवेंद्र 6ठी कक्षा में पढ़ता है। 12 अप्रैल 1997 को इस घर में एक ऐसी घटना घटी जिससे कशिका भाटिया को हम हमेशा याद करेंगे। आइए सुनते हैं।
6: Send your bill for any internal damages.
7: Oh, thanks.
4: ये देखो दीदी, ये मारा।
3: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
4: अरे ये मारा।
3: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
4: बंद कर दिया होगा। ये तो देखो।
3: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
4: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
2: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
3: अच्छा माँ, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
8: हमें अंदर आने दो।
3: अरे क्यों?
9: ए लड़की रास्ते से हट जा।
3: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
8: लड़की हट। ये चाकू देख रही है ना?
9: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
3: अरे
9: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
3: क्या हुआ? देखो जल्दी आओ। ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
8: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
3: मेरी माँ को छोड़ दो।
8: ये चाकू देख रही है ना?
3: छोड़ दो मुझे, मत मारो। कुछ मत करो।
2: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
8: जल्दी।
2: याद नहीं कहाँ रखी है, छोड़ दो।
9: बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
2: अरे मेरे बात को छोड़ो,
3: मेरी माँ को छोड़ो।
8: चुप चुप, आवाज निकाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
9: सुनो इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
2: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
3: देवेंद्र।
4: हाँ दीदी।
3: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
4: हाँ।
3: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
4: अच्छा।
3: हेलो।
8: हाँ बेटा बोलो।
3: पापा। पापा।
8: हाँ बोलो बेटा।
3: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसा है।
8: कौन घुसा है?
3: माँ को बहुत मार रहे हैं।
8: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
3: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
4: अच्छा।
3: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ।
5: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
7: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
2: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
10: ऐसे बच्चे होने चाहिए,
7: देखो ना सबकी जान
2: बहादुर है मेरी बच्ची।
5: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।

0: डर था कि प्यास उसे रुलाएगा, आंखों में आंसू लाएगा, आलू कचालू को ये डर था।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: हड़प्पा संस्कृति, ये एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक सूत्रों और संदर्भों के आधार पर नाटक प्रारूप में निर्मित की गई है।
3: तो आनंद लीजिए इस हड़प्पा संस्कृति का।
2: जी हाँ,

आज से कोई 4000 साल पहले हमारे देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ बड़े बड़े नगर बसे हुए थे। इन्हीं में से एक प्रमुख नगर था मोइनजोदड़ो। मोइनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला।

जाहिर है कि जिस समय ये नगर फल फूल रहा था तब इसका नाम मोहनजोदड़ो नहीं रहा होगा, कुछ और ही रहा होगा। पर यहाँ की चौड़ी सड़कें, विशाल अन्न भंडार और सरोवर ऐसे ही रहे होंगे। यहाँ के रहने वालों का व्यापार दूर विदेशों तक फैला था। वे शांति प्रिय और कलात्मक रुचि के लोग थे। उनकी लिपि अभी तक सर्वमान्य ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन उनके अनेक नगरों की विस्तृत खुदाई की गई है, जिससे वहाँ के जनजीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। उसी आधार पर प्रस्तुत है एक काल्पनिक कथा।

0: क्या यही प्रसिद्ध व्यापारी शिमुक की दुकान है?
1: जी हाँ, यही है और मैं ही हूँ शिमुक।
0: जी
1: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
0: जी मैं लोथल नगर का एक व्यापारी हूँ, उदंग। रुई बेचने यहाँ आया था। मैंने सुना था आपके पास धातु की बनी एक से एक सुंदर वस्तुएं हैं, बस देखने के लोभ से चलाया।
1: आज्ञा कीजिए, क्या दिखाऊं? धातु के हथियार, औजार या फिर मूर्तियां, आभूषण?
0: कोई सुंदर सी मूर्ति दिखाइए।
1: हाँ, ये देखिए।
0: हाँ।
1: कांसे की बनी हुई नर्तकी, कमर पर हाथ रखे ऐसे खड़ी है मानो नाचते नाचते पल भर के लिए रुक गई हो।
0: हाँ, अच्छी तो है मगर।
1: अच्छा, इसे छोड़िए, ये हार देखिए।
0: हाँ।
1: अभी दो दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है। सोने की पत्तियों के बीच कीमती पत्थर के कितने सुंदर फूल गढ़े हैं कारीगर ने।
0: वाकई बहुत सुंदर है।
1: तो ठीक है, इसे ले जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से दिलमन तक ऐसा सुंदर हार किसी और व्यापारी के पास नहीं होगा।
0: वो तो ठीक है, पर ये तो काफी महंगा होगा। दरअसल मैंने अपनी रुई बेचकर उसके बदले आपके नगर से अनाज खरीद लिया है। अब मेरे पास इस हार को खरीदने लायक रकम नहीं है।
1: तो क्या हुआ, आप तो इधर आते रहते होंगे।
0: जी हाँ।
1: तो फिर आप ये हार ले जाइए, इसकी कीमत अगली बार दे दीजिएगा।
0: मगर।
1: अब इसमें अगर मगर की क्या बात है, आपके पास आपकी मोहर तो होगी ही।
0: जी हाँ, वो तो मैं हमेशा अपने कमर बंद में रखता हूँ।
1: तो भी ठीक है, अपने इस सौदे की बाबत मिट्टी की पाटी पर लिखवा कर अपनी अपनी मोहर लगा देते हैं। जब आप अगली बार यहाँ आए तो रकम चुका दीजिएगा।
0: ठीक है, मुझे मंजूर है।
1: छुपन, अरे ओ छुपन।
2: आया माले।
3: जी माले।
1: देखो छुपन, ये लोथल नगर के बड़े व्यापारी हैं उदंग, इन्होंने ये सोने का हार खरीदा है, पर इसकी कीमत ये अगली बार देंगे। अब तुम झटपट मिट्टी की पाटी तैयार कर, उस पर इस सौदे की बावत लिखो और उस पर ये मेरी मोहर और ये इनकी मोहर लगा कर ले।
3: अच्छा वाले।
1: आइए उदंग
0: जी,
1: आप तब तक यहाँ आराम से बैठिए।
0: क्या पार्टी तैयार करने में देर लगेगी?
1: हाँ, कुछ देर तो लगेगी। क्या आप जल्दी में हैं?
0: नहीं, कोई विशेष जल्दी तो नहीं है। मेरा जहाज अन्न भंडार के पास रुका हुआ है, अनाज की लदाई चल रही है। मैं इस बीच नगर घूमने निकला था, सोचा था सरोवर तक जाऊंगा, देश विदेश के समाचार मिल जाएंगे। पर सामने आपकी दुकान देखकर रुक गया। हमारे लोथल तक भी आपकी दुकान की सुंदर वस्तुओं की बड़ी ख्याति है।
1: अच्छा, तो सरोवर देखने के लिए जा रहे हैं?
0: देखा तो पहले भी है, पर हर बार देखना अच्छा लगता है ना।
1: हाँ भाई, हमारे नगर की धड़कन है ये सरोवर, युवक युवतियों के मिलने जुलने की जगह। आज पूरे चंद्रमा की रात है, विशेष पर्व है। आज तो वहाँ न जाने कितने विवाह तय होंगे, कितने व्यापारिक सौदे तय होंगे। मेरी पत्नी और बेटी भी वहीं गई हुई हैं।
0: जी
1: चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
0: हाँ चलिए।

0: कोठरी खाली हो गई। अब तुम पहले कपड़े बदल आओ, सुंदर युवक को बाद में देख लेना।
1: माँ जाती हूँ।
2: इधर से आइए दर्द जी।
3: जी
2: आइए आइए
3: जी।
2: इनसे मिलो, ये मेरी पत्नी है और ये है उदंग, लोथल के एक बड़े व्यापारी।
4: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: बोझा नहीं दिखाई दे रही, क्या आप तक नहा रही है?
0: नहीं, कपड़े बदलने गई है, आ रही होगी।
2: ओ, और सुनाओ यहाँ के क्या समाचार है, कौन कौन आया है?
0: मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी एक सहेली का बेटा बहुत अच्छा कारीगर है। ऊपरले शहर के कई बड़े बड़े मकान और हवेलियाँ उसकी निगरानी में बने हैं।
2: हाँ हाँ याद आया,
0: वो भी यहाँ है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, आप स्वयं बात कर लीजिए।
2: हाँ हाँ ठीक है, बुला ला।
4: आप क्या कोई हवेली बनवा रहे हैं?
2: हाँ इरादा तो है, अभी तक हम लोग व्यापारियों और कारीगरों की निचली बस्ती में रहते आए हैं। अब मैंने ऊपरले शहर के एक पुराने धनी व्यापारी की हवेली खरीद ली है और उसे अपनी इच्छा अनुसार फिर से बनवाना चाहता हूँ।
4: जी
0: आओ बेटा।
3: जी
0: ये मेरे पति हैं, व्यापारी शिमुख।
3: नमस्कार।
2: प्रसन्न रहो। अरे भाई तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, इतनी छोटी सी उम्र में ही तुमने कारीगर के रूप में बड़ी ख्याति अर्जित कर ली है।
3: जी सब मातृ देवी की कृपा है।
2: अच्छा देखो, स्थान तो तुम्हारा देखा भला ही है।
3: जी
2: उसमें आंगन का कुआं बिल्कुल टूट फूट गया है, उसे पक्का करवाना है।
3: जी
2: उसके अलावा मवेशियों के लिए मुझे एक और प्रवेश द्वार चाहिए जिससे मुख्य द्वार पर गंदगी न हो।
3: जी
2: मवेशियों के रहने की जगह भी पक्का फर्श बिछवाना है। ऊपर की मंजिल पर कम से कम 2 नहान घर बनवाने हैं जिनके फर्श और नालियां पक्की ईंटों के बने हुए हों।
5: और पिताजी मेरे कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए जिनसे मुख्य सड़क दिखती हो।
2: लो भाई हमारी लाडली बेटी की फरमाइश का भी ध्यान रखना, बंद कमरे में इसका दम घुटता है। हा?
3: जी मैं समझ गया, काम कब से शुरू करना है?
2: जब से तुम चाहो, कल मेरी दुकान पर आकर आवश्यक सामान लिखवा देना, 2-4 दिन में ही सब मंगा दूंगा, बस फिर तुम काम भी शुरू कर देना।
3: जी बहुत अच्छा, मैं कल सवेरे दुकान पर आ जाऊंगा। अच्छा नमस्कार।
2: नमस्कार,
5: नमस्कार। पिताजी आपने अपने इन मेहमान से मेरा परिचय नहीं करवाया।
2: अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया भाई उदंग, ये मेरी बेटी है बोधा, और बोधा ये लोथल नगर के व्यापारी हैं उदंग।
4: नमस्कार।
5: नमस्कार। लोथल में ही तो वो जहाजों की गोदी बनाई गई है ना? सुना है समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसका पानी गोदी में भर जाता है और बड़े बड़े जहाज भी अंदर चले जाते हैं।
4: हाँ ये तो ठीक ही सुना है आपने,
5: पर एक बात बताइए, जब ज्वार के बाद भाटा आता है तब तो पानी घट जाता है, तो वो जहाज कीचड़ में धस नहीं जाते?
4: नहीं, गोदी में पानी को रोके रखने की व्यवस्था है, ज्वार का पानी अंदर आने के बाद उसके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया जाता है।
5: ओह।
4: तभी भाटे के समय पानी कम हो जाने पर भी जहाज काफी पानी में सुरक्षित खड़े रहते हैं।
5: तो ये गोदी बनवाने का ख्याल आप लोगों को कैसे आया?
4: दरअसल हमारे शहर का व्यापार के क्षेत्र में इतना नाम तो था नहीं कि दूर देश के व्यापारी वहां तक आते। हमारे यहाँ सिंधु जैसी चौड़ी और गहरी नदी भी नहीं है कि उसमें बड़े जहाज चल सकते, लेकिन हमारे यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती है।
5: अच्छा।
4: हमारे कारीगर मिट्टी के बर्तन भी बहुत अच्छे बना लेते हैं, फिर उत्तर पूर्व में खेतड़ी से अच्छा तांबा भी निकलता है, इसलिए लोथल के लोगों ने मिलजुल कर ये गोदी बनवाई जिससे हम भी व्यापार में प्रगति कर सके।
5: और क्या क्या है आपके लोथल में?
2: मेरी बेटी को दूर शहरों के बारे में जानने की बड़ी लालसा रहती है।
4: ये तो बड़ी अच्छी बात है।
0: जरा सुनिए।
2: क्या बात है?
0: आपके मित्र ने बोधा के लिए जिस लड़के की बात कही थी वो भी आज यहाँ आया हुआ है, उससे मिलेंगे नहीं?
2: हाँ हाँ लेकिन उदंक
0: वो तो बोधा से बात कर रहे हैं, चलिए इतने हम लोग उसे देख आते हैं।
2: अच्छा बोधा।
5: जी पिताजी।
2: मेरे मेहमान का ध्यान रखना, मैं और तुम्हारी माँ अभी आते हैं। हाँ
5: ठीक है पिताजी।

0: आइए हम उधर चलकर बैठते हैं।
1: हाँ चलिए।
0: अच्छा लोकल में तो बहुत कुछ है।
1: साफ सुथरा रखते हैं।
0: अच्छा तो आपका लोथल भी साफ सुथरा शहर है?
1: हाँ, आपके शहर जैसा भव्य तो नहीं है, लेकिन चौड़ी सड़कें हैं, पक्की नालियां हैं और नालियों के बीच बीच में कूड़ा जमा करने के लिए गहरे गड्ढे भी हैं।
0: अच्छा
1: इस मामले में दिलमन बिल्कुल उल्टा है।
0: क्या आप दिलमन भी गए हैं?
1: हाँ, व्यापार के सिलसिले में गया था। वहाँ के लोग सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखते।
0: काश मैं भी दूर दूर देशों की यात्रा कर सकती, व्यापार के तौर तरीके सीख सकती, लेकिन माँ कहती है ये सब तेरे काम नहीं है।
1: क्यों? अगर आपकी व्यापार में रुचि है तो इसमें बुराई क्या है? आपके पिता तो स्वयं एक बड़े व्यापारी हैं, आपको सब सिखा सकते हैं।
0: लेकिन वो तो बस ऐसी कोशिश में है कि कोई उपयुक्त वर तलाश करके मेरा विवाह कर दे।
1: ओ, हो सकता है विवाह के बाद आपको यात्रा करने और व्यापार सीखने का अवसर मिल जाए।
0: क्या मालूम।
2: बोधा, अरे बोधा तुम यहाँ हो, हम तुम्हें सरोवर के निकट ढूंढ रहे थे।
1: वो हम लोग बात करते करते इधर निकल आए।
2: अच्छा अच्छा, आप मातृ देवी के दर्शन करना चाहती हो तो चले।
1: आपकी बेटी कह रही थी कि उनकी व्यापार में बड़ी रुचि है, फिर आप।
2: अरे छोड़िए भी, व्यापार करना भी कोई लड़कियों का काम है।
1: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने दूर देशों की यात्रा की है, कई देशों में स्त्रियां इस तरह के काम करती हैं।
2: क्यों आप इस चिलफिरी लड़की का दिमाग खराब कर रहे हैं?
0: पिताजी,
2: ये सब करेगी तो फिर इसका विवाह कैसे होगा?
1: आप ऐसा वर तलाश कीजिए जो इन्हें ये सब करने की स्वतंत्रता दे।
2: फिर तो हो चुका विवाह, अरे ऐसा वर कहाँ मिलेगा?
1: अब ये इतना कठिन भी नहीं है। देखिए मुझे ही लीजिए, मैं बहुत दिनों से ऐसी पत्नी की तलाश में हूँ जो अपने गहनों कपड़ों के अलावा भी कुछ सोचती समझती हो।
2: यानी आप विवाहित नहीं है?
1: नहीं।
2: तो फिर वो हार आपने किसके लिए लिया है?
1: वो अपनी भावी पत्नी के लिए।
2: ओ, अच्छा अच्छा
1: जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपकी बेटी से।
2: आप ये निर्णय कुछ जल्दी में नहीं ले रहे हैं?
1: जी नहीं, जल्दी नहीं करूंगा तो शायद देर हो जाएगी।
2: क्यों बेटी, तुम्हारा क्या विचार है?
0: पिताजी।
2: अरे बोधा की माँ, इधर सुनो तो।
0: क्या बात है?
2: उदंक लोथल के बड़े व्यापारी हैं और अविवाहित हैं।
0: हाँ हाँ, ये सब आप मुझे बता चुके हैं।
2: ये अपनी बोधा से विवाह करना चाहते हैं।
0: क्या सच? क्यों बोधा?
2: लगता है बोधा को अपना मन पसंद साथी मिल गया है।
0: मातृ देवी की कृपा है, चलिए हम सब चलकर उनके दर्शन करें। आओ बोधा। चलो माँ। आओ बेटा, आइए।
1: चलिए।

इस कल्पित कथा में दो स्थानों का उल्लेख किया गया है, लोथल और दिलमन। ये दोनों स्थान कल्पित नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा और भी बहुत से नगर प्रकाश में आए हैं, जिनमें रूपड़, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, भगतराव आदि प्रमुख हैं। गुजरात के लोथल नामक स्थान की खुदाई से ये पता चलता है कि यहाँ गोदी थी, जहाँ समुद्री जहाज आकर रुकते थे। यहाँ एक ऐसे जलमार्ग का प्रबंध किया गया था जहाँ ज्वार के समय समुद्र का पानी भर जाता था। उसके बाद फाटक बंद करके उस पानी को वहीं रोक लिया जाता था, जिससे बड़े जहाज भी इस गोदी में लंगर डाले खड़े रह सके। इस तरह लोथल व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। जिन दिनों भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का विस्तार हो रहा था, उन्हीं दिनों मेसोपोटामिया में सुमेर सभ्यता पनप रही थी। खुदाई में ऐसी व्यापारिक मोहरें मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया से हमारे व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में एक राजा था जिसकी राजधानी अक्काद थी। वहां दिलमन नामक शहर से जहाज आया जाया करते थे। दिलमन को आज का बाहरेन माना जाता है।

चालों ने मिलाया हाथ, दोनों दोस्त बने खेलने लगे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: ये विज्ञान गीत।

0: ये है मुझे परेशान करने की सजा।
1: माँ के आते ही गया दोनों का ध्यान भटक।

0: तभी तपाक से बोली पहेली।
1: हाँ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का तो है मुझे पता, बाकी के ना आते मुझे, आप ही दो हमें बता। माँ बोलती, इससे पहले बूझो ने पहेली पर तंज कसा
0: और हंसते हुए बोला, भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है वसा।
1: दोनों की तनातनी देख माँ ने प्यार से दोनों को समझाया।
0: चलो सभी साथ में समझते हैं जो तुम दोनों ने अभी नहीं बतलाया।

0: जन
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
3: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
4: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है
3: जी।
4: इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
3: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
4: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
3: यानी कि आपके कहने के आधार पे क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
4: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
3: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
4: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसको इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
3: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
4: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
3: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर साहब के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
4: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
0: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
3: जी बताइए डॉक्टर।
4: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
3: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
4: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
3: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
4: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
3: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
4: जी
3: और डॉक्टर साहब
5: क्या फाइलेरिया की
3: बचा जा सकता
4: है? जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
3: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
4: ये जब अभियान चलता है हम सभी से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
3: जी और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
4: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
3: अच्छा। जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक दबा जाता
4: है, वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
5: जी, और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
3: जी
4: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
3: जी
2: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया बिल 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, एक बार पुनः खेती बाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगी हुई है। किसान साथियों, हमारा यह हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हमारा जो किसान है उसकी आजीविका सशक्त हो, हमारा किसान खेती में नई से नई तकनीकों को सीखे, साथ ही उन्नत कृषि कैसे कर सके आदि जानकारियों को आप तक पहुंचाने की हमारी यह पहल कहीं ना कहीं हमारे किसानों की आजीविका को सशक्त बनाने की एक पहल है। किसान साथियों, हमारे पूर्वज पहले से ही कृषि करते आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कृषि को पुनः एक नवीनतम उसमें बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो किसान साथियों, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी दिन प्रतिदिन जो हमारा पर्यावरण है, हमारी प्रकृति है, वो बदलती जा रही है, प्रकृति में बदलाव आते जा रहे हैं और हमारा जो किसान है उन्होंने रासायनिकों का हमने अंधाधुन प्रयोग के माध्यम से कहीं कहीं पर इसके काफ़ी दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर ज़रूरत है हमें एक बदलाव की और परिवर्तन के साथ प्रकृति के साथ मिलकर हमें कृषि करने की आवश्यकता है। तो यही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हुए अच्छी से अच्छी कृषि कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। साथ ही किसान साथियों, हम कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी जो आजीविका के स्रोत हैं, जो हमारे आसपास ही हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उन सब बिंदुओं पर हम नज़र डालते हैं और सोच और देखते हैं कैसे मधुमक्खी पालन के माध्यम से, मछली पालन के माध्यम से, फूलों की खेती करके, वनस्पति की खेती करके और अन्य खेती के माध्यम से भी हम कितने अच्छे मुनाफे ले सकते हैं। जो हमारा पूर्वज था वह सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए खाद्यान्न फसलों की ही खेती करता था, लेकिन आज का किसान औषधीय पौधों की हम खेती करना शुरू कर दिए हैं, साथ ही हमने मत्स्य पालन शुरू किया है, कुक्कुट पालन शुरू किया है और भी अन्य खेती के बहुत सारे ऐसे साधन है जिनके मदद से हमने हमारी खेती में एक नए बदलाव को महसूस किया है। तो किसान साथियों, हमारा रेडियो टांडिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमारा किसान है वो भिन्न भिन्न और उन्नत कृषि करे और हम अपनी कृषि में नए बदलावों को करे, नए बदलावों को देखे, सीखे और अपने साथी किसान साथियों को भी बताए और हम हमारे एक्सपर्ट की राय से भी हमारी कृषि में एक उन्नति ला सके, एक नवीनता ला सके। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांडिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मुर्गी पालन को लेकर और देसी गाय की किस्मों को लेकर, हमें कैसे इनका रखरखाव करना है, क्या इनके लिए कैसा प्रबंधन करना है, साथ ही हमें किन किन बातों में इनका ध्यान रखना है और कैसे हम इसमें इनका ख्याल रख के हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सके। तो आइए शुरू करते हैं।
1: जैसे बात करते हैं अधिराज जी, अब जैसे कि हम देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम एक आम किसान, एक पशुपालक की भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये क्या है?
2: देखिए, ये हम बताएंगे कि देसी नस्ल जो हम बोलते हैं, पहले क्रॉस ब्रीडिंग करके विदेशी नस्ल को यहाँ पे दूध उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था, पर अभी हमने ये देखा है कि देसी नस्ल भी हमारे उतने ही अच्छे दूध दे रहे हैं, उनके गुणवत्ता भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए भारत सरकार का ये योजना है कि कैसे देसी नस्ल का संवर्धन किया जाए और उसका कैसे भी डेवलपमेंट किया जा सके, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट ये दोनों का किया जा सके, इसलिए ये किया जाता है। इनको अगर देखेंगे कम लागत में इनसे ज्यादा हमें फायदा मिल सकता है, जो कि भारत सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई है 2014 से चल रही है, जिसको हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन बताते हैं। उस योजना के तहत देसी नस्ल का संवर्धन किसानों को कैसे पहुंच सके, ये योजना हम चला रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। और देखिए, एक समय था जब हम क्रॉस ब्रीड का काफी हमारे जो किसान थे, पशुपालक थे, डेयरी से जुड़े जो हमारे पशुपालक थे, उनमें क्रेज रहता था। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण की बात कर रही है, धीरे धीरे प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती की ओर हम रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में देसी गायों की भूमिका या फिर कहें उनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
0: इसी के साथ किसान साथियों, यहां पर डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर और जानेंगे क्या है महत्वपूर्ण बिंदु जिन पे हमें विचार करने की आवश्यकता है, जिन पे हमें काम करने की आवश्यकता है, और उनकी मदद से हम कैसे हमारी आय में वृद्धि कर सकते हैं, हमारी कृषि को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
3: पशुओं को किसानों का धन माना जाता है और पशुपालक किसानों की आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुधन से आता है। पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भी देसी नस्ल के दुधारू पशुओं के संरक्षण की दिशा में लगातार अहम कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, दूध उत्पादन और मांग में संतुलन के लिए भी काफी कोशिशें की जा रही हैं। व्यवसायिक फार्म प्रबंधन और बढ़िया पोषाहार के जरिए भारत में देसी नस्लों की उत्पादकता में बढ़ोतरी करने की काफी संभावनाएं हैं। ऐसे में देसी नस्लों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार ने 2014 में इस मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इस योजना का उद्देश्य इन पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना भी है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं के स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। योजना के जरिए दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साहिवाल, राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाने का काम भी किया जा रहा है।
1: लोगों के लिए काम कर रही है, हमारे पशुपालक इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और देसी गाय संरक्षण और संवर्धन को और गति दी जा रही है। चलिए बात करते हैं आज का जो हमारा दूसरा विषय है, यानी मुर्गी पालन। डॉक्टर पंकज, मुर्गी पालन की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मुझे समझ आता है और जैसे एक्सपर्ट से बात हुई मेरी, तो बीते इन दो सालों में कोरोना काल में काफी इससे सेटबैक रहा, मतलब काफी नुकसान हुआ मुर्गी पालकों को। अभी मौजूदा स्थिति क्या है?
4: जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है वो एक बहुत नाजुक व्यवसाय है, और जैसा कि आपने कहा और सत्य भी है कि विगत कोरोना काल में शुरुआती तौर पे इस मुर्गी को ही कोरोना संक्रमण फैलने का कारण मान लिया गया था, जो तथा कदापि उचित नहीं था और ना तथ्यों से भरा हुआ था। सब तथ्यों से परे भ्रामक प्रचार के कारण जो हमारा मुर्गी का उद्योग था, जो मुर्गी पालन का उद्योग था, उसको काफ़ी बड़ा सेटबैक रहा। और लगभग 2020 की अगर हम बात करें तो मार्च से लेकर के और जुलाई तक के बीच में जो एस्टिमेटेड आंकड़े हमें बताते हैं, लगभग 25,000 करोड़ का भारतीय जो हमारा मुर्गी पालन का व्यवसाय था उसको नुकसान हुआ था। धीरे धीरे जब लोगों में समझ बढ़ी और उनको पता चला कि ये एक पौष्टिक और संतुलित प्रोटीन का सोर्स है और इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है, तो अगले 3 महीनों में इस उत्पाद की खपत अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा बढ़ी, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और उसके परिणाम भी हमको देखने को मिले कि लोग तेजी से स्वस्थ होते गए और अपना पुराना जो विगर था उसको उन्होंने पुनः प्राप्त किया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत में भी मुर्गी पालन जो है काफी एडवांस स्टेज पे है। अगर आप पुराने 70 के दशक की बात करें तो हम इस मुर्गी को पिछवाड़े में पाले जाने वाले एक बर्ड के रूप में जानते थे जिससे कुछ अंडों की प्राप्ति होती थी। 80 के दशक में हमने ये जानना प्रारंभ किया कि एक और प्रजाति मुर्गी की विकसित हुई जिसे ब्रॉयलर के नाम से जानते हैं और ये मांस उत्पादन की दृष्टि से पाली गई। और उसके बाद 90 का दशक आते आते धीरे धीरे इसके प्रसंस्करण और इसके प्रोसेसिंग पर भी विचार किया गया और अब जो हमारा एरा चल रहा है वो एक क्वालिटी एग और मीट को डिलीवर करने का है। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो वो 70 के दशक से आज की अगर हम तुलना करते हैं तो जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है कई सैकड़ों गुना बढ़ा है। वैश्विक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो भारत का अंडा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान है। जो प्रथम स्थान है वो चाइना का है, जो दूसरा स्थान है वो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। और भारत में भी अगर आज की तारीख पे हम देखें तो लगभग जो अंडे का उत्पादन है वो 122 बिलियन अंडा है, जो लगभग जो दूसरा स्थान है विश्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके बहुत करीब है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाले समय में हम इस दूसरे स्थान को प्राप्त कर लें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आप बता रहे हैं डॉक्टर पंकज कि ये बहुत संवेदनशील है और इसीलिए हमारे जो मुर्गी पालक हैं उन्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। जैसे चेंज ऑफ वेदर होता है या फिर कोई इन्फेक्शन अगर एक मुर्गी में दिखाई दिया तो बहुत जल्दी उसे कदम उठाने की जरूरत होती है। टीकाकरण को कई बार लेकर के हमारे जो मुर्गी पालक हैं वो उतने संजीदा नहीं रहते, उतना ध्यान नहीं देते, उससे भी बहुत तरह के नुकसान हो जाते हैं। तो जैसा कि हमें डॉक्टर पंकज बता रहे हैं कि जो अभी मौजूदा स्थिति है वो बहुत ही सुखद है और इसमें लगातार हम प्रगति के पथ पर हैं और आने वाले समय में हम बेहतर कर सकते हैं क्षेत्र में। फिलहाल देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
3: अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो ये एक मुनाफे का व्यवसाय साबित होता है। मुर्गी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाएं तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी हवा मिलती रहेगी जिससे वो बहुत सी बीमारियों से बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने की जगह को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दें उसे हर 2 दिन के अंतराल में साफ करें। रात के समय बल्ब जलाकर रखें जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को ना छुएं, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा।
0: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर और महत्वपूर्ण जानकारी को लिया है कैसे हमें मुर्गी पालन के जो मुर्गी पालन करना चाहता है जो किसान उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए। हमें थोड़ा सा खुले में उन्हें रखना चाहिए, साथ ही उनके लिए जो रात में बल्ब की सुविधा होना चाहिए, उनके लिए भरपूर पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। चलिए लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को मुर्गी पालन से जुड़ी हुई और गाय से जुड़ी हुई।
1: अधिराज, जैसे कि हम देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण की बात कर रहे हैं, दरअसल इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से समझे और इसमें हमारे किसान किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें किस तरह से लाभ भी होगा ये भी बताएं।
2: देखिए, ये बता सकते हैं कि अभी भारत में जो ब्रीड रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो देसी नस्ल अगर गायों का हम देखेंगे तो लगभग 50 देसी नस्ल गायों के हैं और 17 देसी नस्ल जो भैंसों के हैं। तो इसमें हम देखेंगे अगर दूध की बात करते हैं, अगर गाय जो किसान भाई पालन करना चाहते हैं तो देसी नस्ल जैसे गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, इस तरीके के जो नस्ल हैं ये अच्छे दूध देते हैं और डिजीज रेजिस्टेंस भी ये है जो कि उनके कम मतलब उनके रोग लगते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारे संकर जाति हैं या विदेशी नस्ल के हैं, तो से क्योंकि ये हमारे और हीट टॉलरेंट भी हैं जो कि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं और कम लागत में अच्छी तरह इसका दूध भी उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है और गुणवत्ता भी इस दूध का भी बहुत अच्छा है बहुत सारी स्टडीज में,
1: और ये भी इसमें बहुत मेडिसिनल वैल्यू
2: है,
1: पोषक तत्वों से भरपूर है देसी दूध, देसी गाय का दूध। और अब देखिए इसका बाजार भी काफी विस्तार लेता जा रहा है कि उपभोक्ता भी मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार है, तो किसानों के लिए पशुपालकों के लिए बहुत अच्छा बाजार खुल रहा है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं।
2: जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हम आपको बताना चाहते हैं भारत सरकार की तरफ से ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना जो चलाई गई है 2019 से शुरू गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी से उसका उद्घाटन किया गया था और इसके तहत हमने लगभग 600 जिले लिए थे देश के जहां पे ये जो आप बोल रहे हैं देसी नस्ल के गाय का जो सीमेन होता है उसको उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रावधान किया गया है जो कि निःशुल्क किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, जो कि हमारे एआई टेक्नीशियंस हैं वो आपके घर पहुंचेंगे, कहीं पे भी होता है आप निकटतम
1: जी। लेकिन डॉक्टर अधिराज, इनका सवाल था वो यही कि अच्छा वीर्य मिले कहां से जो देसी बछड़े का हो, तो इसके लिए कहां संपर्क करें? कई बार जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पशुपालकों को भी कैसे पता चले कि हाँ वो जो चाहते हैं जो करना चाह रहे वही है?
2: देखिए सारे राज्यों में ये हमारे जो सीमेन स्टेशन हैं, सीमेन स्टेशन से अच्छी देसी नस्ल के जो सीमेन बनते हैं तो वो सीमेन सारे राज्यों को सप्लाई किया जाता है और सारे राज्यों का निकटतम पशु चिकित्सालय जो है वहां से संपर्क कीजिए और जो एआई टेक्नीशियन है जो आपके घर में आके कृत्रिम गर्भधान करते हैं उनसे संपर्क कीजिए और जो नस्ल के आपको चाहिए वहां पे अवेलेबल किया गया है तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। और बेसिकली हम बताना चाहते हैं कि रीजन वाइज भी हमने कुछ किया है जो कि अपने स्टेट का जो ब्रीडिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से कोई कोई स्टेट अपने जो देसी नस्ल चाहिए उनके राज्यों के लिए जो उनके राज्यों के लिए सही हो सकता है उस हिसाब से किया गया है।
0: जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप में से कोई किसान साथी देसी गायों का पालन करना चाहता है कि वो गर्भाशय कराए तो अपने पास के केवीकी केंद्र में हम संपर्क कर सकते हैं और ये भी अभी हमें मिल सकता है। अभी इसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका शुभारंभ कर चुके हैं। हमारे देसी गाय का जो दूध हो सकता है कि थोड़ा कम जरूर देती है लेकिन उसमें जो गुण है वो काफी उच्च गुण है उनमें। तो किसान साथियों, हमारे में से काफी किसान साथी देसी गाय का घी है, देसी गाय का दूध है, उसकी महत्वता को जानते हैं, समझते हैं और इसे पालते भी है, तो यह कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और आप सभी किसान भाई जानते हैं कि हमारी देसी गाय का घी तुलनात्मक बाकी घीयों की तुलना में काफ़ी महंगा मिलता है और अधिकतर तो ये मिलना अभी दुर्लभ हो चुका है क्योंकि अधिकतर लोग जर्सी गाय ही रखते हैं, लेकिन देसी गाय का घी जो होता है काफ़ी गुणकारी होता है, ये बात हमारा किसान अच्छे से जानता है और ये काफ़ी दुर्लभ है। साथ ही अगर हम बात करें हमारे देसी मुर्गियों की तो देसी मुर्गी का अंडा भी काफ़ी गुणकारी माना जाता है और यह भी काफ़ी दुर्लभ होता जा रहा है। किसान साथियों, यहाँ पर हम आइए लेते हैं एक्सपर्ट से राय कि अगर कोई देसी मुर्गी का पालन करना चाहता है कोई किसान साथी तो कैसे कर सकता है। हाँ, हमें हमारे पास के किसान साथियों से ये मिल जाता है लेकिन क्या हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर या अन्य संस्थाओं पर क्या इसकी उपलब्धता है या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
4: मुर्गी पालन की लगभग सारे ही क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। अगर विस्तृत दृष्टि से देखें तो मुर्गी पालन दो प्रकार का होता है, एक वो जो हम घर के पिछवाड़े पे पालते हैं जिसको हम कहते हैं कि बैकयार्ड पोल्ट्री, और दूसरा जो बहुत एडवांस स्टेज पे हम मुर्गी को पालते हैं और आजकल वो उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग लेते हैं। प्रयास ये करना चाहिए कि शुरुआती तौर पे आप कम संख्या में मुर्गी को पहले पालने का प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत संसाधन आपको कितने आवश्यक हैं उन संसाधनों के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करें। अगर मीडियम स्तर पर या बीच वाले स्तर पर आप इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो आपको खासकर धन के क्या स्रोत होंगे और आपके पास क्या संसाधन हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। और फिर नस्ल का चयन करना चाहिए कि आप अंडे की मुर्गी पालना चाहते हैं, अंडा देने वाली मुर्गी पालना चाहते हैं, या मांस उत्पादन वाली मुर्गी पालना चाहते हैं, या मुर्गियों की अन्य नस्लें जो इस देश में उपलब्ध हैं उनको पालना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास जापानी बटेर भी है, हमारे पास चीनी मुर्गा या गिनी फाउल भी है, हमारे पास टर्की भी है, तो आप किस प्रकार की मुर्गी पालना चाहते हैं वो भी आपको निर्धारित करना होगा। और संसाधनों के जो आपके पास उपलब्ध हैं, आपके पास धन की उपलब्धता है, उनके आधार पर सामान्यतया विशेषज्ञों की यह सलाह होती है कि आप पहले छोटे स्तर से इस कार्य को प्रारंभ करें और जैसे जैसे इस कार्य में आप निपुण होते जाएं आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे उसमें वृद्धि करते जाएं। तो ये पूर्णतः आपका चयन होगा। जहां तक आप थोड़ा बैकयार्ड से और मीडियम स्केल से प्रारंभ करेंगे तो उचित होगा। अंडा देने वाली अगर मुर्गी पालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको व्यवस्था करनी होगी, उसकी व्यवस्थाएं अलग हैं, और जो मांस उत्पादन वाली मुर्गी है ब्रॉयलर उसकी भी व्यवस्थाएं अलग हैं। पर ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके जो विचार है वो क्या है, आपके संसाधन क्या हैं और आपके जो धन का या पूंजी का स्रोत है वो क्या है। और उसके साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो ये भी होता है कि आपका जब उत्पाद बाजार में जाने के लिए तैयार होगा तो उसके विपणन की व्यवस्था क्या है, ताकि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें कि कम से कम लागत से ज़्यादा मुनाफा उठा सकें और उसके अनुरूप कार्रवाई करें।
1: जी।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: कि कौन सी नस्ल अच्छी देती है, तो अगर हम दूध की बात करें तो गिर जो कि बहुत अच्छी है उसको हम रख सकते हैं। साहिवाल एक ब्रीड है जिसको भी हम पाल सकते हैं, और इसके अलावा रेड सिंधी भी हम देख सकते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं जो कि दूध देने वाले नस्ल हैं, ये अच्छे दूध देते हैं। और इसका भी अगर आपके पास कोई भी अपने घर में गाय है तो उसको भी, उससे भी आप अपना यही ब्रीड निकाल सकते हैं। अगर आप कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, इस जो सीमेन अवेलेबल होता है इससे करवाइए और आपके घर में भी ये अच्छी पैदा हो सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: गर्भधारण नहीं रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिर भी हम आपको कुछ साधारण उपाय बताते हैं, वो आप देख लीजिए। पहले तो एक है उसका बॉडी वेट कितना हुआ, अगर सफिशिएंट बॉडी वेट बन गया है तो गर्भधारण कर सकता है। उसके अलावा ये भी देखना है सफिशिएंट अगर प्रोटीन का मात्रा अगर सही है उसके जो आहार में प्रोटीन का मात्रा सही है उसको आप देख सकते हैं। कुल्थी भी दे सकते हैं उसके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए। और उसके अलावा अगर देखेंगे कोई इन्फेक्शन, मुझे नहीं लगता है क्योंकि ये पहली बार आपको इसके लिए कर रहे हैं तो इसके इन्फेक्शन का चांसेस नहीं हो सकते हैं, पर फिर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो कुछ कमियां रहते हैं जैसे ओवरी का डेवलपमेंट सही नहीं हुआ होगा उसको दिखाने के लिए एक बार आप निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कर लीजिए, वो एक बार आपके पशु का जांच करवा लें और जांच करने के बाद वो कुछ उपाय बता सकते हैं जो कि मेडिसिन मिलते हैं जो कि प्रॉपर उसका गर्भधारण करवा सकते हैं। इसके अलावा छोटे से कुछ भी चीजें होते हैं जैसे कि कीड़े होते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं, अगर कीड़े भी हैं तो उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो भी आप एक बार उसका फीकल सैंपल जांच करवा लें और कीड़े अगर हैं या नहीं तो प्रॉपर जांच करवा के एक बार देख लीजिए, तो मुझे लगता है ये सही हो जाएगा क्योंकि गिर नस्ल बहुत अच्छा है तो कुछ तकलीफ नहीं आना चाहिए इसके।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: सामान्यतः हमारे यहाँ जो ब्रॉयलर का प्रोडक्शन है वृहद स्तर पर देखा गया है और लोग कर भी रहे हैं, तो क्या ग्रोथ ज्यादा होगी या उसकी बढ़ोतरी ज्यादा होगी? तो शांत जी, मेरा एक आपको मशविरा है कि जो ये पक्षी है जो ब्रॉयलर है, वो ब्रॉयलर पहले जो 2 महीने में बाजार जाने के लिए तैयार होता था, अब उस वृद्धि को वो 28 दिन में प्राप्त कर लेता है, 1 किलो से 1.5 किलो हो जाता है। सो प्रतिदिन उसकी आहार व्यवस्था बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसमें उसको बहुत ही संतुलित आहार देना होता है, और खासकर जब उसमें ग्रोथ हो रही हो तो उस समय पे हमको उसको स्टार्टर राशन देना होता है, जब वो बड़ा हो चुका होता है तो और बाजार में जाने के लिए तैयार होता है तो फिनिशर राशन देना होता है। सामान्यतया इसका जो हम लोग चयन करते हैं वो पहले 4 हफ्ते स्टार्टर राशन और उसके बाद फिर हम लोग फिनिशर राशन देते हैं। इसको कई जगह पे खासकर जो नए नीति बन रही हैं, जो लोगों के नए फीडिंग शेड्यूल्स बन रहे हैं, उसके अनुसार 3-3 हफ्ते में इसको बांट दिया गया है। पहले प्रथम 2 सप्ताह हम उनको स्टार्टर राशन देते हैं और उसके बाद फिनिशर राशन प्रारंभ कर देते हैं ताकि मुर्गी में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि दर हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा मांस का उत्पादन हो और बाजार में जाते समय उसका वजन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। रही बात ग्रोथ प्रोमोटर की, तो आजकल अगर आप देख रहे हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर कई तरीके के होते हैं, इस स्तर पर इसको समझना बूझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हमारे देश में 2-3 समस्याएं इस समय चल रही हैं। एक तो एंटी माइक्रोबियल रेसिड्यू की प्रॉब्लम है और कई ग्रोथ प्रोमोटर हैं जो नेचुरल ग्रोथ प्रोमोटर हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु संतुलित भोजन के सबसे ज्यादा आवश्यक है और उसमें अगर ग्रोथ प्रोमोटर डालते हैं तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप भोजन को संतुलित रखते हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर की आपको आवश्यकता होती ही नहीं है। और दूसरा, अगर आप पक्षी को एक सामान्यतया स्वस्थ वातावरण में रखते हैं तो उसमें भी ग्रोथ प्रोमोटर की आवश्यकता नहीं होती है, उसको सामान्य तरीके से आप पाल सकते हैं। किंतु हमेशा याद रखिए कि अगर आपका आहार संतुलित नहीं होगा, आपका आहार पक्षी की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगा, तो आपको पक्षी में वृद्धि दर नहीं मिलेगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पक्षी का चुनाव जो उसका जर्मप्लाज्म है वो बहुत अच्छा हो, और दूसरा उसको जो आप फीड देते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी

0: का और संतुलित हो।
1: जी बिल्कुल, और जैसे कि आपने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर अजय की, माफ कीजिएगा डॉक्टर पंकज की, जो अगर आप संतुलित आहार देते हैं तो वैसे ही आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप मुर्गियों को संतुलित आहार दें।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: जरूर उपयोग करेगा देसी, देखिए देसी नस्ल की बात, हम गाय की नस्ल की बात कर रहे हैं, ये हमारे भारत के ही हैं, ये कहीं बाहर के नहीं हैं, ये हमारे एरिया के ही हैं, तो इसको हम पालन कर सकते हैं। और जरूर आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप मतलब दूध उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो गिर रख सकते हैं, साहिवाल रख सकते हैं, उसमें कुछ दुविधा नहीं होगी। इसके अलावा ये भी हम बता सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से और भी योजनाएं शुरू की गए हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, जो कि IVF भी आप करवा सकते हैं अपने जो भी घर में पशु है, जो गाय है, उसका IVF आप करवा के गिर या एक साहिवाल हो या जो भी आप भैंस का भी चाहते हैं, मुर्रा चाहते हैं, जो जहां भैंस रखते हैं लोग, तो वो भी आप उसका फायदा ले सकते हैं, जिसके लिए भारत सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की एक सब्सिडी भी रखी गई है, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से आप देसी गाय अगर आप पालना चाहते हैं या फिर डेयरी लगाना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु के अनुकूल ही होती है तो बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं होती है। अब मैं डॉक्टर पंकज आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी आए लेकिन जो मुख्य सवाल थे उन पर अभी तक हम नहीं जा पाए हैं। तो जो नए हमारे मुर्गी पालक हैं, अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपने ज्यादातर हमारे किसानों को ये बताया कि कम से शुरुआत करें, मुख्य बातें कौन कौन सी होती जिसका ध्यान रखना चाहिए।
4: देखिए, जब भी मुर्गी पालन का व्यवसाय आप अपनाना चाहें तो मुख्य मुख्य बातें हमने कर ली कि हमें सबसे पहले अपने जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जानकारी लेने के बाद अपने संसाधनों को तलाशना चाहिए और अपने पूंजीगत व्यय जो आप करने की स्थिति में हैं उसका एक असेसमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसका जो प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि ये जो मुर्गी और मुर्गी से पाए जो प्राप्त होते हैं उत्पाद, वो सब पेरिशेबल नेचर के होते हैं, उनको लंबा समय तक आप स्टोर करके अपने पास नहीं रख पाते हैं, तो जैसे ही वो तैयार होते हैं उनको तुरंत मार्केट में भेजने के लिए विपणन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो एक बहुत चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। तो शुरुआती तौर पर हम इसलिए कहते हैं कि आप छोटे स्तर से इस व्यवसाय को प्रारंभ करें, क्योंकि उसमें अगर आपको कुछ आगे पीछे या नफा नुकसान भी होता है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता, आप दोबारा से उस व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं, और जो मात्रा प्रोडक्ट की आपके पास होती है उसकी भी विपणन व्यवस्था आप बहुत आराम से अपने स्तर पर कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं हमारे देश का जो उत्पादन का स्थिति है वो काफी वृहद स्तर पर हो रहा है, और पूर्व में भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा कर ली है कि भारत ने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है, मुर्गी और मुर्गी के उत्पाद की दृष्टि से वैश्विक स्थान भी बना लिया है, और इन सारे उत्पादों का लगभग 20-27% हमारा इस बैकयार्ड से आता है, जो हमारे घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन होता है उससे आता है। और इसकी सबसे ज्यादा खूबसूरती यह होती है कि जब ग्रामीण परिवेश में हमारे किसान भाई इसको घर के पिछवाड़े पे एक सहयोगी धंधे के रूप में अपनाते हैं, अपने कृषि कार्यों के साथ साथ 50 या 100 मुर्गियों को पीछे रख करके उनसे इस व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, तो होता क्या है, उसके जो अंडे प्राप्त होते हैं वो आपके परिवार के लिए, परिवार के इस्तेमाल करने के लिए भी होते हैं, आपको एक संतुलित प्रोटीन और संतुलित आहार की प्राप्ति आपको और आपके परिवार को होती है। उसके साथ साथ कभी जब आवश्यकता पड़े तो ये मुर्गी आपके लिए एक ATM का कार्य भी करती है, आप उसको रूरल मार्केट में 100-200-250 रुपए में बेच भी सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो एक इन दो उद्देश्यों के साथ साथ अगर इस व्यवसाय को आप रखते हैं तो आपको फायदा भी होता है, और धीरे धीरे जब आप इस मुर्गी पालन के व्यवसाय में परिपक्व होते जाते हैं तो इस व्यवसाय को थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में विपणन की व्यवस्था बहुत ज्यादा हमें करनी नहीं होती है। पर हाँ, भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या है तो वो है मुर्गी के एक विपणन व्यवस्था, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हमारे भारत में नहीं है। यद्यपि अब हम लोग औद्योगिक स्तर पे पहुंच गए हैं और अब बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी अभी हमारी जो मार्केटिंग की व्यवस्था है, जो विपणन की व्यवस्था है, बहुत ही प्राथमिक टाइप की है।
1: सप्लाई चेन जो है वो और भी बेहतर होने की उम्मीद हम कर सकते हैं, तभी और बेहतर हमारे जो मुर्गी पालक है उन्हें लाभ होगा।
4: एग्जैक्टली और उसके साथ साथ अब तो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंज्यूमर तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी संभाल ली है. सो जितने एंसिलरी यूनिट्स हैं जो मुर्गी पालन के व्यवसाय में लगे हुए हैं उनने भी काम किया है. आपने कोरोना के समय पे देखा कि अगर आपको मुर्गी की या मुर्गी के मांस की या मुर्गी के अंडे की आवश्यकता थी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ये सारी चीजें उपलब्ध थी. आप चाहते जिस समय आप चाहें उस समय पे इन उत्पादों को अपने घर पे बैठे हुए प्रोसेस्ड हों या रॉ हों आप बुलवा सकते थे. तो धीरे धीरे इसकी विपणन व्यवस्था ने एक नया आयाम लेना शुरू किया है. डिजिटल मार्केटिंग भी शुरू हुआ है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इसकी मार्केटिंग थोड़ी सी ईज आउट हुई है. उसके साथ बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक दूसरे के साथ साझेदारी भी शुरू की है. तो जिनको अगर बड़े लार्ज स्केल में मुर्गी के उत्पादों की आवश्यकता होती है जैसे चिकन की आवश्यकता होती है या अंडों की आवश्यकता होती है तो वो बैकवर्ड लिंकेजेस अपने डेवलप करते हैं. कुछ फार्म्स और फार्मर्स के साथ बात करते हैं. उनके जो जितने भी उत्पाद होता है वो डायरेक्ट लेते हैं और अपने अनुरूप उनको पैदा करवाते हैं जिससे वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं.
1: बिल्कुल, यानी धीरे धीरे जैसा कि आप बता रहे हैं कि और ऑर्गेनाइज्ड होता जा रहा है ये सेक्टर.
0: किसान साथियों, मुर्गी का व्यवसाय हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय है. यह बात हमारे झाबुआ का किसान बहुत ही अच्छे से जानता है. जब भी हमारा जो किसान है जब भी उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है वे हाट का जो हमारा दिन होता है हाट बाजार के दिन में आते हैं और जो मुर्गी है वो अभी 300 से 400 रुपए के बीच में बिक रही है. साथ ही अगर हम मुर्गे की बात करें तो मुर्गा 700 से 1000 के बीच में ही बिकता है और अगर हम देसी मुर्गा और कड़कनाथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा दाम मिलता है. तो किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है. साथ ही जैसे कि हम प्रारंभ में हम चर्चा कर रहे थे कि जो देसी अंडे हैं, देसी अंडे का जो अभी मिलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है. हमें बाजार में अंडे ज़रूर मिल सकते हैं लेकिन जो देसी अंडा है जिसका स्वाद अलग होता है और वो गुणकारी होता है. तो कहीं ना कहीं अगर हमारा किसान भाई इसमें थोड़ा सा और ध्यान लगा दे और जो हमारे घर के पीछे हम पालते हैं हमारे घर पे ही हमारे पेड़ों पे जो मुर्गियां होती है उकेड़ा है, उकेड़े में से वो काफ़ी अपने ज़रूरतमंद ज़रूरी कीड़ों को वो खाती है और इस तरीके से हमारा हमें इसके लिए कुछ ज़्यादा खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है. ये कम लागत पर होने वाली कृषि है. तो किसान साथियों, आप इसमें भी अपना रुख कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा और ज़्यादा मुनाफा इसके माध्यम से भी हम कमा सकते हैं. आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को.
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM. आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें.
3: साहिवाल भी बहुत अच्छा है. थारपारकर देखिए, थारपारकर साहिवाल अगर देखेंगे सिर्फ दूध उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो साहिवाल बहुत ही अच्छा है. और थारपारकर अगर देखेंगे ये डुअल पर्पस है, मतलब इसे दूध का लाभ भी ले सकते हैं और अगर मतलब मेल काफ हो गया तो उसको आप मतलब खेती में भी लगा सकते हैं. तो ये दोनों चीज बहुत अच्छे हैं आपके राजस्थान के लिए. और हमारा एक जो मैंने पहले भी बताया था एक कि राजस्थान में हमारा सूरतगढ़ में एक सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म है जहाँ पे थारपारकर की उपलब्धि भी हो सकती है. वहाँ से आप पूछताछ कर सकते हैं और कहाँ अवेलेबल है बता सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं इसकी फायदा.
1: जी बिल्कुल. साथ ही अधिराज जी बताया कि जैसे कि आपने हमें ई गोपाला ऐप के बारे में भी बताया था कार्यक्रम से पहले, हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया था कि ये बहुत हमारे किसानों के लिए अच्छी सुविधा है. तो किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं और किस किस तरह की जानकारी या फिर सर्विसेज इस ऐप पर उपलब्ध हैं?
3: जैसे कि अभी सर ने बताया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब सारी चीजें अवेलेबल हो रहे हैं. तो वही डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए और किसानों को सुविधा मिलने के लिए ये ई गोपाला ऐप का भी लॉन्च जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी से करवाया गया था. तो ये जो हुआ था तो इसमें क्या है, आप अगर कोई अच्छे नस्ल के पशु चाहते हैं जो गाय है या भैंस है वो भी चाहते हैं वो वहां पे रजिस्टर्ड है तो उसको आप खरीदारी कर सकते हैं और उसके जो किसान है उससे बात करके ये ले सकते हैं. इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो सिमेन जो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए चाहिए उस वो भी वहां अवेलेबल है और कहां से आप ले सकते हैं वो भी सारा और उसके पर्टिकुलर प्राइस के साथ कितना मूल्य है वो भी अवेलेबल है, किस सांड का है वो भी सारा चीज अवेलेबल रहता है. इसके अलावा अगर देखेंगे तो एम्ब्रियो अगर चाहते हैं, अगर कोई IVF करना चाहता है तो उसके लिए एम्ब्रियो अवेलेबिलिटी भी वहीं दिया गया है. इसके अलावा उसमें कुछ छोटे छोटे चीजें दिए गए हैं कि कोई अगर रोग आ जाता है, मतलब छोटा कंडीशन आ जाता है, उसका कैसे घरेलू उपचार हम कर सकते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसको लगा के हम, जैसे कोई पत्ता हो या कोई फूल हो उसको लेके हम, कोई एक छोटा सा अगर बुखार आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसका हम इलाज कर सकते हैं। वहाँ पे इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज का भी वीडियोस दिया गए हैं जो जिसका फायदा कोई किसान ले सकते हैं। उसके अलावा पशुपोषण का भी वहाँ पे प्रावधान रखा गया, अगर कोई किसान उसमें रजिस्टर करते हैं अपने पशु को दूध दे रहा है, 5 लीटर दूध दे रहा है या 10 लीटर दूध दे रहा है, उसके हिसाब से उसको जितना पोषण चाहिए उसका भी कैलकुलेशन वो करवा के अपने हिसाब से वो ले सकता है।
1: जी चलिए, तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी लाभ हमारे पशुपालक ले सकते हैं, और खासतौर पर ये ई गोपाला ऐप है जिसे खुद प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, और इससे बहुत तरह की सुविधाएं आपकी बिल्कुल डोर स्टेप पर भी मिलेगी।
0: किसान साथियों, अभी आपने ई गोपाला ऐप के बारे में सुना, क्या है ई गोपाला है किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा एक मौका है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें वहां पर मिल सकती है, हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप के माध्यम से जो भी जानकारी हमें चाहिए हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से ढूंढ सकते हैं। साथ ही पहले हमें इन सारी चीजों को ढूंढने की काफी दिक्कत होती थी, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके पास मिलेगा आदि चीजों की हमें दिक्कत होती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस ऐप का शुभारंभ किया है और ये बहुत ही अच्छी ऐप है। इसके माध्यम से हम अच्छे से अच्छी किस्म की वीर्य प्राप्त कर सकते हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों को इस ऐप के माध्यम से हम ले सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: देखिए इसका कारण है ये फैट नहीं आ रही है जिसके वे आप जो दूध बेच रहे हैं उसका प्राइस भी कम हो रहा होगा। आप जो आहार देते हैं उसको संतुलित आहार दीजिए, जो कॉमर्शियल फीड मिलता है वो कॉमर्शियल फीड बाहर से खरीद के दीजिए, और उसके साथ आप उसको हरा चारा का भी सफिशिएंट हरा चारा दीजिए। मिनिमम उसको ये 5-6 लीटर दूध दे रहा है तो मिनिमम 25 किलो हरा चारा उसको रेगुलर चाहिए, ये देखिए। दूसरा चीज़ है, आप कॉमर्शियल फीड जो मिल रहा है बाहर गाय के लिए मिल रहा है उसका अवेलेबिलिटी करवाइए। अगर हम देखते हैं कि जो पोषण हम देते हैं तो अगर वो हर 2.5 लीटर दूध के लिए 1 किलो कॉमर्शियल फीड हमें उसको देना चाहिए तो इसका एक बार देखिए। दूसरा चीज़ आपको देखना होगा कि अगर कुछ मिनरल मिक्सचर उसके फीड में डाल सकते हैं, वो डालने से भी अगर डेली 50 ग्राम अगर मिनरल मिक्सचर जो मिल रहा है बाहर कॉमर्शियली अवेलेबल है, फीड सप्लीमेंट की तरह अवेलेबल होता है, उसको भी आप डाल के उसके आहार में डालिए तो इसके हिसाब से आपका जो गाढ़ापन आ जाएगा दूध में।
1: जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर पंकज, जैसे कि मैं जानना चाह रही थी आपसे कि कौन कौन से नस्लें हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो अलग अलग जो उद्देश्य है हमारे मुर्गी पालकों के उसके अनुसार जिसका चुनाव कर सकते हैं।
4: देखिए नस्लों के मामले में भारत इस समय मैं अगर कहूं कि सबसे सर्वप्रथम है और सबसे उच्च स्थान पर है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास से विभिन्न जो हमारे इको क्लाइमेटिक जोन हैं उनके हिसाब से और उत्पादन की दृष्टि से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बर्ड्स तैयार कर लिए हैं। हमारे पास अगर घर के पिछवाड़े में पाले जाने वाली मुर्गियों की करीब करीब 13 से 17 नस्लें हमारे पास उपलब्ध हैं, अलग अलग इलाकों में ये विकसित की गई हैं और उन इलाकों में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। अगर विकसित उत्पादन वाली मुर्गियों को अगर हम देखें तो अंडा देने वाली हो या ब्रॉयलर हो, उस पर भी उत्पादन की दृष्टि से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और हमारे पास वो सारी नस्लें जो विश्व के किसी भी कोने में मौजूद हैं वो भारत में मौजूद हैं। और इनकी विपणन व्यवस्था भी देखें, इनकी उपलब्धता भी देखें, तो जो हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनीज हैं, जो हमारे यहाँ की सरकारी हैचरीज भी हैं, उसमें इनका उत्पादन अपेक्षाकृत जितना भी आवश्यकता है उस स्तर पर किया जा रहा है। और बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है कि हम थोड़े ही समय में अंडा उत्पादन करने वाले दूसरे देश बन जाएं वैश्विक स्तर पर। तो ये सारी चीज़ें इस इन बातों पे डिपेंड करती हैं कि हमारे पास चूजों की उपलब्धता है कि नहीं है, आवश्यकता के अनुरूप चूजे की मांग बढ़ती और घटती रहती है। क्योंकि आपने देखा है कि भारत हमारा जो है वो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। श्रावण के मास में मुर्गी के खपत पे कमी आ जाती है, गर्मी के दिनों में कमी आ जाती है और जाड़ों में ये अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। तो इसकी मांग के अनुरूप इसका उत्पादन हमारे यहाँ किया जा सकता है और जो कंपनियां हैं वो आपके घर तक आपको ये चूजे उपलब्ध करा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: आपकी हो सकती हैं परंतु इसका चिकित्सीय परीक्षण और इसका शव परीक्षण आवश्यक रूप से करा लें और चिकित्सक की सलाह लें। क्योंकि नॉर्मल आप जो बता रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूं, दो समस्याओं के कारण ये हो सकता है। एक कि आपने मुर्गी को प्रथम दिवस पे जो टीका लगाना होता है, जो हैचरी के स्तर पे टीका लगाना होता है, वो होता है मैरेक्स डिसीज का, जिसके कारण दोनों टांगों में पैरालिसिस होता है। उस कारण में अगर प्राथमिक स्तर पर आप देखें और एक सप्ताह दो सप्ताह के अंदर ये बीमारी हो रही है तो वो उस कारण से हो सकती है। और अगर 3 से 4 सप्ताह के अंतर पर यह बीमारी हो रही है तो वो सामान्यतया जो हमारा B2 होता है उसकी डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन B2। तो बी कॉम्प्लेक्स का भरपूर उपयोग करें उसके लिए। अगर उससे करेक्ट हो जाता है तो ये मानिए कि वो विटामिन के कारण है। परंतु अगर जब इसमें मृत्यु दर हो रही है या ये पक्षी अपंग हो रहा है तो इसका चिकित्सकीय परीक्षण जरूर कराएं और ये जानने का प्रयास करें कि ये बीमारी के कारण हो रहा है या ये किसी डेफिशिएंसी के कारण।
1: मैरिक्स के बारे में जैसे आपने बताया रुक साहब, तो उसमें भी बताते हैं कि बहुत एकदम शुरुआत में ही चूजों को टीका लगा देना चाहिए। तो अगर आप टीका नहीं लगवाया तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं ये चूक तो आपसे नहीं हो गई है। अंत में कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे?
3: ये हम बताना चाहते हैं कि हमने भी बहुत सारे देसी नस्ल के बारे में भी बात की और एक भारत सरकार का ये भी जैसे प्रोत्साहित किया जाए जो कि अच्छी देसी नस्ल पाल रहे हैं भारत में, उस तरीके के जो पशुपालक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम रखे जाते हैं। उसमें भी एक चीज़ है गोपाल रत्न अवार्ड, जो कि पुरस्कार राशि दी जाती है, फर्स्ट को 5 लाख की और सेकंड को 3 लाख की और थर्ड को 2 लाख की राशि दी जाती है। तो ये वर्ष में एक बार किया जाता है, तो इसमें भी भाग लें और देसी नस्ल के लिए सुधार के लिए जो हमारे पशुपालक हैं।
0: किसान भाइयों, हमारे किसान साथियों के लिए एक सुनहरा मौका है। यहाँ अवार्ड रिवॉर्ड के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह खेती करे, उन्नत अच्छी से अच्छी खेती करे, अच्छी पैदावार ले, जिससे हमारे देश का विकास होगा। क्योंकि हमारा किसान जो है हमारे पूरे देश के सभी लोगों का पेट भरता है। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार द्वारा प्रोत्साहित राशि दी जा रही है, आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, भाग लें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी के साथ किसान साथियों, यहां पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड, जहां हम मुलाकात करते हैं उन लोगों से जिनकी जिंदगी खुद एक कहानी, एक सफर और एक प्रेरणा होती है। आज हमारी मेहमान है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रसोई को सिर्फ कुकिंग तक

0: सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे कल्चर, स्टोरी टेलिंग और ह्यूमन कनेक्शन का एक खूबसूरत माध्यम बना दिया। शेफ, एंटरप्रेन्योर, एजुकेटर और जयपुर होम कुकिंग की फाउंडर शेफ पायल बियानी पिछले एक दशक से दुनिया भर के लोगों को भारतीय शाकाहारी भोजन की समृद्ध परंपरा से रूबरू करा रही हैं। जयपुर की पहली और अनोखी मार्केट टू टेबल टूर की शुरुआत करने वाली पायल जी ने न सिर्फ कुकिंग सिखाई बल्कि राजस्थान की भोजन की परंपराओं को एक जीवंत अनुभव में बदल दिया। फिलोसफी में मास्टर्स डिग्री, न्यूजीलैंड से प्रोफेशनल कुकरी डिप्लोमा, इटली में कलरी ट्रेनिंग और अपने सफर में अनेक प्रयोगों के साथ पायल जी ने कुकिंग को एक कला और जीवन दर्शन दोनों बनाया है। शेफ पायल बियानी जी का जिंदगी अनप्लग्ड में दिल से स्वागत है।
1: तो पायल बियानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग्ड प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम?
2: नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपने मुझे इनवाइट किया आपके इस प्रोग्राम में, आपके जो लिसनर्स हैं उनके साथ मुलाकात के लिए, एक वर्चुअल मुलाकात के लिए आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच
1: जी। हमारी पूरी एसएन रेडियो की फैमिली बहुत एक्साइटेड है आज आपसे बातचीत करने के लिए, आपको सुनने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ जैसे मैंने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने गैदर किए हैं जीवन में। तो हम चलते हैं और शुरू करते हैं आपके करियर से ही, जहां पे आपने फिलोसफी में मास्टर्स किया, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग लगा, और उसके बाद फिर आपने प्रोफेशनल कुकरी को अपना करियर बनाया। तो इन दोनों में पैरेलल क्या है मैम, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि फिलोसफी और कुकिंग को अगर हम देखते हैं तो देखने में अलग लगते हैं, बट इनका एक एक कॉमन ग्राउंड है कहीं ना कहीं, जहां पे लोगों को जीवन का स्वाद समझाना इन दोनों करियर पाथ्स या इन दोनों फील्ड्स का पर्पस है। तो आप इन दोनों में कैसे पैरेलल ड्रॉ करते हैं और कैसे फिलोसफी से आप कुकिंग की तरफ आए?
2: देखिए तनुषा जी, फिलोसफी जब मैंने पढ़ी तो वो वैसे टेक्स्ट बुक होता है, सब आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ते पढ़ते मतलब मैंने ग्रेजुएशन भी फिलोसफी के साथ में की है एज अ माइनर, बट फिर मैंने मेजर सब्जेक्ट लेके मास्टर्स किया था। सो पढ़ने के दौरान ही हमारे डिस्कशंस होते थे, बिकॉज फिलोसफी यूजुअली जब क्लासेस होती है तो डिस्कशन क्लासेस होती है, देर इज नो राइटिंग क्लास, उसमें कुछ लिखवाया नहीं जाता, कुछ नोट्स नहीं मिलते, सिर्फ डिस्कशंस होते हैं टॉपिक पे। फिलोसफर्स जो होते हैं वो फिलोसफी की बात करते करते, आप जब पढ़ाई करते करते जब खत्म करते हैं, तब तक आपको ये रियलाइज होने लग जाता है कि जिंदगी में हर चीज में फिलोसफी है। हर चीज में आप कुछ भी चीज, कोई काम करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कोई या अपनी लाइफ में कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, हर चीज के पीछे एक फिलोसफी होती है। तो जिसको हम बहुत कॉमन भाषा में एक आइडिया बोलते हैं, आइडिया। सो हर चीज का एक आइडिया होता है जो कि वर्चुअल होता है, जो कि जिसे आप कहते हैं इमेजिनेटिव होता है, और वो आउट ऑफ द जो भी कुछ आप ठोस में बनाने वाले, जो भी आप प्रैक्टिकली बनाने वाले, वो उसका एक फॉर्म होता है जो आपके दिमाग में बनता है
1: जी।
2: बाकी फिलोसफी हर चीज के पीछे होती है, पेड़ उगाने के पीछे फिलोसफी होती है, घर बनाने के पीछे फिलोसफी होती है, परिवार बनाने के पीछे फिलोसफी होती है, रिलेशन बनाने के पीछे, कुछ भी चीज, एनीथिंग, यू जस्ट पिक अप एनी सब्जेक्ट, एनी रिलेशनशिप, एनी कुछ भी चीज आप उठा के दुनिया में से देखेंगे, उसके पीछे कोई फिलोसफी जरूर होती है। साइंस के पीछे भी फिलोसफी होती है,
1: बिल्कुल।
2: तो कुकिंग इसी तरीके से कुकिंग भी एक ऐसा चीज है जो कि हमने मतलब ह्यूमन बींग्स की एक ऐसी स्किल है जो हम लोगों ने इतने अपने जितना भी डेवलपमेंट हुआ है हजारों साल करोड़ों सालों का, उसका एक स्किल डेवलप है। कुकिंग के पीछे भी एक फिलॉसफी होती है,
1: राइट।
2: वही चीज, उसी चीज ने मेरे को इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने का, एक मतलब मैं एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पे कैसे आई उसमें हेल्प करी।
1: तो
2: मैं वो मतलब मैं उस तरीके से अपने प्रोफेशन को देखती हूँ,
1: right.
2: फाइनली इसको मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया।
1: Wow.
2: So it is about that. Yeah.
1: अमेजिंग अमेजिंग जर्नी, और बहुत ही खूबसूरती से आपने दोनों में पैरेलल ड्रॉ किया. जीवन में हर चीज में फिलॉसफी है, हर चीज में एक फलसफा है, बहुत ही सही बात है. और कैसे एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की जर्नी है ये बेसिकली हर चीज में. तो हम बहुत हैप्पी हैं कि आप कुकिंग की तरफ आए, क्योंकि हमें आपके बहुत अमेजिंग खाने का जायका चखने को मिल रहा है. अब आगे चलते हैं मैम, आपने बहुत सारे लोगों को इंडियन वेजिटेरियन कुजीन सिखाई है, तो आप और आपने बहुत सारे फॉरेनर्स के साथ भी डील किया है. बेसिकली आपका क्लाइंटेल जनरली फॉरेन क्लाइंट्स ही रहे हैं जिस तरह का आपका कोरियोग्राफ रहा है. तो आपके अनुभव में जब आप किसी फॉरेन गेस्ट से पहली बार इंटरेक्ट करते हैं एक ट्रेडिशनल इंडियन किचन सेटअप में, तो उन्हें सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट करता है आपके एक्सपीरियंस में? वो रेसिपीज से अट्रैक्ट होते हैं, मसालों से हमारे अट्रैक्ट होते हैं, हमारी मेहमान नवाजी से अट्रैक्ट होते हैं, या इन सबका एक ब्लेंड होता है?
2: एक्चुअली देखिए, वैसे हमें इसमें थोड़ा सा मैं अपना मतलब जब आप फर्स्ट टाइम हम क्योंकि हम मैं फर्स्ट टाइम मिल रही होती हूँ बिल्कुल ही, मतलब मेरे से कोई इंट्रोडक्शन नहीं है किसी का भी. जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो जिंदगी में मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, अधिकतर रिपीट क्लाइंट होते हैं वो अलग बात हो गई. बट जब मैं पहली बार किसी से मिलती हूँ और वो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आया है कि कुछ वो भारतीय खाना एंजॉय करेगा, यू नो कुछ हम खाएंगे, कुछ नई जगह का नया कल्चरल फूड हमें मिलेगा, तो उसके उसका जो फर्स्ट जो उसके दिमाग में जो भी पिक्चर्स होती हैं वो होती हैं बढ़िया सी सुंदर सी थाली, कुछ बढ़िया सा सुंदर सा कुछ चीजें, कुछ इंटरेस्टिंग समथिंग न्यू विच ही हैज नॉट एक्सप्लोर्ड. बट जो उनको यू नो सबसे ज्यादा जब हम प्रोसेस चालू करते हैं अपना, पहले हम यू नो चीजें दिखाते हैं उनको, मार्केट लेके जाते हैं, वो सब चीजें करते हैं, तो सबसे ज्यादा मजा आता है हमारे मसालों को देख के. सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट उनको किसी चीज से होता है, अगर मैं आपके प्रश्न का सही जवाब दे रही हूँ, तो वो मसालों से होता है. क्योंकि हर दुनिया में हर खाने में मसाले होते हैं, बट जिस तरीके से भारत के अंदर भारतीय पारंपरिक भोजन में जो मसालों का समागम हुआ है, जो उसका इंटीग्रेशन हुआ है, वो यूनिक है.
1: बिल्कुल.
2: सो आई थिंक सो फ्रॉम फर्स्ट मोमेंट टू द लास्ट मोमेंट ऑफ आर होल एक्सपीरियंस, जो चीज उनको बार बार एक्साइट करती है वो मसालों का इंटीग्रेशन है. सो एंड देन यू नो दैट गिव्स देम वेरी वेरी इट्स अ सरप्राइजिंग, मतलब उनको हर चीज में ऐसा कैसे होता है, ये ऐसे होता है, इतनी सारी चीजें होती है, ये सब चीजें होती है. सो वी स्टार्ट फ्रॉम, मैं उनको स्टार्ट करती हूँ चार मसालों से, चार से मैं उनको छह पे लाती हूँ, छह से मैं उनको आठ पे लेके जाती हूँ, आठ से दस पे लेके जाती हूँ, दस से बीस हो जाते हैं.
1: तो
2: वो देखते हैं कि इतना लंबा इसका बैंडविड्थ है और इसके अंदर से हम इतनी सारी चीजों से एक फ्लेवर बना रहे हैं. वो चीज उनको सबसे ज्यादा एक्साइट करती है और वो चीज भारत के खाने को, भोजन को, हमारी परंपराओं को सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है. भारत का एक्चुअली जो ज्योग्राफी है, जो सेंट्रलाइज है, वो सारी दुनिया से उसके अंदर उसमें यू नो सब चीजें मिक्स होकर के एक नया कुजीन बना है. सो हम जो अभी ले रहे हैं, हम जो खा रहे हैं कुजीन, जो हम व्हाट यू नो जो आप कहेंगे जो प्रिवेल करता है कुजीन इस समय, ये बहुत लंबे शताब्दियों का मेल है.
1: बिल्कुल.
2: नो उसका है. सो मसाले मैं अपने गेस्ट को भी यही कहती हूँ कि इंडियन कुजीन is just knowledge about spices. It's about the combination of spices. It's only that. So spices is topmost. So सबसे ज्यादा I will keep it there. मैं उनको यही कहूंगी कि मसाले ही सबसे ज्यादा यूनिक है.
1: बिल्कुल. जैसे हमारा स्पाइस रूट रहा है और हमेशा हमें भी इंट्रीक करता है, तो बाहर वालों के लिए तो ये है ही बहुत स्पेशल कि किस तरह से इतने अलग अलग कलर्स के मसाले, इतने अलग अलग तरह के मसाले किस तरह से मिलते हैं और इतना यम्मी, इतना जायकेदार खाना हम बनाते हैं और इतने तरह के पकवान हम बनाते हैं हमारे देश में, तो विच इज वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंट्रीगिंग. तो इसी एहसास के साथ मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कोई गीत की फरमाइश करें तो वो कौन सा होगा? तो हम आपके लिए आज वही गीत प्ले करेंगे.
2: देखिए, मुझे एक बड़ा खूबसूरत गीत पसंद है, मुकेश जी का गाया हुआ
1: जी,
2: गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे.
1: वाओ,
2: तो जीवन का ये बहुत ही मतलब बहुत ही अगेन बहुत बड़ा बहुत
1: फिलोसफिकल गाना है जी,
2: और लेकिन बड़ी सिंपल भाषा में समझाया गया है और बड़ा सब, अगर उसको आप समझना चालू करें तो आपकी लाइफ जीना आसान हो जाएगा.
1: बिल्कुल. चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, फ्रॉम द फिल्म रेशमी रुमाल।

0: क्या खूबसूरत गीत हैं, क्या खूबसूरत गीत हैं ये, सच में जीवन के छोटे छोटे फलसफे हैं। और क्या गायकी है मुकेश साहब की, बहुत ही उम्दा। वेलकम बैक पायल मैम।
1: धन्यवाद।
0: आगे चलते हैं, आपने पहला जयपुर का एक बहुत ही अनोखा अनूठा सफर शुरू किया जिसको हम मार्केट टू टेबल टूर बोलते हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मार्केट टू टेबल टूर होता क्या है हमारे श्रोताओं के लिए, और मेरा दूसरा सवाल इसी के अंदर छुपा हुआ है तो वो ये है कि जयपुर की किसी सब्जी मंडी, किसी मसाले की दुकान या किसी पुरानी गली को अगर एक आवाज मिल जाए तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उन गलियों में इतना घूमते हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है वहां की ग्राउंड रियलिटीज और सब यू नो माहौल का, तो आपको क्या लगता है कि हमें राजस्थानी खाने के बारे में क्या कहानी सुनाएंगी वो गलियां?
1: तो तनुषा जी, अगर आपके सवाल का जवाब मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ कि हम इसको मार्केट टू टेबल टूर क्यों कहते हैं, जैसा कि लिटरल मीनिंग है मार्केट से टेबल तक का सफर, इसको ऐसे माना जाए, तो एक छोटी सी जर्नी हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको एक एक्सपीरियंस जर्नी की तरह देखिए। तो आप मार्केट से, वैसे मैंने जो यू नो मेरा जो अगेन आइडिया था इसके पीछे वो ये था कि मैं एक आम गृहिणी, भारत की एक आम मॉडर्न गृहिणी का जो दिन भर का सफर होता है वो क्या होता है, वो सामान खरीदती है, मंडी जाती है, सामान खरीदती है, आज की सब्जियां खरीदती है, कुछ मसाले वगैरह, कुछ तेल घी, जो आपके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं आटा वगैरह, सब चीज खरीद के थैले में भर के घर लाती है और फिर उससे सोचना चालू करती है कि अब चलिए क्या बनाया जाए। तो ये छोटा सा सफर वही दिखाता है, हम वही करते हैं और ये बिल्कुल मार्केट टू टेबल है, जैसे उस खाने का सफर जो मार्केट से चालू हुआ और आपकी टेबल पे आके खत्म हुआ। तो ये तो हमारे ने अपने मतलब हमारे नाम के पीछे की कहानी बताई है आपको
0: जी।
1: और जैसा कि आपने पूछा कि राजस्थान की गलियां या मार्केट्स या हमारी मंडियां हमें क्या क्या क्या कहानी कहती होंगी, तो वो आपको कहेंगी कि इतनी बंजर जमीन जो है राजस्थान की जमीन, बहुत ही मुश्किल ज्योग्राफी है, बहुत ही टफ ज्योग्राफी कहलाती है, बहुत ही मुश्किल जगह है, बहुत आसानी से यहाँ कुछ भी नहीं होता।
0: बिल्कुल।
1: सो हमने जो भी कुछ अनाज, जो भी कुछ वनस्पतियां, जो भी कुछ सब्जियां या उगती हैं, तो साल में अब तो बहुत फर्क आ गया टेक्नोलॉजी की वजह से, बट ओरिजिनली जो देखा जाए कि हमारा खाना जो है वो बहुत ही मुश्किल से पाई हुई छोटी छोटी कम चीजों का बनाया हुआ बड़ा ही स्वादिष्ट मेल है।
0: बिल्कुल।
1: तो लेस इंग्रेडिएंट्स एंड मोर फ्लेवर्स।
0: बिल्कुल।
1: तो सारी कहानी उसी की है कि कम चीजों में यहाँ की महिलाओं ने, जो कि एक्चुअल में जिनको जो सबसे बड़ी शेफ है दुनिया की, वो एक्चुअली इसीलिए यू नो लेडीज हैं, उन्होंने हमेशा से खाने की परंपरा को बहुत रिच बनाया, उनके पास कुछ भी नहीं होता, आज छाछ है तो वो छाछ से आपको कड़ी बना देंगी, आज यू नो खाली प्याज बची है तो वो रोटी इतनी स्वादिष्ट बनाएंगी कि रोटी के साथ तो वो प्याज ही अच्छी लगेगी। सो हम राजस्थान का व्यक्ति जो है ना, वो बहुत खाना जो उसका है बहुत सादा खाना है।
0: बिल्कुल।
1: कम चीजों में वो संतुष्टि पाता है। सो हमारे जो भोजन है, हमारा जो राजस्थान का जो पारंपरिक भोजन है, वो उसकी कहानी असली यही है, कम चीजों में बेहद जिंदगी का स्वाद।
0: बिल्कुल। सादा जीवन, सरल जीवन, सुंदर जीवन।
1: एब्सोल्युटली।
0: आगे चलते हैं मैम, आपने बहुत तरह के पिकल्स और सॉसेस में एक्सपेरिमेंट किया है, आई थिंक 12 पिकल्स की एक रेंज है आपके पास। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप फिलोसफी भी पढ़ चुके हैं, तो एक बहुत फिलोसफिकल सा सवाल है कि अगर जिंदगी को एक आचार की बरनी माना जाए तो उसमें कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो जरूरी हैं ताकि वक्त के साथ उसका स्वाद और बेहतर होता जाए?
1: क्या बात?
0: इसी के साथ एक और सवाल मैंने इसमें जोड़ दिया है, एक कोई आपके फेवरेट आचार की अगर रेसिपी आप बता सके तो हमारे लिसनर्स नोट डाउन कर लें।
1: ओके
0: जी।
1: सो चलिए सर, पहले आपको देखा जाए अचार का मतलब, सो अचार और लाइफ को अगर एक सेम मायने में रखा जाए तो अचार की बरनी और लाइफ की बरनी, अचार में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेन चीजें हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज अचार बनती है। उसमें फर्स्ट है नमक, सेकंड है ऑयल तेल, और तीसरी चीज है मसाले. अगर आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करें तो नमक क्या काम करता है. नमक बेसिकली उसको मतलब जो भी आपने इंग्रेडिएंट का अचार डाला है उसका उसको गलाता है, उसको इंग्लिश में उसको कहते हैं क्योर करना. उसको आगे वो उसका प्रोसेसिंग करता है उसके अंदर, राइट
0: जी.
1: और तेल जो होता है वो उसको बाहरी आबो हवा मॉइस्चर ऑक्सीजन हर चीज से दूर रखता है, तो वो बेसिकली प्रिजर्वेशन का काम करता है.
0: बिल्कुल.
1: और जो मसाले होते हैं वो उसका स्वाद बढ़ाते हैं.
0: क्या बात है.
1: तो ये तीन मेन कॉम्पोनेंट्स है अचार के, राइट. अगर इसको हम लाइफ के रूप में देखें तो लाइफ का जो नमक है वो है परिपक्वता, मेच्योरिटी.
0: ब्यूटीफुल,
1: राइट. तेल जो प्रिजर्वेशन का काम करता है, मेरे हिसाब से जिंदगी में आपको प्रिजर्व आपकी लाइफ के सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस के जो इफेक्ट्स हैं उनसे प्रिजर्व आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी कर सकती है. तो आध्यात्मिकता आपको आपका तेल बन जाता है,
0: ल्यूब्रिकेंट है.
1: तो इट्स सो यू नो इन टर्म्स ऑफ अचार इट्स गोइंग टू प्रिजर्व यू, इट्स गोइंग टू सेव यू फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इफेक्ट्स.
0: एब्सोल्युटली
1: आउटसाइड इफेक्ट्स. सो इट विल कीप यू जस्ट द वे यू आर प्योर,
0: राइट.
1: देन आपकी लाइफ का जो यू नो जो स्वाद है वो बढ़ेगा आपके एक्सपीरियंसेस से. आपके हंसी खुशी के पल, सुख दुख के साथ, आपकी मेमोरीज, ये सब चीजें लाइफ का स्वाद बढ़ाती है. सो इन तीनों का सही मिश्रण, कुछ भी चीज ज्यादा नहीं, कुछ भी चीज कम नहीं, तो अचार की फिलॉसफी आपको लाइफ में ऐसे काम आएगी.
0: बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें समझाया. और बिल्कुल सच है कि सच में एक आचार की बरनी और जीवन जिंदगी में बहुत पैरेलल्स हैं. और ये तीन चीजें जो हैं वो सच में जीवन को जीवन बनाती हैं. खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया मैम. इसी के साथ अगर आप एक रेसिपी बता दें हमारे श्रोताओं के लिए तो.
1: अच्छा चलिए, बड़ा क्विक तो होता है, सबसे आसान होता है हरी मिर्च का अचार.
0: जी,
1: हरी मिर्च का बहुत ही आसान होता है, कोई भी बना सकता है. बट अगेन कॉम्पोनेंट्स वेरी सेम सिमिलर. आपको नमक चाहिए, हरी मिर्चियां बढ़िया सीजनल चाहिए. सो अगेन जो भी अचार आप डालेंगे उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत सीजनल होना चाहिए. जो वेजिटेबल या फ्रूट आप जिसका भी अचार डाल रहे हैं या जैम बना रहे हैं उसको बहुत सीजनल होना चाहिए. वो उसी सीजन में उगा हुआ हो और बेस्ट क्वालिटी हो. तो बढ़िया हरी थोड़ी सी पकी हुई मिर्चियां, मतलब हम थोड़ा सा उसकी पतली होनी होती है. मैं ज्यादा डीप नहीं जा पाऊंगी आपके साथ इस समय, समय की उसके वजह से. तो हरी मिर्चियों को आप स्लिट कर सकते हैं बीच में से एक चीरा लगा करके. पुछी हुई हरी मिर्ची, हाथ से कपड़े से पुछी हुई हरी मिर्ची को आप फटाफट चीरा लगा के एक प्लेट में रख दीजिए. तो पाव भर हरी मिर्चियां आपने ली है, उसके अंदर आप 50-50 ग्राम तीन मेन चीजें मिला सकते हैं. थोड़े से भुने हुए मसाले हैं ये, सो राई जो खटाई पैदा करेगी, सौंफ जो स्वाद लाएगा, और थोड़ी सी एक चम्मच दाना मेथी.
0: जी,
1: ये आपके मसाले हैं. इसके अलावा नमक, लाल मिर्च और हल्दी, ये आपका कलर और उसकी शार्पनेस बनाएगी. और इन सबको यू नो पिसे हुए मसालों को आप मिला करके थोड़ा सा तेल के साथ में एक गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे हम. एक चम्मच सिरका आप इसमें डाल सकते हैं ताकि वो थोड़ा प्रिजर्व हो जाए. एक चीज जो हमने पहले बात करी थी, नमक, वो इसमें डलेगा. सो नमक थोड़ा सा बाकी मसालों से ज्यादा पड़ता है, आपने आम खाने से ज्यादा पड़ेगा. हम ये ना सोचे कि नमक तेज हो जाएगा, क्योंकि नमक इसको पकाएगा इस अचार को. सो आम यू नो आम एवरीडे रेसिपीज से आप नमक थोड़ा सा डबल लिखिए.
0: जी,
1: इन सब चीजों को आप मिला के पेस्ट सा बना के हरी मिर्ची के बीच में जो स्लिट बनाया है उसके अंदर आप भर दीजिए. और इनको एक जार के अंदर आप यू नो सूखा बिल्कुल कांच का जार, ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर आप लगा दीजिए. एक एक करके यू नो स्टैंडिंग खड़ी कर सकते हैं या दबा सकते हैं एक के ऊपर एक स्टैक करके. फिर तेल को हम सरसों के तेल को गर्म करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, और फिर इस जार के अंदर ऊपर तक लबालब भर देते हैं ताकि ऊपर कोई उसका कोई एयर पॉकेट ना रह जाए. और जार को आप कस के टाइटली बंद करके 12 घंटे के लिए तपती हुई धूप में, मतलब खुली हुई धूप होनी चाहिए, प्योर दिन होना चाहिए, अच्छा बढ़िया साफ, उसमें आप रखिए और अगले दिन आप उसको एंजॉय कीजिए.
0: अरे वाह, मेरे तो मुंह में स्वाद आ गया, मेरे दिमाग में पिक्चर आ गई, मेरी प्लेट एक पराठा और उसके ऊपर ये अचार,
1: उसके ऊपर एक बढ़िया सी लंबी सी मिर्ची।
0: बिल्कुल बिल्कुल स्वाद आ गया सच में। और श्रोताओं, जैसे आपने सुना, बहुत ही क्लैरिटी से हमें ये रेसिपी मिली है। आई होप आपने नोट डाउन की हो, तो आप इसे जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई करिएगा। मैम, इसी मोड़ पे, इसी चटपटे अचार के स्वाद में हम एक और गीत का ब्रेक लेंगे। अगर एक और गीत की फरमाइश मैं आपसे करना चाहूँ तो वो कौन सा होगा?
1: एक मूवी है, बहुत बहुत ही खूबसूरत मूवी, जिसपे जो एक्चुअली बुक से बनी है, आर के नारायण जी की बुक है गाइड
0: जी,
1: और उसी के ऊपर देवानंद जी ने एक मूवी बनाई थी गाइड के नाम से। एस डी बर्मन का इसमें संगीत है और ये गाना उन्हीं का गाया हुआ है
0: जी।
1: वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ।
0: ब्यूटिफुल, अनदर फिलोसॉफिकल सॉन्ग। यस
1: जी, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ।
0: खूबसूरत खूबसूरत। चलिए सुनते हैं एक और बहुत ही सुंदर गीत, जो पूरी जीवन का एक सार है, एक फलसफा है। और ये खैर फिल्म भी, जैसे कि मैम ने बताया, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, फ्रॉम द फिल्म गाइड।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक पायल मैम
1: जी।
0: एक और बहुत ही खूबसूरत गीत सुना हमने, आगे चलते हैं। मैम आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स यू नो लाइफ में पढ़ाव आपने पार किए हैं, अचीवमेंट्स आपने रहे हैं आपके, जैसे न्यूजीलैंड में आपने प्रोफेशनल कुकरी की पढ़ाई की, इटली में आपने हैंड्स ऑन कल्नरी ट्रेनिंग की, कैलिफोर्निया वॉलनट्स के प्रमोशनल इवेंट्स में काम किया, सेलिब्रिटी शेफ वरुण इमामदार के साथ आपने कोलैबोरेट किया और विवाना कल्चर होटल के लिए एक स्पेशल शिखावटी मेन्यू क्यूरेट किया। तो इतनी सारी जब उपलब्धियां रही हैं आपकी इंटरनेशनल एंड नेशनल, तो उन सबके बीच में आपके दिल के लिए, आपके दिल के सबसे करीब, जिसको आप सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यू नो एक प्राइज्ड आपका पोजेशन है, वो मेमोरी या वो अचीवमेंट कौन सा है आपके जीवन का?
1: तनिषा जी, मैं आपका क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत है, बट मैं आपको मतलब मैं कहना चाहूंगी कि मेरे लिए कभी भी अचीवमेंट्स, उपलब्धियां बहुत ही मायने नहीं रखे। सब चीजें मतलब इन्होंने ऑब्वियसली ये आपके बहुत ये मतलब ये पड़ाव होते हैं जिंदगी के, और मैं इसको ऐसा मानती हूँ कि ये बहुत ही यू नो बहुत मैं वर्ड जैसे जो कहते हैं अपन मंडन है, बहुत ही यू नो कॉन्सेप्ट है ये अचीवमेंट्स मेरे लिए पर्सनली। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में किसी को भी अपने अचीवमेंट्स पे खुशी होनी चाहिए, बट वो बहुत दिन तक उस चीज पे उस चीज का कोई फायदा नहीं होता, उस चीज का कोई आपकी लाइफ में कोई उस चीज का असर नहीं होता, क्योंकि सिर्फ उसका अनुभव जो है जो आप अचीव कर रहे हैं उस समय जो आपको अनुभव होता है, जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं तो आपका डेस्टिनेशन एक खत्म हुआ है और उसका एक अनुभव होता है, वो कुछ क्षणों का होता है और उसके बाद में वो गुल हो जाता है,
0: बिल्कुल बबल बबल फेम जैसा
1: बबल होता है। तो वो अचीवमेंट कोई मिलना किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस, कोई भी यू नो ऐसी कोई चीज उपलब्धि हासिल करना, वो एक क्षण होता है और वो क्षण गुजर जाता है।
0: करेक्ट।
1: लेकिन मैं उसको मानती हूँ कि जिंदगी के जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और ये कहीं आप पहुंचते हैं तो कभी आपको बहुत सुंदर वैली मिलती है, कभी कोई बहुत बड़ा कोई चीज कोई मोड़ पे आपको सुंदर झरना मिल गया, तो ये मेरे लिए लाइफ में वैसी चीज है जिनको मैंने देखा, उनसे उस समय अनुभव लिया, अपने आप को गेन किया और मैं आगे बढ़ गई।
0: सो
1: इस तरीके से मैं मतलब इसी तरीके से देखती हूँ, बट इसके यू नो उसके साथ साथ मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपके साथ में रह जाते हैं ना, वो आपको इनसे मिले हुए दोस्ती, इनसे मिला हुआ प्यार, इनसे मिली हुई इज्जत, तो आपकी उपलब्धियों से जो भी ये चीजें आपको अगर मिलती हैं तो वो आपके साथ जरूर एज अचीवमेंट चल सकती है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि इटली से मतलब जब मैंने वहां पे अपना एक्सपीरियंस लिया रह के वहां के लोगों के साथ में, तो उनसे मैंने खाने से रोमांस करना सीखा है, तो वो मेरी उससे मैंने खाने से प्यार करना सीखा। मेरा प्रोफेशनल डिप्लोमा, मेरी जो पढ़ाई हुई उसने मुझे किचन में डिसिप्लिन सिखाया, और जो इवेंट्स और बड़े लोगों के साथ, बड़े शेफ्स के साथ में या बड़ी कंपनीज या रेस्टोरेंट्स के साथ काम किया, तो वो मेरे लिए उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस दिया है किचन के लिए। सो एज अ प्रोफेशन उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस दिया है कि किस तरीके से क्या चीजें हैंडल की जाती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर मैं सच में कहूँ तो मेरा अचीवमेंट, अगर मैं कभी अपनी जिंदगी में आखिरी मोमेंट्स में अपने आप को मानूंगी कि मैंने कुछ हासिल किया है, तो वो होगा दो मेरे बेटे, जो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उनको अच्छा इंसान और संवेदनशील व्यक्ति बना पाई और जो हमेशा खुश और एक संतुष्ट ह्यूमन बीइंग बने, तो वो अभी वो टीनेजर्स ही है, अभी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। सो अगर मैं कभी अपने आप को ये मान पाऊंगी कि मेरे अचीवमेंट्स अच्छे रहे, तो मैं सिर्फ वो दो इंसानों को बड़ा करके एक अच्छा इंसान बना पाई, उसमें एक अपना अचीवमेंट मानूंगी।

0: फैमिली उनको हेलो कहना चाहेगी?
1: मेरे बड़े बेटे का नाम है नभास.
0: वाओ,
1: नभास, या नभास. नभास का मतलब होता है नभ और ओस,
0: आकाश और ओस,
1: आकाश में ओस. तो आकाश की मिस्ट, अगर इंग्लिश में सिंपली बोलना चाहे तो मिस्ट उसका मतलब होता है.
0: ब्यूटिफुल.
1: एंड द सेकेंड वन ही इज नेम्ड एज कुशाग्र.
0: वाओ.
1: So it is because of the intellect. So Kushagra is basically intellect.
0: जी, बहुत ही खूबसूरत नाम है. तो नाभास और कुशाग्र, आपको पूरी SN रेडियो फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपकी मदर आज यहाँ पे हैं. हम सब उन्हें सुन पा रहे हैं और वो इतनी ब्यूटीफुल एक पर्सनालिटी हैं. तो आपको बहुत कंग्रेचुलेशंस टू हैव अ मदर लाइक हर एंड इन योर लाइफ, एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेज आपके फ्यूचर के लिए. गॉड ब्लेस यू.
1: थैंक यू.
0: आगे चलते हैं मैम. आजकल सोशल मीडिया पर फूड की बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफ्स वायरल होती हैं. बहुत सारी रेसिपीज का भरमार है, फ्लड है एक्चुअली बेसिकली. तो अब आपके हिसाब से अच्छे कंटेंट और अच्छे खाने में क्या फर्क है? आई एम श्योर बहुत फर्क है, तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं हमें. और क्या कभी हम प्रेजेंटेशन के चक्कर में, सिर्फ दिखावे के चक्कर में जो एक्चुअल इमोशंस हैं, जो एक्चुअल टेस्ट है, वो खो देते हैं खाने का?
1: बिल्कुल, मैं आपका सवाल पीछे से चालू करूंगी.
0: जी,
1: कि आपने जो बात बोली कि हम प्रेजेंटेशन के चक्कर में खाने का स्वाद खो चुके हैं. तो अगर आप आज किसी सोशल इवेंट में जाते हैं तो एक ही चीज मायने रखती है, उसका प्रेजेंटेशन. उसकी उसका वो मुंह में कैसा स्वाद कर रहा है, ये बहुत बाद में आता है. द फर्स्ट थिंग इज हाउ इट इज प्रेजेंटेड. ये तो बड़ी बात हो गई, मतलब प्रोफेशनल जगह है आप, उसकी बात पार्टी है, कोई बात कर रहे हैं उससे भी. बट अगर आप किसी के घर भी जाते हैं, द फर्स्ट थिंग उनको जिस चीज के डर रहता है वो है कि चीजें दिखने में कैसे प्रेजेंटेड है टेबल के ऊपर. जो पुराने जमाने में नहीं हुआ करता. पुराना जमाना नहीं, बहुत पुरानी बात नहीं कर रही मैं, 10-12-15 साल
0: की.
1: तो अपने अपने दोस्तों के घर या अपने रिश्तेदारों के घर अगर आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपकी यू नो आपसे एक्सपीरियंस करती थी वो थी खुशबू. आप घर में घुसे हैं तो एंटर करती सबसे पहले खुशबू आती थी, क्योंकि वो खाना वही बना है और कुछ घंटों से वहां पे प्रिपरेशन चल रही है, पिसाई हो रही है, धुलाई हो रही है, तलाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है. तो वो घर की आबो हवा में फैल जाता है और बाहर तक पड़ोसियों को पता लग जाता है कि साहब आज तो कोई
0: ये बना है, आज ये बना है.
1: खास बात है, कोई खास बात है,
0: कोई आ रहा है,
1: या कोई मेहमान आ रहा है, नहीं तो कोई ना कोई खुशखबरी है साहब. इसलिए जो मैं बड़ी कहानियां हमेशा ये सुनाया करती हूँ अपने गेस्ट को कि भाई अगर घर में पूरी बन रही है और हलवे बन रहे हैं तो इसका मतलब घर में खुशखबरी है.
0: खुशखबरी है,
1: है? तो ये हमारे यहाँ खाना एसोसिएट होता था फ्लेवर से, उसकी खुशबू से, उसकी महक से, उसके इमोशन से, राइट?
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: अब प्रेजेंटेशन जहाँ तक आती है वो प्रोफेशनली जरूरी होता है, होटल में जरूरी है, क्योंकि मैं उस शेफ को नहीं जानती हूँ जिसने वो खाना बनाया, लेकिन मैं उस चाटी को जानती हूँ जिसने मेरे लिए आज लंच प्रिपेयर किया है. यू नो, आप समझ रहे हैं उस रिलेशनशिप को.
0: बिल्कुल.
1: तो जो शेफ है वो उन्होंने बहुत खाना तो बहुत अच्छा बनाया, बहुत ही ध्यान से बनाया, लेकिन अब वो उस तक पहुंचाए कैसे? तो उसको प्रेजेंट ऐसे करना पड़ता है कि वो आने वाला जो गेस्ट है उनका वो फटाफट उस चीज के लिए अट्रैक्ट हो सके.
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि उसने वो प्रोसेस नहीं देखा जब वो बन रहा है.
0: बिल्कुल.
1: तो उसको कनेक्ट कैसे करेगा, वो दिखा के कनेक्ट करते हैं. सो प्रेजेंटेशन वहां मायने रखती है. लेकिन हम आजकल क्या कर दिए हैं, बिकॉज ऑफ कंटेंट एंड रील्स एंड एवरीथिंग, और क्योंकि ये मोनेटाइज हो चुका है तो लोग भेड़ चाल में, अगेन रैट रेस में फंस गए हैं कि हम कौन ब्यूटीफुल प्लेट ऑफ फूड बनाएगा. ना तो किसी को ये पता है कि वो प्लेट ऑफ फूड उसकी वेस्टेज क्या है, उसका स्वाद क्या है, क्या चीज है. सो कलर्स आर बिकमिंग इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द आईज.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो मेरे लिए कभी भी ये मायने नहीं रखते, मेरे लिए ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है. तो मैं ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी अगर हम बात ज्यादा डीप जाएंगे तो, बट मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मेरे लिए तो यही आज भी किसी के घर से किचन से आती हुई खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है. मैं उसके किचन के बाहर से मुझे हींग की भी खुशबू आ रही है ना, तो मेरे लिए वो उनके उनके घर के माहौल को

0: समझने का एक जरिया होती है कि अरे वाह
1: आज क्या बात है,
0: आज बढ़िया सा तड़का लगाया हुआ है तीन का दाल में
1: yes.
0: सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है.
1: I'll
0: leave this question to this point only.
1: Yes.
0: So it's experience. Basically, yes. It's experience, yes.
1: Beautiful, beautiful. कि कैसे ये एक सेंसरी एक्सपीरियंस ज्यादा है, एक सेंसरी ट्रीट है विजुअल ट्रीट से ज्यादा.
0: जी.
1: तो ये बात अगर हम समझ जाएं तो शायद हमारा खाना उतना स्वादिष्ट हो जैसा हुआ करता था. सिर्फ एक विजुअल ट्रीट ना रह के एक सच में सेंसरी ट्रीट हो जो आपके एक स्वाद को, आपके यू नो महक को एक एक टिंगल करे और आपको एक्साइट करे कि आज क्या बना है इस गली में, इस घर में. तो जैसे कहते हैं कि हर घर कुछ कहता है, तो उसी तरह उस घर का खाना भी कुछ कहता है और उसकी खुशबू भी कुछ कहती है. बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया मैम. इसी मोड़ पे हम एक और गीत का ब्रेक लेंगे आपकी ही फरमाइश पे, एक और गाना.
0: अच्छा, अब मैं आपको सुनाना चाहूंगी एक बड़ा ही अच्छा मुकेश जी का गाया हुआ गाना है, राज कपूर जी पे फिल्माया गया है. एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. बड़ा ही खूबसूरत एंड अगेन वेरी फिलोसॉफिकल, बट बहुत प्यारा गाना है
1: सच में. और आप मुकेश के फैन हैं, तीनों ही गाने हमने मुकेश के सुने और बहुत खूबसूरत गाने आपने चुने हमारे लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो चलिए सुनते हैं एक दिन मिट जाएगा माटी के बोल फ्रॉम द फिल्म धर्म करम.
0: जरूर.
2: एक दिन

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक पायल मैम।
1: थैंक यू
0: मैम। आगे चलें तो आपने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में कुकिंग सिखाई है, एक मेंटोर के रूप में, एक ट्रेनर के रूप में।
1: जी।
0: तो आपको एक ऐसा लाइफ लेसन अगर चुनना हो जो रसोई ने आपको सिखाया है और जो आप सोचते हैं कि हर इंसान में पास ऑन होना चाहिए, वो एक ट्रेट, वो एक क्वालिटी, तो वो क्या होगा?
1: क्वेश्चन बड़ा जोरदार है।
0: सब में फिलॉसफी ऐड करने की कोशिश की है हमने।
1: नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मुझे मजा आ रहा है क्योंकि मैं मेरा पर्सपेक्टिव फिलॉसफी बन गया है।
0: जी जी।
1: मैं कहूंगी कि देखिए, खाना जैसे पहले वाले जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो खाने का जो भोजन की इम्पोर्टेंस है वो उसके इमोशंस, उसके सेलिब्रेशन, उसके उन चीजों से आती है। तरीके से ही उसी लय में मैं आगे बात करना चाहूंगी कि इट्स यू नो इट्स नॉट अबाउट द राइट इंग्रेडिएंट्स, इट्स नॉट अबाउट। सो किचन में मैं अपने क्लाइंट्स को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाना चाहती हूँ कि हर वक्त, या मैं जो सीखी हूँ किचन से, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि मैंने क्या सीखा अपनी कुकिंग से, कि हर समय परफेक्ट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, परफेक्ट लिस्ट ऑफ टाइम, परफेक्ट रेसिपी, सिर्फ यही मायने नहीं रखती। किचन कुकिंग आपको जो सिखाती है वो खराब चीज को अच्छा बनाना सिखाती है। सो कई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे अपन परफेक्ट पिक्चर की बात कर रहे थे, तो हमेशा जो पिक्चर में होता है वो परफेक्ट नहीं हो सकता।
0: करेक्ट।
1: खाने में, हाँ, खाना आप रोज सेम रेसिपी से बना लीजिए तो भी वो ऐसा हो सकता है कि बेस्ट ऑफ द यू नो इंग्रेडिएंट लेने के बावजूद भी, फैसिलिटी होने के बावजूद भी, एकदम मॉडर्न किचन होने के बावजूद भी आप घटिया खाना बनाए एकदम, जो खाने लायक ही नहीं।
0: बिल्कुल।
1: तो इट इज पॉसिबल, राइट?
0: बिल्कुल।
1: सो इट्स अबाउट द प्रोसेस, इट्स अबाउट द प्रोसेस, हाउ एवरीथिंग कम्स टूगेदर। तो सब चीजें कैसे आप उनको एक सार करके एक चीज में, एक भोजन के रूप में उसको पेश
0: कर सकते हैं,
1: सर्व कर सकते हैं। तो आप मतलब खाना बनाना इज नॉट रेसिपीज, इसलिए महिलाओं का काम जो है वो क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि वो बिना, वो सबके लिए सोचते हुए, अपने फ्रिज को देखते हुए, अपनी ग्रोसरीज की लिस्ट को देखते हुए, आज की जो भी है मेरे पास में उसको देखते हुए, रोज सबकी पसंद का और उनके न्यूट्रिशन का खाना बना पाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये उनकी उपलब्धि है सबसे बड़ी, ये उनका एप्टीट्यूड है बहुत ही बड़ा, नॉट उपलब्धि, देयर एप्टीट्यूड, देयर क्वालिटी।
0: सच है।
1: तो मुझे किचन ने यही सिखाया है कि कैसे जब चीजें बिगड़ रही होती हैं, ऐसा लाइफ को भी आप मान सकते हैं, तो लाइफ में कई रोज आपके इंग्रेडिएंट्स अच्छे चल रहे होते हैं, फिर बुरे हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ कुछ ना कुछ होती रहती है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्योंकि दिन जिंदगी एक दिन सुबह चालू होती है और रात को खत्म हो जाती है, एंड ऑफ द डे आपका जो खाना निकल के आया, जो आपका वापस, जो आपका बाय प्रोडक्ट आया है दिन भर का, कितना स्वाद है। तो स्वाद बनाना इज नॉट अबाउट इंग्रेडिएंट्स, इट्स अबाउट हाउ यू मेक देम, हाउ यू प्रोसेस देम। सो आई विल सम अप टू दैट, आई थिंक सो, मैं उसी पे रहना चाहूंगी कि इट्स अबाउट हाउ, दिस इज वॉट किचन हैज टॉट मी।
0: ब्यूटिफुल।
1: टेकिंग एवरी वर्स्ट थिंग इनटू अ गुड थिंग।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अपने इम्परफेक्शन से परफेक्शन तक रीच करने की जर्नी, और इवन इफ एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, आपके पास इम्परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उससे भी जो क्या आप बेस्ट बना सकते हैं वही आपकी कला है, वही आपकी कुकिंग है, और वही कुकिंग की कला है एक्चुअली। और आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट यू नो यहाँ पे हमें बताया कि कैसे गृहिणियां जो हैं हमारे घरों की, जो वुमेन फोक हैं, जो किचन में रोज जाती हैं और रोज तीन टाइम का खाना बनाती हैं, और सच में ये एप्टीट्यूड ही है कि वो हर तीन बार उतना ही न्यूट्रिशियस और उतना ही अच्छा खाना बना के सर्व करती हैं जो घर में सब खा पाते हैं। आई नो एक्सेप्शंस होते हैं, कई बार बच्चों को नहीं पसंद आता, बट अल्टीमेटली तीन बार का खाना इंटू 365 डेज और उसी एप्टीट्यूड से चीजों को बनाना इज कमेंड commendable. I think we should clap for our women folk and we should give them that credit ki unke paas wo aptitude hai aur wo quality hai jo bahut it's very difficult to actually have, and it just comes naturally to every woman in Indian, yes, Indian household.
1: Yes.
0: So which is amazing and commendable. Aapne ye point out kiya, uske liye bahut bahut thank you. Aur aapke sare hi jawab, aapke sare anubhavon ka ek samavesh hai jo bahut khoobsurti se hame batate hain ki kis tarah ka aapka ek safar raha hai. ग्राउंडेड सफर रहा है, सिर्फ ऐसे नहीं कि आप यू नो इन इलीट जगहों पे जाके काम कर रहे हैं और इन लोगों से मिल रहे हैं तो आपकी जर्नी एक डेवलप हो रही है, बट बहुत ग्राउंडेड लेवल से आपने अपना जीवन को जिया है और कनेक्टेड रहे हैं कहीं ना कहीं, वो बहुत खूबसूरती से आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होता है मैम. हम अब आगे चलते हैं और आज का हमारा जो आखिरी सवाल है उस तक पहुंचते हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आई थिंक ये भी, कि अगर आपको अपनी जिंदगी को एक सिग्नेचर डिश के रूप में सर्व करना हो तो उस डिश का नाम क्या होगा और इसकी इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन सी यादें, कौन कौन से लोग और कौन कौन से सपने शामिल होंगे?
1: ओहो, बड़ा ही घुमा के आपने क्वेश्चन बनाया है, बड़ा ही सवाल आपका और बड़ा मजेदार भी है और सोचने पे मजबूर कर रहा है मुझे बहुत ज्यादा.
0: जी जी,
1: तो क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा. मैं बड़ी सिंपल फिलोसफी और सिंपल फूड को पसंद करने वाली व्यक्ति हूँ. दाल रोटी खाने
0: वाली, दाल चावल, चलिए मान लीजिए दाल चावल. जी जी जी जी,
1: लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा
0: जायकेदार बनाते हैं.
1: या जायकेदार बनाते हैं फिलोसफी का तड़का लगा के. तो बात ऐसा है कि यू नो मेरे हिसाब से जिंदगी का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो होता है वो प्यार, प्रेम, इश्क, जुनून, जज्बा. ठीक है, ये मेरा जहन से ये निकली हुई बात है. और अगर आप कहें कि वो कौन से यू नो कौन से लोग या कौन से रिश्ते या कैसी चीजें आपको यू नो कौन सी चीजें आपको वो बनाती हैं इंग्रेडिएंट, मतलब ये बेस्ट डिश बनाएंगी, तो आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त और आपका पार्टनर. सो वो तीन जने जो होते हैं वो लाइफ का सबसे बेस्ट और वर्स्ट, इट कैन बी एनीथिंग. सो दे आर इंग्रेडिएंट, क्या सो दे कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ यू और द वर्स्ट आउट ऑफ यू. सो दे मतलब उनकी वजह से लाइफ में जो सिग्नेचर डिश आपके लाइफ की बनेगी वो किन तीन हिस्सों की वजह से बनती है.
0: बिल्कुल,
1: सो दैट्स हाउ फील. सो आई थिंक सो, चलिए दाल रोटी तो बड़ा हो जाएगा, तो क्या नाम दिया जाए, बढ़िया सा कुछ नाम दिया जाए. ऐसा करते हैं, बड़ा रोमांटिक सा नाम दे देते हैं उसको, बोलते हैं धूप छाओ.
0: वाओ,
1: सो इसको अगर हम विजुअलाइज करें एज एक्चुअल डिश ऑल्सो इट इज पॉसिबल टू मेक. आई थिंक सो इफ यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग एज अ डिश हम बना पाएंगे सुंदर सा एक अच्छा सा खाना, एक अच्छी सी डिश. तो मैं नाम दूंगी अपनी जिंदगी की सिग्नेचर डिश का धूप छाओ.
0: ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत मैम, और बहुत मजा आया आज आपसे बात करके. मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि ये इंटरव्यू काश खत्म नहीं हो, हम बातें करते जाएं और बहुत सारी और फिलोसफी और खाने की बातें करते जाएं, लेकिन समय बलवान है. हमें रैप अप करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच आज ऐसे इन रेडियो के साथ जुड़ने के लिए पायल बियानी मैम.
1: सो नाइस ऑफ यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एस एन रेडियो का बहुत ही धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे ये मौका दिया आपके साथ बातचीत का और आपके व्यूअर्स और लिसनर्स के साथ में जुड़ने का. थैंक यू सो मच, धन्यवाद.
0: थैंक यू मैम. तो दोस्तों, पायल जी से आज बातचीत में हमने सिर्फ रेसिपीज और कुकिंग की बात नहीं करी, बल्कि उन कहानियों, उन रिश्तों और उन जज्बातों को भी महसूस किया जो हर किचन और हर प्लेट के पीछे छुपे होते हैं. आपने हमें याद दिलाया कि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि यादें बनाता है, लोगों को जोड़ता है और संस्कृतियों के बीच एक सुंदर सा पुल का काम करता है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपने अनुभव और अपनी जिंदगी के इतने खूबसूरत रंगों को हमारे साथ साझा किया. दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड. मिलेंगे फिर एक नए मेहमान और एक नई कहानी के साथ, क्योंकि हर जिंदगी में एक गीत तो जरूर छुपा होता है, बस उसे महसूस करने की देर है. नमस्कार.

0: रोशनी।
1: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है, कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
6: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा, मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ, और करते हैं प्रेरणादायक बातें। दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, सुभाष दीपक जी द्वारा लिखी हुई, बुआ जी। चार बेडरूम का प्राइम लोकेशन पर बना हुआ वो एक शानदार मकान था, दूर से ही देखने वालों को आकर्षित करता था। इस मकान में रहती थी इंदिरा बुआ। अब आप पूछ सकते हैं, ये इंदिरा बुआ कौन है? हम बता देते हैं, इंदिरा बुआ वो शख्सियत हैं जिनके बारे में बताने की यूं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी पहचान है। उनकी चाल ढाल, उनके बात करने का अंदाज, यहां तक कि उनकी मौजूदगी, और मौजूदगी ही क्यों, उनका जिक्र मात्र उनका पूरा इतिहास खोल के रख देता है। इतने बड़े मकान में इंदिरा बुआ अकेली ही रहती थी शुरू से, लेकिन ऐसा नहीं था। भरे पूरे इस मकान की चहल पहल में तमाम मोहल्ले के लोगों की दिलचस्पी होती थी। वहां क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, सब में लोग नजर गड़ाए रहते थे। कहते हैं ना कि सब दिन एक समान नहीं होते। जाने विधाता की क्या मर्जी थी कि एक एक करके परिवार के सदस्य रुखसत होने लगे, और इतने बड़े मकान में केवल इंदिरा बुआ ही रह गईं, और साथ में रह गया उनका सबसे छोटा बेटा। इंदिरा बुआ की बढ़ती हुई उम्र और उनके बेटे की कच्ची वय को देखकर उनके शानदार मकान को हड़पने वालों को चाले चलने के मौके मिल गए। पहले तो उन्होंने घर के बेटे को लपेटने की कोशिश की, लेकिन बुआ के कठोर अनुशासन के चलते वो सफल नहीं हो पाए। बस उसे उन्होंने नशेड़ी जरूर बना डाला। इसमें भी जब उनका मतलब नहीं निकला तो उन्होंने तड़कम लगाकर उसे जाने कहां गायब करवा दिया। बेचारी औरत जात बुआ ने भर कस हाथ पैर चलाए, लेकिन वो उसे ढूंढ निकालने में कामयाब नहीं हो सकी। आखिरकार उन्होंने हथियार तो डाल दिए, लेकिन हालात को एक चुनौती के रूप में तब्दील कर डाला। अब उनका यह सिद्धांत हो गया कि अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम सबके हो जाओ, तुम्हारे पास कोई नहीं आता तो तुम सबके पास चले जाओ। वाह, यह फार्मूला कामयाब हुआ, और न केवल अपने मोहल्ले वालों के लिए बल्कि आसपास की कॉलोनियों में रहने वालों के लिए भी वो जरूरत बन गई। कोई भी बड़ा काम हो, चाहे शुभ हो चाहे गमी वाला हो, नेतृत्व करती हुई बुआ ही नजर आती। उनकी राय सर्वोपरि हो चली। एक बार उनके शहर में एक फिल्म की शूटिंग करने वाली यूनिट ने डेरा डाला। अब उसकी व्यवस्था करने वाला ठेकेदार बुआ के मोहल्ले में ही रहता था। लोग लगे उसकी मन्नतें करने की उन्हें शूटिंग दिखा दे। बहुत शातिर था वो। उसने मौके का फायदा उठाने की नीयत से कुछ खूबसूरत सी दिखने वाली लड़कियों को बरगला लिया और उन्हें शूटिंग दिखाने के बहाने ले जाने का प्लान सेट कर लिया। बुआ जी को इसकी भनक लगने की देर थी कि वो भूखी शेरनी की मानिंद दहाड़ उठी। अरे अकल के दुश्मनों, क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हें बेचकर वो खा जाता और सारी जिंदगी तुम अपनी किस्मत को कोसती रहती। लड़कियां तो संभल गईं, लेकिन बुआ यही नहीं रुकी। सीधे पहुंच गई फिल्म निर्माता के पास। उसे जाने क्या समझाया कि वो अगले ही दिन पैकअप का आदेश दे बैठा। कहते हैं बुआ ने उसे एक मंत्र का डर दिखाया था जिससे उसकी फिल्म हमेशा के लिए डब्बे में बंद होकर रह जानी थी। बात सब जगह फैल गई और बुआ के तकदीर के भी दरवाजे खुल गए। अब तो आए दिन बुआ के पास कोई ना कोई व्यापारी, तो कभी कोई साहूकार, तो कभी कोई सटोरिया बैठा ही मिलता। बुआ भी जबरदस्त नाटकबाज निकली। कुछ कौड़ियों को हाथ में घुमा घुमाकर पहले फेंकती और फिर एक रहस्यात्मक तरीके से मंत्र बोलते हुए कुछ गिनती करती और अपना रिजल्ट उनके कान में बोल देती। भगवान ही जैसे सब करवा रहा था, समझिए। उसकी गणना सटीक बैठने लगी और लोग निहाल होने लगे। जल्दी ही कारों वाले बुआ जी के दरवाजे पर खड़े इंतजार करते नजर आने लगे। बुआ अब वो बुआ नहीं रह गई थी, लेकिन एक दिन गजब हो गया। बुआ की कौड़ियां ही कोई चुरा कर ले गया। इन्हीं कौड़ियों में ही तो बुआ के प्राण बसते थे। कौड़ियां नहीं रही तो बुआ जी कैसे रहती? लेकिन जाते जाते वे इतना कह गई कि जिसने भी कौड़ियां चुराई हैं वो खुद कौड़ियों के भाव बिक जाएगा। शायद ऐसा ही हुआ भी होगा, क्योंकि उनका कहा कभी गलत तो होता नहीं था ना।
0: मैंने

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोचिए क्या होता अगर रजनीकांत 150 साल पहले पैदा होते। आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को लड़नी पड़ती।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो भूरी

अर्जुन के सच्चे सपूतो पुठो, और कल युग में सतयुग के दूतो पुठो, कंस का

मनुष्यों की पहचान उनके कपड़ों से नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद। एक बार स्वामी विवेकानंद के एक विदेशी मित्र ने जब उनके गुरु से मिलने की इच्छा जताई तो रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद वो मित्र उनके पहनावे पर कमेंट करने लगा और कहा कि आप जैसे व्यक्तित्व का चरित्र निर्माण करने वाले ये कैसे गुरु हैं जिन्हें कपड़े पहनने का भी सलीका नहीं है। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत विनम्रता से कहा, आपके देश में चरित्र का निर्माण दर्जी करता होगा, लेकिन हमारे भारत में चरित्र का निर्माण आचार विचार से होता है।

क्या आपको पता है बैंगनी रंग किसी भी राष्ट्र के ध्वज में इस्तेमाल नहीं होता। अब यह है ना बड़ी रोचक बात, क्या वजह है? क्या आपको पता है किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग उसकी आन बान शान होता है। देश का हर नागरिक, सेना और उसकी सरकारें झंडे के मान सम्मान के लिए हर कदम उठाती हैं। झंडों पर नजर आने वाले रंग के मायने होते हैं। जैसे भारत के तिरंगे में केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, वहीं सफेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक है और हरा रंग संपन्नता की निशानी है। इसी तरह अलग अलग देशों के झंडों का मतलब भी अलग अलग होता है। मगर क्या आपने कभी किसी भी देश के राष्ट्रीय ध्वज में पर्पल कलर, बैंगनी कलर देखा है? शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि झंडों में बैंगनी रंग बेहद दुर्लभ है। इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही रोचक वजह है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वर्ल्ड मीटर्स वेबसाइट के अनुसार दुनिया में 195 देश हैं। इनमें से सिर्फ 2 देश ही ऐसे हैं जिनके राष्ट्रीय ध्वज पर बैंगनी रंग दिखाई देगा। बाकी दुनिया के किसी भी देश के झंडे पर पर्पल रंग नहीं है। इसके पीछे की वजह भी काफी रोचक है। दरअसल 1800 के वक्त तक बैंगनी रंग को बनाना बहुत ही कठिन और महंगा हुआ करता था। क्वीन एलिजाबेथ ने तो यह घोषणा कर दी थी कि रॉयल फैमिली के अलावा कोई भी बैंगनी रंग नहीं पहनेगा। इस वजह से बैंगनी रंग को हासिल करना आम लोगों की बस की बात नहीं थी। बैंगनी रंग को हासिल करना भी बहुत मुश्किल था। दरअसल उन दिनों बैंगनी रंग लेबनान के छोटे समुद्री घोंगे में पाया जाता था, जिसे जुटाना बहुत मुश्किल था। 1 ग्राम बैंगनी रंग बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा घोंगे मार दिए जाते थे जिनमें वो रंग निकलता था। इसके बाद डाई बनाने के लिए भी उसमें बहुत मेहनत लगती थी और डाई का खर्च भी बहुत ज्यादा था। उन दिनों 1 पाउंड बैंगनी डाई खरीदने का खर्च 41 लाख रुपए से भी ज्यादा था। इस कारण से देशों ने अपने झंडों में बैंगनी रंग रखना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि 1856 में विलियम हेनरी परकिन सिंथेटिक बैंगनी डाई बनाने में कामयाब हुए, जिसके बाद इसकी कीमतें कम होने लगी। मगर देशों ने फिर भी बैंगनी रंग को त्याग ही दिया। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि वो 2 देश कौन हैं जिनके झंडे में बैंगनी रंग है? अब आपको हम उन देशों के बारे में बताते हैं जिनके झंडे में बैंगनी रंग दिखाई देता है। पहला देश है डोमिनिका, जिसके ध्वज को साल 1978 में अपनाया गया था। दूसरा देश है निकारागुआ, जिसके ध्वज को 1908 में अपनाया गया था और इसे आधिकारिक मान्यता 1971 में मिली। स्पेन के राष्ट्रीय ध्वज में भी कुछ वक्त तक बैंगनी रंग देखने को मिला था, उसके बाद हट गया। क्या वजह रही जो नैनो कार फेल हो गई? 2009 में टाटा की नैनो कार के लॉन्च होने से पहले इसको लेकर चर्चा का बाजार बहुत गर्म था। लोग इस कार को लेकर तरह तरह के सपने देख रहे थे, लेकिन लॉन्च के पहले टाटा नैनो को जो शोहरत हासिल हुई थी, मार्केट में आने के बाद उस हिसाब से उसकी बिक्री नहीं हुई। या यूं कहा जाए कि टाटा की नैनो मार्केट में धड़ाम से गिर पड़ी। आखिर टाटा की नैनो का यह दुर्भाग्य क्यों हुआ? इसको समझने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स की सबसे पसंदीदा किताब जॉन ब्रुक्स द्वारा लिखी गई इट इज बिजनेस एडवेंचर से मदद मिल सकती है। इस पुस्तक के एक अध्ययन में एडसल कार का जो दुर्भाग्य हुआ था, उसी पर विस्तृत चर्चा की गई है। 1955 में फोर्ड मोटर कंपनी ने $2,400 से $4,000, मतलब 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच की कीमत की एक कार मैन्युफैक्चर करने की घोषणा की। इस कार को लेकर भी उस समय बहुत शोर था, जैसा टाटा नैनो को लेकर हुआ। कार का नाम फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड के बेटे एडसल फोर्ड के नाम पर एडसल रखने का फैसला लिया गया था। एडसल के हवुए ने लोगों के मन में कार को लेकर कल्पनाओं और सपनों की झड़ियां लगा दी। इसके इर्द गिर्द जो हवा खड़ा किया गया, उससे सब सोचने लगे थे कि यह आम कारों से कुछ हटकर होगी। जब 1957 में इसे मार्केट में उतारा गया तो लोगों ने देखा कि यह तो कार आम कारों की ही तरह है, इसमें भी 4 पहिए लगे हैं और 1 इंजन है, तो उनका कार से मोह भंग हो गया।
नतीजा यह हुआ कि कार बाजार में औंधे मुंह गिरी। फोर्ड को इस कार पर 20 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। बस यही कुछ कारण टाटा की नैनो को भी फेल होने पर रहा। 2009 में लॉन्च की गई नैनो की सेल्स 2010-11 में और 12-13 में टाटा मोटर्स की कुल सेल्स का 23-24% थी, लेकिन 2011-12 में 74,527 तक इसकी सेल्स पहुंचने के बाद अचानक इसकी मांग में बहुत जोरदार गिरावट आई। सिर्फ 2 साल के अंदर ही इसकी सेल्स में 70% की गिरावट आई और इसकी सेल्स 2013-14 में 21,129 पर सिमट के रह गई। जबकि टाटा मोटर्स ने गुजरात के सदानंद में 2,50,000 नैनो प्रतिवर्ष उत्पादन के लिए फैक्ट्री भी बनाई थी। आमतौर पर यह होता है कि जब किसी प्रोडक्ट को लेकर ज्यादा हवा खड़ा कर दिया जाए तो लोग तरह तरह की कल्पनाएं करने लगते हैं और कुछ अलग होने का सपना देखने लगते हैं। जब हकीकत कुछ और होती है तो वो खुद को बहुत ठगा हुआ सा महसूस करते हैं और प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाता है।

संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने

जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए। सारे घर वालों और मोहल्ले वालों को बड़ा अजीब सा लगा था जब राघव ने अपने जन्मदिन पर घोड़े के बच्चे की मांग रख दी और पिता ने उसे पूरा भी कर दिया। शायद राघव ने अपने पिता से इंद्र के घोड़े, उच्चेश्वा की या महाराणा प्रताप के चेतक की कहानियां सुनी होंगी। अब राघव की उम्र उस समय कुल 12 वर्ष ही तो थी। वो अपने अनोखे उपहार को पाकर खुशी से झूम उठा। उसने अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल वस्तु पा ली थी। अब उसकी सुबह, दोपहर और शाम बस उसी के नाम होती थी। आपस में दोनों इतने घुल मिल गए थे कि उन्हें किसी अन्य दोस्त या दुनिया की परवाह ही नहीं थी। पढ़ाई में भी उसका मन जरा अब कम लगने लगा। वक्त बीत गया। राघव अब 20 साल का होने को आया था। उसका घोड़ा, जिसका नाम उसने बहादुर रखा था, वो भी अब मजबूत कदकाठी का जवान घोड़ा हो गया था। राघव की पिता की मृत्यु के बाद घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। खर्चा चलाने के लिए उसने निर्णय लिया कि अपने घोड़े बहादुर से तांगा चलवाया जाए। उसने बहुत प्यार से अपने घोड़े को तांगे में जोतने का काम किया और तांगा स्टैंड में लेकर आया। हमेशा की तरह उसका ध्यान यही रहता कि कहीं उसके बहादुर को कोई पीड़ा ना हो। कुछ ही देर में एक दरोगा ने आकर उसे अपने गांव चलने के लिए कहा। सौदा 100 रुपए में तय हुआ। उसने बड़े प्यार से पुचकार कर अपने बहादुर को चलने के लिए तैयार कर लिया। बहादुर भी अपने राघव की हर बात मानने को तैयार ही रहता था। करीब 10 किलोमीटर का लंबा सफर था। दरोगा घोड़े की धीमी चाल से खींच रहा था और बार बार राघव को घोड़ा तेज चलाने के लिए ताकीद कर रहा था। राघव का दिल बैठा जा रहा था। वो पहली बार बहादुर को तांगे में जोतकर जो लाया था, अब ये बात वो 2-3 बार दरोगा से कह भी चुका था, लेकिन दरोगा बात को अनसुनी कर रहा था। राघव समझ नहीं पा रहा था कि बहादुर को तांगे में जोतने का उसका निर्णय सही है या गलत। वो कभी अपनी गरीबी को कोसता तो कभी अपनी सोच को कि क्या कर बैठा मैं। तांगे के धीरे चलने से अचानक दरोगा का गुस्सा तेज हो गया और उसने वहां पर पड़ी हुई चाबुक उठाकर 2-3 वार घोड़े पर कर दिए। राघव एकदम दर्द से कराह उठा, जैसे वो चाबुक घोड़े पर नहीं उसी पर पड़ी हो। एक बार तो उसे ऐसा लगा कि इसी चाबुक से दरोगा की पिटाई कर डाले, लेकिन किसी तरह वो अपने गुस्से को बस पी गया। सारे रास्ते वो अपने घोड़े बहादुर के बारे में ही सोचता रह गया। दरोगा के आगे वो बेबस था, वरना कोई और होता तो उसे वहीं उतार फेंकता। वो घर आकर उसने घोड़े को तांगे से अलग किया और उसके स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया। उसे लगा कि घोड़ा कातर दृष्टि से उसकी तरफ देखे जा रहा है। तुरंत वो जाने क्या सोचकर घोड़े से लिपट गया और बड़ी देर तक बस वैसे ही बना रहा। थोड़ी देर बाद उसकी मां ने जब उसे इस हालत में देखा तो उससे रहा नहीं गया। चलकर वो उसके पास आई और सांत्वना के लिए जैसे ही उसने राघव की पीठ पर हाथ फेरा, वो दर्द से चीख पड़ा। क्या हुआ? उसकी मां ने पूछा। कुछ नहीं, उसने उत्तर दिया। कुछ नहीं कैसे? कहकर उसकी मां ने उसकी पीठ को उघाड़ दिया। वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी पीठ पर चाबुक मारने के ताजे निशान बने हुए थे और उनमें से खून छलक रहा था।

0: matter. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no passing craze.
2: दोस्तों, आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। कल फिर मिलता हूँ।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार हैं देव आनंद जी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों को अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदा बहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। जी हाँ, है ना मजेदार बात। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो बॉम्बे पहुंचे, तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चलिए सुनते हैं उनका ये नगमा।

देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके पास 3 अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं उसमें मिला। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, देवानंद जी की फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था।

फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया और वर्ष 1950 में अफसर नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था। गाता

1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

जिया ओ जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में

होता है जिया ओ जिया जिया कुछ बोल दो अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है तुम एक हसीन हो लाख में भला

साथ में चलते हो गहरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहे भरते हो, हर बात पे दिल भर जाता है। जब दिल पे चुड़ियां चलती है, जब चैन से कोई सोता है, जिया ओ।

0: किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भल पाके तुम्हें कोई खोता है। ओ जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं ऐसी भी निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए हुए थीं। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। देवानंद साहब की फिल्म का एक और गीत।

1948 के साल में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो फिल्में और रिलीज हुईं, फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इसमें विद्या फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी थी। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

0: अच्छे हम अकेले
1: साथ लेने।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार पतंग भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

पांडेवरन जी ने सुरैया के साथ बहुत सारी फिल्में की। एक फिल्म थी जिसका नाम था जीत, जो 1949 में पर्दे पर आई थी। ये फिल्म बहुत हिट गई। लीजिए दोस्तों, देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

कटारी।

सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनका विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। लीजिए दोस्तों उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा।
1: ओ, छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं

0: दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ हाँ छोड़ दो आजकल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि देवानंद साहब इतने सुंदर थे कि उनको सफेद कलर का सूट यानी कि कोट और पैंट पहनना मना था, क्योंकि महिलाएं उनको इस रूप में देखकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती थीं। इस बात की सच्चाई को साबित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो तय है उनके लटकते छटकते अंदाज बेहद खूबसूरत थे। लीजिए उनकी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में बॉलीवुड के बेमिसाल कॉमेडी अभिनेता महमूद साहब के बारे में हम बात करेंगे। महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को हुआ था। महमूद अली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सरोबार उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। हो जाए उनके ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

महमूद ने फिल्मों में 4 दशक तक काम करके 300 से ज्यादा फिल्मों में अपने एक्टिंग और हास्य शैली से बतौर कॉमेडियन एक अलग शैली बनाई थी। उनका अपना स्टाइल था। महमूद के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात तो ये थी कि कई कलाकारों ने उनके पात्रों की नकल की, उनकी एक्टिंग की कॉपी करने की कोशिश की। यहां तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने भी इनके हैदराबादी पात्र की कॉपी करने की कोशिश की। आइए सुने इनकी फिल्म का एक गीत।

0: साहब की खासियत ये थी कि वे दर्शकों को जितना हंसा हंसा कर लोट पोट कर सकते थे, उतने ही संजीदा किरदार निभाकर दर्शकों को रुला भी सकते थे। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।
1: जाना तुम्हारे प्यार में

या समझ लो एक उसे बेपीर हूँ। अब तो बस पत्थर की एक तस्वीर हूँ, या समझ लो एक

महमूद जी अभिनेता मुमताज अली के बेटे थे। यूं तो महमूद ने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन बड़े होते होते इन्होंने फिल्मों के अलावा भी कई काम किए। बहुत ही कम लोग जानते होंगे दोस्तों, महमूद ने अपने समय की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को कुछ समय के लिए टेबल टेनिस की ट्रेनिंग भी दी थी। आइए उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

0: हर कलाकार ही की तरह इन्होंने भी अपनी शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया। इन्होंने कई सालों तक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में प्यासा, सीआईडी और दो बीघा जमीन जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इन्हें सामान्य रूप से अभिनय करने के बजाय कॉमेडी से ओतप्रोत किरदारों को करने में ज्यादा मजा आता था, जिसे दर्शकों के बीच भी खासा पसंद किया जाता था। इतना ही नहीं, महमूद साहब ने 1965 में भूत बंगला के साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। बड़ी मजेदार बात यह है कि भूत बंगला फिल्म में इनका डांस बेहद मशहूर हुआ। आइए दोस्तों सुने यही गीत।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे का फुटा अपोजम

खुशी है यही, खाओ ट्विस्ट करे का मौसम।

0: 1974 में इन्होंने फिल्म कुमारा बाप का भी निर्देशन किया, जिस फिल्म ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया और बहुत रुलाया। इसके अलावा महमूद कई फिल्मों में बतौर पार्श्व गायक भी काम करते रहे। तो हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।
1: दुनिया अरे किधर है रे दूर।

0: जी घास में डाल को फूंक डालो ना, नीचे से माचिस की कांडी लाओ क्या, अपने हाथ से खाना बना दो मुझे खिलाओ ना। अरे मेरी रानी, अरे चुनिया, अरे नादारी दू, अरे झेटली, अरे माटी मिली, अरे वापस आ, अरे पलट पलट पलट पलट पलट पलट पलट पलट पलट पलट।
1: महमूद ने कपूर खानदान की तीनों पीढ़ियों पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर की फिल्म हमजोली में नकल कर दर्शकों को हंसा हंसा कर खूब लोटपोट किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पड़ोसन फिल्म में साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर का किरदार निभाकर संगीत में कॉमेडी को जन्म दिया। आइए हो जाए यही गीत।

0: है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
2: अरे क्या

0: अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे।
0: सच भाई हुए।

ಮಾಮಾ ಸರಿಗಮ ಪದ ನಿ ಸಾ ನಿ ಪಾಪ ಮಾಮಾ ಓ ಮಾಮಾ.

महमूद ने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में मदद करने के लिए बॉम्बे टू गोवा को खास करके बच्चन के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। इतना ही नहीं, इनकी जोड़ी को आईएस जौहर के साथ भी पसंद किया गया। इन दोनों ने जौहर महमूद इन हांगकांग, नमस्ते जी, जौहर महमूद इन गोवा जैसी फिल्में दी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। आइए दोस्तों सुनते हैं इनकी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

महमूद साहब को 1963 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें कई फिल्मों प्यार किए जा, वारिस, पारस और वरदान के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। आइए दोस्तों, इनकी ही फिल्म का एक और फड़कता हुआ गीत सुनते हैं।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।
1: अरे तू

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर, रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर, हम शोहरत मांगते रहे, जिंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, जिंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत वक्त मुबारक हो आप तमाम सुनने वालों को। 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भेल पर मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हूं आपके दिलों के सबसे करीब रहने वाला पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक के साथ। दोस्तों, अक्सर जब हम गज़लों या नगमों का ज़िक्र करते हैं तो जहन सीधे सदियों पुराने दौर की तरफ चला जाता है, लेकिन आज का ये सफ़र थोड़ा अलहदा है। आज इस महफिल में हम किसी बहुत पुराने ज़माने में नहीं ठहरेंगे। आज हम बात करेंगे आज के दौर यानी पिछले कुछ गुज़रे सालों की। आज के कारवां में हम उन नगमों और गज़लों को सुनेंगे जो बिल्कुल आज के ज़माने के जज्बातों को बयां करती हैं। अब हैं तो आजकल के ज़माने की, लेकिन जिस दौर का ज़िक्र इन फिल्मों में किया गया वो वापस हमें पुराने दौर में ही ले जाता है। फिर क्या, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट सा नहीं हो गया दोस्तों? लेकिन कोई बात नहीं, मसला किस बात का है? मुद्दा ये है कि इन्हें बनाया तो आज के दौर में ही गया है और गाया भी, तो बस यही बात खास है। हाल ही के सालों में OTT की दुनिया से लेकर आज के दौर के मखमली सुरों ने जिस तरह शायरी को नए मिजाज में पेश किया है, आज हमारी महफिल उसी नए रंग के नाम है। ये वो अल्फाज हैं जो सीधे आज के दौर के दिलों से जुड़ते हैं। वक्त हमेशा की तरह नपातुला है, तो अपनी मसरूफियतों को ज़रा किनारे रख लीजिए और खुद को इस बदलते दौर के हसीन सुरों के हवाले कर दीजिए। आइए बिना किसी देरी के आगाज़ करते हैं आज की इस सहर अंगेज महफिल का, और बढ़ते हैं इस सफ़र के पहले मरहले की तरफ। दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा था कि आज की महफिल हाल फिलहाल सालों की है, लेकिन जो समा उसमें दिखाया गया है वो तो गुज़रे ज़माने का ही है। इस कड़ी में साल 2022 में आई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ये

श्रेया घोषाल की इस उस दिलकश शास्त्रीय पेशकश के बाद अल्फाज से एहसास तक के दूसरे मरहले पर आइए, वक्त के पहिए को ज़रा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 2015 की उस शानदार फिल्म की तरफ जिसके संगीत ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था। जी हाँ, मैं जिक्र कर रही हूँ फिल्म बाजीराव मस्तानी का। दोस्तों, इस फिल्म में एक ऐसा नगमा शामिल है जो मोहब्बत को सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि मुकम्मल इबादत का दर्जा देता है। इस बेहद खूबसूरत कलाम को सजाया है सिद्धार्थ गरिमा की जोड़ी ने और इसकी धुन बनाई है संजय लीला बंसाली जी ने। और जब इस बंदिश को सबसे अजीम गुलूकार अरिजीत सिंह ने अपनी बुलंद आवाज़ और सोच से भरी आवाज़ के साथ गाया तो ये सीधे रूह तक उतर गया। इस नगमे के बोल हैं, तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम तो हो गया है आदत की तरह। अरिजीत सिंह की आवाज़ में जो तड़प और ठहराव है वो इस सफ़र को और भी मुकम्मल बनाता है। तो आइए सुनते हैं इबादत में डूबी इस बेमिसाल पेशकश को। आपकी नज़र।

दोस्तों, जरा इस मिसरे को सुने। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं कि मैं याद तुमको ना आ सका, मगर इतनी बात जरूर है ना तुम्हें मैं दिल से भुला सका। अरिजीत सिंह की इबादत में डूबी इस उस आयत के बाद अल्फाज से एहसास तक के इस अगले मरहले पर जो आपको सीधे जोड़ती है आज के दौर के उस खास रंग से, जहाँ ना कोई साज होता है ना कोई शोर होता है, होती तो है बस एक साफ आवाज और दिल को चीरता हुआ जज्बात। हमारी ये पेशकश एक ऐसी नज़्म है जो इस दौर में इंटरनेट और यूट्यूब के ज़रिए आज के चाहने वालों की दिलों की धड़कन बनी हुई है। असल में इस रूहानी कलाम को बिना साज के गाया था जलाबीब कादरी साहब ने, लेकिन आप ये वर्जन म्यूज़िक के साथ सुनेंगे। शायर कहता है, मैं शदीद दर्द से चूर था, मगर उनको भी तो गुरूर था। मैं शदीद दर्द से चूर था, मगर उनको भी तो गुरूर था। क्या कहूँ कि किसका कसूर था, क्या कहूँ कि किसका कसूर था। ना वो आ सका ना मैं जा सका। सुनिए और महसूस कीजिए आज के दौर की इस खालिस और अनकहे दर्द को। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं कि मैं याद तुमको ना आ सका, मगर इतनी बात ज़रूर है ना तुम्हें मैं दिल से भुला सका। शौक करना है।

दोस्तों, हमारी अगली पेशकश एक ऐसा शाहकार है जिसका सफ़र शुरू तो हुआ था 1966 की एक फिल्म जाग उठा इंसान से। ये पाकिस्तान की फिल्म है, तब इसे मेहदी हसन साहब ने गाया था। लेकिन आज के दौर में पाकिस्तान के मारूफ और बेहद सुरीले गुलूकार सजाद अली ने इसे अपने नए अंदाज और अपनी जादुई आवाज़ से नवाजा है। तो ये आज के चाहने वालों के दिलों की धड़कन बन गया है। दोस्तों, ये कलाम हमें ये बताता है कि अगर जिंदगी में किसी को पाकीज़ा और सच्चा प्यार मिल जाए तो ये दुनिया जन्नत से कम नहीं लगती। गजल के बोल हैं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक ढूंढने वाला हो तो जन्नत की भी ख्वाहिश नहीं। सजाद अली के इस खूबसूरत क्लासिकी और नए दौर के मिले जुले जादू के नाम सुनिए और महसूस कीजिए।

दोस्तों, बातों का सिलसिला और सुरों का ये सफ़र अब अपने आखिरी मोड़ तक आ पहुंचा है। हमारी आज की आखिरी पेशकश है हाल ही में कुछ 2 साल पहले OTT की दुनिया में धूम मचाने वाली वेब सीरीज का, जिसका नाम था जुबली। जिन लोगों ने इसे नहीं देखा उनके लिए मुख्तसर सा तारुफ ये है कि जुबली गुजरे ज़माने के सिनेमाई जादू, उसकी चकाचौंध और उस पर्दे के पीछे की छुपी हुई तन्हाई को बहुत ही शानदार अंदाज में आज के डिजिटल दौर में पेश करती है। इस फिल्म में, इस सीरीज़ में जितने भी लोगों ने एक्टिंग की, उन सबका ही रोल बहुत शानदार था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी जब मैंने ये फिल्म देखी कि आज के दौर में उस पुराने पीरियड में जाना और बिल्कुल वही माहौल क्रिएट करना बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म को देखने का। तो इस तन्हाई और भीड़ में अकेलेपन को बयां करता ये मशहूर नगमा, जिसको संगीत से संवारा है अमित त्रिवेदी ने और गाया है दविंदर पाल सिंह ने। इस उम्दा संगीत में जब दविंदर पाल की आवाज़ खुलती है तो दिल के किसी कोने में छुपी उदासी बाहर आ ही जाती है। इस नगमे के बोल हैं, बस एक रात में आसमां लुट गया, बस एक रात में आसमां लुट गया, सितारों की दुनिया से दिल उठ गया, अभी नूर था बस अभी उड़ गया, अभी नूर था बस अभी उड़ गया, सितारों की दुनिया से दिल उठ गया, बस एक रात में गुलिस्तां लुट गया, बस एक रात में गुलिस्तां लुट गया, बहारों की दुनिया से दिल उठ गया, अभी रंग था बस अभी उड़ गया, बहारों की दुनिया से दिल उठ गया। दोस्तों सुनिए ये बहुत उदास और हकीकी कलाम। देखो ये दुनिया के मेले सारे के सारे अकेले, लाखों दिलों के ये रेले सारे के सारे अकेले, सारे के सारे अकेले, आपकी नजर

दोस्तों, घड़ी की सुइयां अब हमें मजीद आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रही। वक्त का काफिला अपनी मंजिल पर आ पहुंचा है और अब अल्फाज से एहसास तक की आज की इस महफिल को समेटने का वक्त हो गया है। बातें तो कभी भी मुकम्मल नहीं होती, बस मुलाकात का वक्त खत्म हो जाता है और अब अल्फाज से एहसास तक की आज की इस महफिल को समेटने का वक्त भी हो चला है। आज के सफर में हमने जो भी जज्बात आपस में बांटे, उन्हें यहीं आपके दिलों के पास महफूज छोड़कर जा रही हूँ। 90.8 FM पर SN रेडियोज और रेडियो टांटिया भील पर हमेशा की तरह आपका साथ पाकर बहुत खुशी हुई। अगली बार जब माइक के इस तरफ से आपसे रूबरू होंगी तो कुछ नए ख्यालात, नए अल्फाज और एक बिल्कुल नए सफ़र के साथ। तब तक अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे पर शिद्दत अपने ज़िंदगी के हर लम्हे को पूरी शिद्दत से जिएं, अपनों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। अपनी रेडियो दोस्त आरती राय को दीजिए इजाज़त। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: આપણ હંગલા ભાઈઓનો ઘણો ઘણો સ્વાગત કરીએ છે આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટાવેલ 90.8 એફએમ ઝાબુઆની આવાજ પર.
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है. जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं. गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं. आप भी लगवा लीजिए. 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार. 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
2: हर घर सूर्य घर.
3: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम. किसान साथियों, एक बार पुनः खेती बाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का. आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे. किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगी हुई है. किसान साथियों, हमारा यह हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हमारा जो किसान है उसकी आजीविका सशक्त हो. हमारा किसान खेती में नई से नई तकनीकों को सीखे, साथ ही उन्नत कृषि कैसे कर सके आदि जानकारियों को आप तक पहुंचाने की हमारी यह पहल कहीं ना कहीं हमारे किसानों की आजीविका को सशक्त बनाने की एक पहल है. किसान साथियों, हमारे पूर्वज पहले से ही कृषि करते आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कृषि को पुनः एक नवीनतम उसमें बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी. तो किसान साथियों, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी दिन प्रतिदिन जो हमारा पर्यावरण है, हमारी प्रकृति है, वो बदलती जा रही है. प्रकृति में बदलाव आते जा रहे हैं और हमारा जो किसान है उन्होंने रासायनिकों का हमने अंधाधुन प्रयोग के माध्यम से कहीं कहीं पर इसके काफ़ी दुष्परिणाम देखने को मिले हैं. तो किसान साथियों, यहाँ पर ज़रूरत है हमें एक बदलाव की और परिवर्तन के साथ प्रकृति के साथ मिलकर हमें कृषि करने की आवश्यकता है. तो यही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हुए अच्छी से अच्छी कृषि कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं. साथ ही किसान साथियों, हम कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी जो आजीविका के स्रोत हैं, जो हमारे आसपास ही हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उन सब बिंदुओं पर हम नज़र डालते हैं और सोच और देखते हैं कैसे मधुमक्खी पालन के माध्यम से, मछली पालन के माध्यम से, फूलों की खेती करके, वनस्पति की खेती करके और अन्य खेती के माध्यम से भी हम कितने अच्छे मुनाफे ले सकते हैं. जो हमारा पूर्वज था वह सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए खाद्यान्न फसलों की ही खेती करता था, लेकिन आज का किसान औषधीय पौधों की हम खेती करना शुरू कर दिए हैं. साथ ही हमने मत्स्य पालन शुरू किया है, कुक्कुट पालन शुरू किया है और भी अन्य खेती के बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके मदद से हमने हमारी खेती में एक नए बदलाव को महसूस किया है. तो किसान साथियों, हमारा रेडियो टांडिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमारा किसान है वो भिन्न भिन्न और उन्नत कृषि करे और हमारी अपनी कृषि में नए बदलावों को करे, नए बदलावों को देखे, सीखे और अपने साथी किसान साथियों को भी बताए और हम हमारे एक्सपर्ट की राय से भी हमारी कृषि में एक उन्नति ला सके, एक नवीनता ला सके. रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान. आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा. एत्रे हमलता रेजो टांडिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM.

0: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मुर्गी पालन को लेकर और देसी गाय की किस्मों को लेकर। हमें कैसे इनका रखरखाव करना है, क्या इनके लिए कैसा प्रबंधन करना है, साथ ही हमें किन किन बातों में इनका ध्यान रखना है और कैसे हम इसमें इनका ख्याल रख के हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सके। तो आइए शुरू करते हैं।
1: जैसे बात करते हैं अधिराज जी, अब जैसे कि हम देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम एक आम किसान, एक पशुपालक की भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये क्या है?
2: देखिए, ये हम बताएंगे कि देसी नस्ल जो हम बोलते हैं, पहले क्रॉस ब्रीडिंग करके विदेशी नस्ल को यहाँ पे दूध उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था, पर अभी हमने ये देखा है कि देसी नस्ल भी हमारे उतने ही अच्छे दूध दे रहे हैं, उनके गुणवत्ता भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए भारत सरकार का ये योजना है कि कैसे देसी नस्ल का संवर्धन किया जाए और उसका कैसे भी डेवलपमेंट किया जा सके, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट ये दोनों का किया जा सके, इसलिए ये किया जाता है। इनको अगर देखेंगे कम लागत में इनसे ज़्यादा हमें फायदा मिल सकता है, जो कि भारत सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई है, 2014 से चल रही है, जिसको हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन बताते हैं। उस योजना के तहत देसी नस्ल का संवर्धन किसानों को कैसे पहुंच सके, ये योजना हम चला रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। और देखिए, एक समय था जब हम क्रॉस ब्रीड का काफी हमारे जो किसान थे, पशुपालक थे, डेयरी से जुड़े जो हमारे पशुपालक थे, उनमें क्रेज रहता था। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण की बात कर रही है, धीरे धीरे प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती की ओर हम रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में देसी गायों की भूमिका या फिर कहें उनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
0: इसी के साथ किसान साथियों, यहां पर डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर और जानेंगे क्या है महत्वपूर्ण बिंदु जिन पे हमें विचार करने की आवश्यकता है, जिन पे हमें काम करने की आवश्यकता है और उनकी मदद से हम कैसे हमारी आय में वृद्धि कर सकते हैं, हमारी कृषि को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
3: पशुओं को किसानों का धन माना जाता है और पशुपालक किसानों की आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुधन से आता है। पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भी देसी नस्ल के दुधारू पशुओं के संरक्षण की दिशा में लगातार अहम कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, दूध उत्पादन और मांग में संतुलन के लिए भी काफी कोशिशें की जा रही हैं। व्यवसायिक फार्म प्रबंधन और बढ़िया पोषाहार के जरिए भारत में देसी नस्लों की उत्पादकता में बढ़ोतरी करने की काफी संभावनाएं हैं। ऐसे में देसी नस्लों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार ने 2014 में इस मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इस योजना का उद्देश्य इन पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना भी है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं के स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। योजना के जरिए दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साहिवाल, राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाने का काम भी किया जा रहा है।
1: लोगों के लिए काम कर रही है, हमारे पशुपालक इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और देसी गाय संरक्षण और संवर्धन को और गति दी जा रही है। चलिए बात करते हैं आज का जो हमारा दूसरा विषय है, यानी मुर्गी पालन। डॉक्टर पंकज, मुर्गी पालन की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मुझे समझ आता है और जैसे एक्सपर्ट से बात हुई मेरी, तो बीते इन दो सालों में कोरोना काल में काफी इससे सेटबैक रहा, मतलब काफी नुकसान हुआ मुर्गी पालकों को। अभी मौजूदा स्थिति क्या है?
4: जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है वो एक बहुत नाजुक व्यवसाय है और जैसा कि आपने कहा और सत्य भी है कि विगत कोरोना काल में शुरुआती तौर पे इस मुर्गी को ही कोरोना संक्रमण फैलने का कारण मान लिया गया था, जो तथा कदापि उचित नहीं था और ना तथ्यों से भरा हुआ था। सब तथ्यों से परे भ्रामक प्रचार के कारण जो हमारा मुर्गी का उद्योग था, जो मुर्गी पालन का उद्योग था, उसको काफ़ी बड़ा सेटबैक रहा और लगभग 2020 की अगर हम बात करें तो मार्च से लेकर के और जुलाई तक के बीच में जो एस्टिमेटेड आंकड़े हमें बताते हैं, लगभग 25,000 करोड़ का भारतीय जो हमारा मुर्गी पालन का व्यवसाय था उसको नुकसान हुआ था। धीरे धीरे जब लोगों में समझ बढ़ी और उनको पता चला कि ये एक पौष्टिक और संतुलित प्रोटीन का सोर्स है और इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है, तो अगले 3 महीनों में इस उत्पाद की खपत अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा बढ़ी, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और उसके परिणाम भी हमको देखने को मिले कि लोग तेजी से स्वस्थ होते गए और अपना पुराना जो विगर था उसको उन्होंने पुनः प्राप्त किया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत में भी मुर्गी पालन जो है काफी एडवांस स्टेज पे है। अगर आप पुराने 70 के दशक की बात करें तो हम इस मुर्गी को पिछवाड़े में पाले जाने वाले एक बर्ड के रूप में जानते थे जिससे कुछ अंडों की प्राप्ति होती थी। 80 के दशक में हमने ये जानना प्रारंभ किया कि एक और प्रजाति मुर्गी की विकसित हुई जिसे ब्रॉयलर के नाम से जानते हैं और ये मांस उत्पादन की दृष्टि से पाली गई। और उसके बाद 90 का दशक आते आते धीरे धीरे इसके प्रसंस्करण और इसके प्रोसेसिंग पर भी विचार किया गया और अब जो हमारा एरा चल रहा है वो एक क्वालिटी एग और मीट को डिलीवर करने का है। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो वो 70 के दशक से आज की अगर हम तुलना करते हैं तो जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है कई सैकड़ों गुना बढ़ा है। वैश्विक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो भारत का अंडा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 3रा स्थान है। जो प्रथम स्थान है वो चाइना का है, जो दूसरा स्थान है वो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। और भारत में भी अगर आज की तारीख पे हम देखें तो लगभग जो अंडे का उत्पादन है वो 122 बिलियन अंडा है, जो लगभग जो दूसरा स्थान है विश्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके बहुत करीब है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाले समय में हम इस दूसरे स्थान को प्राप्त कर लें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आप बता रहे हैं डॉक्टर पंकज कि ये बहुत संवेदनशील है और इसीलिए हमारे जो मुर्गी पालक हैं उन्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। जैसे चेंज ऑफ वेदर होता है या फिर कोई इन्फेक्शन अगर एक मुर्गी में दिखाई दिया तो बहुत जल्दी उसे कदम उठाने की जरूरत होती है। टीकाकरण को कई बार लेकर के हमारे जो मुर्गी पालक हैं वो उतने संजीदा नहीं रहते, उतना ध्यान नहीं देते, उससे भी बहुत तरह के नुकसान हो जाते हैं। तो जैसा कि हमें डॉक्टर पंकज बता रहे कि जो अभी मौजूदा स्थिति है वो बहुत ही सुखद है और इसमें लगातार हम प्रगति के पथ पर हैं और आने वाले समय में हम बेहतर कर सकते हैं क्षेत्र में। फिलहाल देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
3: अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो ये एक मुनाफे का व्यवसाय साबित होता है। मुर्गी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाएं तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी हवा मिलती रहेगी जिससे वो बहुत सी बीमारियों से बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने की जगह को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दें उसे हर 2 दिन के अंतराल में साफ करें। रात के समय बल्ब जलाकर रखें जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को ना छुएं, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा।
0: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर और महत्वपूर्ण जानकारी को लिया है कैसे हमें मुर्गी पालन के जो मुर्गी पालन करना चाहता है जो किसान उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए। हमें थोड़ा सा खुले में उन्हें रखना चाहिए, साथ ही उनके लिए जो रात में बल्ब की सुविधा होना चाहिए, उनके लिए भरपूर पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। चलिए लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को मुर्गी पालन से जुड़ी हुई और गाय से जुड़ी हुई।
1: अधिराज, जैसे कि हम देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण की बात कर रहे हैं, दरअसल इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से समझे और इसमें हमारे किसान किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें किस तरीके से लाभ भी होगा ये भी बताएं।
2: देखिए ये बता सकते हैं कि अभी भारत में जो ब्रीड रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो देसी नस्ल अगर गायों का हम देखेंगे तो लगभग 50 देसी नस्ल गायों के हैं और 17 देसी नस्ल जो भैंसों के हैं। तो इसमें हम देखेंगे अगर दूध की बात करते हैं, अगर गाय जो किसान भाई पालन करना चाहते हैं तो देसी नस्ल जैसे गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, इस तरीके के जो नस्ल हैं ये अच्छे दूध देते हैं और डिजीज रेजिस्टेंस भी ये है जो कि उनके कम उनके रोग लगते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारे संकर जातीय हैं या विदेशी नस्ल के हैं। तो उससे क्योंकि ये हमारे और हीट टॉलरेंट भी हैं जो कि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं और कम लागत में अच्छी तरह इसका दूध भी उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है और गुणवत्ता भी इस दूध का भी बहुत अच्छा है बहुत सारे स्टडीज में।
1: और ये भी इसमें बहुत मेडिसिनल वैल्यू
2: है,
1: पोषक तत्वों से भरपूर है देसी दूध, देसी गाय का दूध। और अब देखिए इसका बाजार भी काफी विस्तार लेता जा रहा है कि उपभोक्ता भी मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार है। तो किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए बहुत अच्छा बाजार खुल रहा है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं।
2: जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हम आपको बताना चाहते हैं भारत सरकार की तरफ से ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना जो चलाई गई है 2019 से शुरू गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी से उसका उद्घाटन किया गया था और इसके तहत हर हमने लगभग 600 जिले लिए थे देश के जहां पे ये जो आप बोल रहे हैं देसी नस्ल के गाय का जो सीमन होता है उसको उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रावधान किया गया है जो कि निःशुल्क किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, जो कि हमारे एआई टेक्नीशियंस हैं वो आपके घर पहुंचेंगे, कहीं पे भी होता है आप निकटतम
1: जी। लेकिन डॉक्टर अधिराज, इनका सवाल था वो यही कि अच्छा वीर्य मिले कहां से जो देसी बछड़े का हो, तो इसके लिए कहां संपर्क करे? कई बार जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पशुपालकों को भी कैसे पता चले कि हाँ वो जो चाहते हैं, जो करना चाह रहे वही है?
2: देखिए सारे राज्यों में ये हमारे जो सीमेन स्टेशंस हैं, सीमेन स्टेशन से अच्छी देसी नस्ल के जो सीमेन बनते हैं तो वो सीमेन सारे राज्यों को सप्लाई किया जाता है और सारे राज्यों का निकटतम पशु चिकित्सालय जो है वहां से संपर्क कीजिए और जो एआई टेक्नीशियन है जो आपके घर में आके कृत्रिम गर्भाधान करते हैं उनसे संपर्क कीजिए और जो नस्ल के आपको चाहिए वहां पे अवेलेबल किया गया है तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। और बेसिकली हम बताना चाहते हैं कि रीजन वाइज भी हमने कुछ किया है जो कि अपने स्टेट का जो ब्रीडिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से कोई कोई स्टेट अपने जो देसी नस्ल चाहिए उनके राज्यों के लिए, जो उनके राज्यों के लिए सही हो सकता है उस हिसाब से किया गया है।
0: जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप में से कोई किसान साथी देसी गायों का पालन करना चाहता है कि वो गर्भाशय कराए तो अपने पास के केवीकी केंद्र में हम संपर्क कर सकते हैं और ये भी अभी हमें मिल सकता है। अभी इसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका शुभारंभ कर चुके हैं। हमारे देसी गाय का जो दूध हो सकता है कि थोड़ा कम जरूर देती है लेकिन उसमें जो गुण है वो काफी उच्च गुण है उनमें। तो किसान साथियों, हमारे में से काफी किसान साथी देसी गाय का घी है, देसी गाय का दूध है, उसकी महत्वता को जानते हैं, समझते हैं और इसे पालते भी है, तो यह कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और आप सभी किसान भाई जानते हैं कि हमारी देसी गाय का घी तुलनात्मक बाकी घियों की तुलना में काफी महंगा मिलता है और अधिकतर तो ये मिलना अभी दुर्लभ हो चुका है क्योंकि अधिकतर लोग जर्सी गाय ही रखते हैं, लेकिन देसी गाय का घी जो होता है काफी गुणकारी होता है, ये बात हमारा किसान अच्छे से जानता है और ये काफी दुर्लभ है। साथ ही अगर हम बात करें हमारे देसी मुर्गियों की तो देसी मुर्गी का अंडा भी काफी गुणकारी माना जाता है और यह भी काफी दुर्लभ होता जा रहा है। किसान साथियों, यहाँ पर हम आइए लेते हैं एक्सपर्ट से राय कि अगर कोई देसी मुर्गी का पालन करना चाहता है कोई किसान साथी तो कैसे कर सकता है। हाँ, हमें हमारे पास के किसान साथियों से ये मिल जाता है लेकिन क्या हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर या अन्य संस्थाओं पर क्या इसकी उपलब्धता है या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
4: मुर्गी पालन की लगभग सारे ही क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। अगर विस्तृत दृष्टि से देखें तो मुर्गी पालन दो प्रकार का होता है। एक वो जो हम घर के पिछवाड़े पे पालते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बैकयार्ड पोल्ट्री, और दूसरा जो बहुत एडवांस स्टेज पे हम मुर्गी को पालते हैं और आजकल वो उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग लेते हैं। प्रयास ये करना चाहिए कि शुरुआती तौर पे आप कम संख्या में मुर्गी को पहले पालने का प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत संसाधन आपको कितने आवश्यक हैं, उन संसाधनों के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करें। अगर मीडियम स्तर पर या बीच वाले स्तर पर आप इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो आपको खासकर धन के क्या स्रोत होंगे और आपके पास क्या संसाधन हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहिए, और फिर नस्ल का चयन करना चाहिए कि आप अंडे की मुर्गी पालना चाहते हैं, अंडा देने वाली मुर्गी पालना चाहते हैं, या मांस उत्पादन वाली मुर्गी पालना चाहते हैं, या मुर्गियों की अन्य नस्लें जो इस देश में उपलब्ध हैं उनको पालना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास जापानी बटेर भी है, हमारे पास चीनी मुर्गा या गिनी फाउल भी है, हमारे पास टर्की भी है, तो आप किस प्रकार की मुर्गी पालना चाहते हैं वो भी आपको निर्धारित करना होगा। और संसाधनों के जो आपके पास उपलब्ध हैं, आपके पास धन की उपलब्धता है, उनके आधार पर सामान्यतया विशेषज्ञों की यह सलाह होती है कि आप पहले छोटे स्तर से इस कार्य को प्रारंभ करें और जैसे जैसे इस कार्य में आप निपुण होते जाएं आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे उसमें वृद्धि करते जाएं। तो ये पूर्णतः आपका चयन होगा। जहां तक आप थोड़ा बैकयार्ड से और मीडियम स्केल से प्रारंभ करेंगे तो उचित होगा। अंडा देने वाली अगर मुर्गी पालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको व्यवस्था करनी होगी, उसकी व्यवस्थाएं अलग हैं, और जो मांस उत्पादन वाली मुर्गी है ब्रॉयलर उसकी भी व्यवस्थाएं अलग हैं। पर ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके जो विचार है वो क्या है, आपके संसाधन क्या हैं, और आपके जो धन का या पूंजी का स्रोत है वो क्या है, और उसके साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो ये भी होता है कि आपका जब उत्पाद बाजार में जाने के लिए तैयार होगा तो उसके विपणन की व्यवस्था क्या है, ताकि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें कि कम से कम लागत से ज़्यादा मुनाफा उठा सकें और उसके अनुरूप कार्रवाई करें।
1: जी।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं मुर्गी पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को, साथ ही हमारी देसी गायों की नस्ल है उसके गुणों को। तो किसान साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को।
1: कहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से हमारे कुछ सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं जो सूरतगढ़ में हैं, जहां पे थारपारकर ब्रीड आपको अवेलेबल हो सकता है, वहां से आप संपर्क करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप निकटतम जो आपके पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं, जहां पे अच्छे किसान होते हैं जो ये फार्म अच्छा खोलते हैं, वहां से भी आप देसी नस्ल के गाय ले सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार का राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत और एक योजना भी चल रहा है जो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी अभी ये प्रावधान किया गया है कि जो 200 गाय या भैंस रख के, मिनिमम 200 रख के अपना फार्म खोलना चाहते हैं, उधर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से 2 करोड़ की सब्सिडी है, वो भी फार्म्स जहां पे एस्टेब्लिश हो गए हैं वहां से आप देसी नस्ल के गाय ले सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, तो अभी आप समझ चुके हैं कि कहां से आप देसी नस्ल की गाय प्राप्त कर सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: कि कौन सी नस्ल अच्छी देती है, तो अगर हम दूध की बात करें तो गिर जो कि बहुत अच्छी है उसको हम रख सकते हैं, साहिवाल एक ब्रीड है जिसको भी हम पाल सकते हैं, और इसके अलावा रेड सिंधी भी हम देख सकते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं जो कि दूध देने वाले नस्ल हैं, ये अच्छे दूध देते हैं। और इसका भी अगर आपके पास कोई भी अपने घर में गाय है तो उसको भी, उससे भी आप अपना यही ब्रीड निकाल सकते हैं। अगर आप कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, इस जो सीमेन अवेलेबल होता है इससे करवाइए और आपके घर में भी ये अच्छी पैदा हो सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: के गर्भधारण नहीं रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिर भी हम आपको कुछ साधारण उपाय बताते हैं, वो आप देख लीजिए। पहले तो एक है उसका बॉडी वेट कितना हुआ, अगर सफिशिएंट बॉडी वेट बन गया है तो गर्भधारण कर सकता है। उसके अलावा ये भी देखना है सफिशिएंट अगर प्रोटीन का मात्रा अगर सही है उसके जो आहार में प्रोटीन का मात्रा सही है उसको आप देख सकते हैं। कुल्थी भी दे सकते हैं उसके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए, और उसके अलावा

0: कीड़े होते हैं, अगर कीड़े भी हैं तो उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो भी आप एक बार उसका फिकल सैंपल जांच करवा लें, और कीड़े अगर हैं या नहीं तो प्रॉपर जांच करवा के एक बार देख लीजिए, तो मुझे लगता है ये सही हो जाएगा, क्योंकि गिर नस्ल बहुत अच्छा है, तो कुछ तकलीफ नहीं आना चाहिए इसके।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: सामान्यतः हमारे यहाँ जो ब्रॉयलर का प्रोडक्शन है भी वृहद स्तर पर देखा गया है और लोग कर भी रहे हैं, तो क्या ग्रोथ ज्यादा होगी या उसकी बढ़ोतरी ज्यादा होगी? तो शांत जी, मेरा एक आपको मशविरा है कि जो ये पक्षी है, जो ब्रॉयलर है, वो ब्रॉयलर पहले जो 2 महीने में बाजार जाने के लिए तैयार होता था, अब उस वृद्धि को वो 28 दिन में प्राप्त कर लेता है, 1 किलो से 1.5 किलो हो जाता है। सो प्रतिदिन उसकी आहार व्यवस्था बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और इसमें उसको बहुत ही संतुलित आहार देना होता है, और खासकर जब उसमें ग्रोथ हो रही हो तो उस समय पे हमको उसको स्टार्टर राशन देना होता है, जब वो बड़ा हो चुका होता है तो और बाजार में जाने के लिए तैयार होता है तो फिनिशर राशन देना होता है। सामान्यतया इसका जो हम लोग चयन करते हैं वो पहले 4 हफ्ते स्टार्टर राशन और उसके बाद फिर हम लोग फिनिशर राशन देते हैं। इसको कई जगह पे, खासकर जो नए नीति बन रही हैं, जो लोगों के नए फीडिंग शेड्यूल्स बन रहे हैं, उसके अनुसार 3-3 हफ्ते में इसको बांट दिया गया है। पहले प्रथम 2 सप्ताह हम उनको स्टार्टर राशन देते हैं और उसके बाद फिनिशर राशन प्रारंभ कर देते हैं, ताकि मुर्गी में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि दर हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा मांस का उत्पादन हो और बाजार में जाते समय उसका वजन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। रही बात ग्रोथ प्रोमोटर की, तो आजकल अगर आप देख रहे हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर कई तरीके के होते हैं। इस स्तर पर इसको समझना बूझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारे देश में 2-3 समस्याएं इस समय चल रही हैं। एक तो एंटी माइक्रोबियल रेसिड्यू की प्रॉब्लम है, और कई ग्रोथ प्रोमोटर हैं जो नेचुरल ग्रोथ प्रोमोटर हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु संतुलित भोजन के सबसे ज्यादा आवश्यक है, और उसमें अगर ग्रोथ प्रोमोटर डालते हैं तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप भोजन को संतुलित रखते हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर की आपको आवश्यकता होती ही नहीं है।
3: जी जी।
2: और दूसरा, अगर आप पक्षी को एक सामान्यतया स्वस्थ वातावरण में रखते हैं तो उसमें भी ग्रोथ प्रोमोटर की आवश्यकता नहीं होती है, उसको सामान्य तरीके से आप पाल सकते हैं। किंतु हमेशा याद रखिए कि अगर आपका आहार संतुलित नहीं होगा, आपका आहार पक्षी की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगा, तो आपको पक्षी में वृद्धि दर नहीं मिलेगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पक्षी का चुनाव, जो उसका जर्मप्लाज्म है वो बहुत अच्छा हो, और दूसरा उसको जो आप फीड देते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का और संतुलित हो।
3: जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर अजय की, माफ कीजिएगा डॉक्टर पंकज की, जो अगर आप संतुलित आहार देते हैं तो वैसे ही आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप मुर्गियों को संतुलित आहार दें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: जरूर उपयोग करेगा। देसी नस्ल की बात, हम गाय की नस्ल की बात कर रहे हैं, ये हमारे भारत के ही हैं, ये कहीं बाहर के नहीं हैं, ये हमारे एरिया के ही हैं, तो इसको हम पालन कर सकते हैं। और जरूर आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप मतलब दूध उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो गिर रख सकते हैं, साहिवाल रख सकते हैं, उसमें कुछ दुविधा नहीं होगी। इसके अलावा ये भी हम बता सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से और भी योजनाएं शुरू की गई हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, जो कि IVF भी आप करवा सकते हैं अपने जो भी घर में पशु है, जो गाय है, उसका IVF आप करवा के गिर या एक साहिवाल हो या जो भी भैंस का भी चाहते हैं, मुर्रा चाहते हैं, जहां भैंस रखते हैं लोग, तो वो भी आप उसका फायदा ले सकते हैं, जिसके लिए भारत सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की एक सब्सिडी भी रखी गई है, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं।
3: जी बिल्कुल। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से आप देसी गाय अगर आप पालना चाहते हैं या फिर डेयरी लगाना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु के अनुकूल ही होती है तो बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं होती है। अब मैं डॉक्टर पंकज आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी आए लेकिन जो मुख्य सवाल थे उन पर अभी तक हम नहीं जा पाए हैं। तो जो नए हमारे मुर्गी पालक हैं, अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपने ज्यादातर हमारे किसानों को ये बताया कि कम से शुरुआत करें, मुख्य बातें कौन कौन सी होती जिसका ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, जब भी मुर्गी पालन का व्यवसाय आप अपनाना चाहें तो मुख्य मुख्य बातें हमने कर ली कि हमें सबसे पहले अपने

0: में जो जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जानकारी लेने के बाद अपने संसाधनों को तलाशना चाहिए और अपने पूंजीगत व्यय जो आप करने की स्थिति में हैं उसका एक असेसमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका जो प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि ये जो मुर्गी और मुर्गी से पाए जो प्राप्त होते हैं उत्पाद, वो सब पेरिशेबल नेचर के होते हैं, उनको लंबा समय तक आप स्टोर करके अपने पास नहीं रख पाते हैं। तो जैसे ही वो तैयार होते हैं उनको तुरंत मार्केट में भेजने के लिए विपणन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो एक बहुत चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। तो शुरुआती तौर पे हम इसलिए कहते हैं कि आप छोटे स्तर से इस व्यवसाय को प्रारंभ करें, क्योंकि उसमें अगर आपको कुछ आगे पीछे या नफा नुकसान भी होता है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता, आप दोबारा से उस व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। और जो मात्रा प्रोडक्ट की आपके पास होती है उसकी भी विपणन व्यवस्था आप बहुत आराम से अपने स्तर पर कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं हमारे देश का जो उत्पादन का स्थिति है वो काफी वृहद स्तर पर हो रहा है, और पूर्व में भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा कर ली है कि भारत ने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है, मुर्गी और मुर्गी के उत्पाद की दृष्टि से वैश्विक स्थान भी बना लिया है। और इन सारे उत्पादों का लगभग 20-27% हमारा इस बैकयार्ड से आता है, जो हमारे घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन होता है उससे आता है। और इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये होती है कि जब ग्रामीण परिवेश में हमारे किसान भाई इसको घर के पिछवाड़े पे एक सहयोगी धंधे के रूप में अपनाते हैं, अपने कृषि कार्यों के साथ साथ 50 या 100 मुर्गियों को पीछे रख करके उनसे इस व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, तो होता क्या है उसके जो अंडे प्राप्त होते हैं वो आपके परिवार के लिए, परिवार के इस्तेमाल करने के लिए भी होते हैं, आपको एक संतुलित प्रोटीन और संतुलित आहार की प्राप्ति आपको और आपके परिवार को होती है। उसके साथ साथ कभी जब आवश्यकता पड़े तो ये मुर्गी आपके लिए एक एटीएम का कार्य भी करती है, आप उसको रूरल मार्केट में 100-200-250 रुपए में बेच भी सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो एक इन दो उद्देश्यों के साथ साथ अगर इस व्यवसाय को आप रखते हैं तो आपको फायदा भी होता है, और धीरे धीरे जब आप इस मुर्गी पालन के व्यवसाय में परिपक्व होते जाते हैं तो इस व्यवसाय को थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में विपणन की व्यवस्था बहुत ज्यादा हमें करनी नहीं होती है। पर हाँ, भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या है तो वो है मुर्गी के एक विपणन व्यवस्था, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हमारे भारत में नहीं है। यद्यपि अब हम लोग औद्योगिक स्तर पे पहुंच गए हैं और अब बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी अभी हमारी जो मार्केटिंग की व्यवस्था है, जो विपणन की व्यवस्था है, बहुत ही प्राथमिक टाइप की है।
1: सप्लाई चेन जो है वो और भी बेहतर होने की उम्मीद हम कर सकते हैं, तभी और बेहतर हमारे जो मुर्गी पालक है उन्हें लाभ होगा।
0: एग्जैक्टली, और उसके साथ साथ अब तो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंज्यूमर तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी संभाल ली है। सो जितने एंसिलरी यूनिट्स हैं जो मुर्गी पालन के व्यवसाय में लगे हुए हैं उनने भी काम किया है। आपने कोरोना के समय पे देखा कि अगर आपको मुर्गी की या मुर्गी के मांस की या मुर्गी के अंडे की आवश्यकता थी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ये सारी चीजें उपलब्ध थी, आप चाहते जिस समय आप चाहें उस समय पे इन उत्पादों को अपने घर पे बैठे हुए प्रोसेस्ड हों या रॉ हों आप बुलवा सकते थे। तो धीरे धीरे इसकी विपणन व्यवस्था ने एक नया आयाम लेना शुरू किया है, डिजिटल मार्केटिंग भी शुरू हुआ है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इसकी मार्केटिंग थोड़ी सी ईज आउट हुई है। उसके साथ बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक दूसरे के साथ साझेदारी भी शुरू की है, तो जिनको अगर बड़े लार्ज स्केल में मुर्गी के उत्पादों की आवश्यकता होती है, जैसे चिकन की आवश्यकता होती है या अंडों की आवश्यकता होती है, तो वो बैकवर्ड लिंकेजेस अपने डेवलप करते हैं, कुछ फार्म्स और फार्मर्स के साथ बात करते हैं, उनके जितने भी उत्पाद होता है वो डायरेक्ट लेते हैं और अपने अनुरूप उनको पैदा करवाते हैं, जिससे वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, यानी धीरे धीरे जैसा कि आप बता रहे हैं कि और ऑर्गेनाइज्ड होता जा रहा है ये सेक्टर।
2: किसान साथियों, मुर्गी का व्यवसाय हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय है, यह बात हमारे झाबुआ का किसान बहुत ही अच्छे से जानता है। जब भी हमारा जो किसान है, जब भी उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है, वे हाट का जो हमारा दिन होता है, हाट बाजार के दिन में आते हैं और जो मुर्गी है वो अभी 300 से 400 रुपए के बीच में बिक रही है। साथ ही अगर हम मुर्गे की बात करें तो मुर्गा 700 से 1000 के बीच में ही बिकता है, और अगर हम देसी मुर्गा और कड़कनाथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा दाम मिलता है। तो किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। साथ ही जैसे कि हम प्रारंभ में हम चर्चा कर रहे थे कि जो देसी अंडे हैं, देसी अंडे का जो अभी मिलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, हमें बाजार में अंडे ज़रूर मिल सकते हैं लेकिन जो देसी अंडे है जिसका स्वाद अलग होता है और वो गुणकारी होता है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा किसान भाई इसमें थोड़ा सा और ध्यान लगा दे और जो हमारे घर के पीछे हम पालते हैं, हमारे घर पे ही हमारे पेड़ों पे जो मुर्गियां होती है, उकेड़ा है, उकेड़े में से वो काफी अपने जरूरतमंद जरूरी कीड़ों को वो खाती है, और इस तरीके से हमारे हमें इसके लिए कुछ ज्यादा खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये कम लागत पर होने वाली कृषि है। तो किसान साथियों, आप इसमें भी अपना रुख कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा और ज्यादा मुनाफा इसके माध्यम से भी हम कमा सकते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो अपनी बातें।
4: साहिवाल भी बहुत अच्छा है। थारपारकर देखिए, थारपारकर साहिवाल अगर देखेंगे सिर्फ दूध उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो साहिवाल बहुत ही अच्छा है, और थारपारकर अगर देखेंगे ये डुअल पर्पस है, मतलब इसे दूध का लाभ भी ले सकते हैं और अगर मतलब मेल काफ हो गया तो उसको आप मतलब खेती में भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज बहुत अच्छे हैं आपके राजस्थान के लिए। और हमारा एक जो मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान में हमारा सूरतगढ़ में एक सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म है जहाँ पे थारपारकर की उपलब्धि भी हो सकती है, वहाँ से आप पूछताछ कर सकते हैं और कहाँ अवेलेबल है बता सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं इसकी फायदा।
1: जी बिल्कुल। साथ ही अधिराज जी बताया कि जैसे कि आपने हमें ई गोपाला ऐप के बारे में भी बताया था कार्यक्रम से पहले, हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया था कि ये बहुत हमारे किसानों के लिए अच्छी सुविधा है, तो किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं और किस किस तरह की जानकारी या फिर सर्विसेज इस ऐप पर उपलब्ध हैं?
4: जैसे कि अभी सर ने बताया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब सारी चीजें अवेलेबल हो रहे हैं, तो वही डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए और किसानों को सुविधा मिलने के लिए ये ई गोपाला ऐप का भी लॉन्च जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी से करवाया गया था, तो ये जो हुआ था तो इसमें क्या है, आप अगर कोई अच्छे नस्ल के पशु चाहते हैं, जो गाय है या भैंस है वो भी चाहते हैं, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो उसको आप खरीदारी कर सकते हैं और उसके जो किसान है उससे बात करके ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो सिमेन जो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए चाहिए उस वो भी वहाँ अवेलेबल है, और कहाँ से आप ले सकते हैं वो भी सारा, और उसके पर्टिकुलर प्राइस के साथ कितना मूल्य है वो भी अवेलेबल है, किस सांड का है वो भी सारा चीज़ अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एम्ब्रियो अगर चाहते हैं, अगर कोई IVF करना चाहता है तो उसके लिए एम्ब्रियो अवेलेबिलिटी भी वहीं दिया गया है। इसके अलावा उसमें कुछ छोटे छोटे चीज़ें दिए गए हैं कि कोई अगर रोग आ जाता है, मतलब छोटा कंडीशन आ जाता है, उसका कैसे घरेलू उपचार हम कर सकते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसको लगा के हम, जैसे कोई पत्ता हो या कोई फूल हो उसको लेके हम, कोई एक छोटा सा अगर बुखार आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसका हम इलाज कर सकते हैं, वहाँ पे इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज का भी वीडियोज दिए गए हैं जो जिसका फायदा कोई किसान ले सकते हैं। उसके अलावा पोषण का भी वहाँ पे प्रावधान रखा गया, अगर कोई किसान उसमें रजिस्टर्ड करते हैं अपने पशु को दूध दे रहा है, 5 लीटर दूध दे रहा है या 10 लीटर दूध दे रहा है, उसके हिसाब से उसको जितना पोषण चाहिए उसका भी कैलकुलेशन वो करवा के अपने हिसाब से वो ले सकता है।
1: जी चलिए, तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी लाभ हमारे पशुपालक ले सकते हैं, और खास तौर पर ये ई गोपाला ऐप है जिसे खुद प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, और इससे बहुत तरह की सुविधाएं आपके बिल्कुल डोर स्टेप पर भी मिलेगी।
2: किसान साथियों, अभी आपने ई गोपाला ऐप के बारे में सुना, क्या है ई गोपाला है किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा एक मौका है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें वहां पर मिल सकती है, हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप के माध्यम से जो भी जानकारी हमें चाहिए हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से ढूंढ सकते हैं। साथ ही पहले हमें इन सारी चीजों को ढूंढने की काफी दिक्कत होती थी, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके पास मिलेगा आदि चीजों की हमें दिक्कत होती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस ऐप का शुभारंभ किया है और ये बहुत ही अच्छी ऐप है, इसके माध्यम से हम अच्छे से अच्छी किस्म की वीर्य प्राप्त कर सकते हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों को इस ऐप के माध्यम से हम ले सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो अपनी बातें।
4: देखिए, इसका कारण है ये फैट नहीं आ रही है जिसके वे आप जो दूध बेच रहे हैं उसका प्राइस भी कम हो रहा है। आप जो आहार देते हैं उसको संतुलित आहार दीजिए, जो कॉमर्शियल फीड मिलता है वो कॉमर्शियल फीड बाहर से खरीद के दीजिए, और उसके साथ आप उसको हरा चारा का भी सफिशिएंट हरा चारा दीजिए। मिनिमम उसको ये 5-6 लीटर दूध दे रहा है तो मिनिमम 25 किलो हरा चारा उसको रेगुलर चाहिए। ये देखिए दूसरा चीज़ है, आप कॉमर्शियल फीड जो मिल रहा है बाहर का गाय के लिए मिल रहा है उसका अवेलेबिलिटी करवाइए। अगर हम देखते हैं कि जो पोषण हम देते हैं तो अगर वो हर 2.5 लीटर दूध के लिए 1 किलो कॉमर्शियल फीड हमें उसको देना चाहिए तो इसका एक बार देखिए। दूसरा चीज़ आपको देखना होगा कि अगर कुछ मिनरल मिक्सचर उसके फीड में डाल सकते हैं वो डालने से भी, अगर डेली 50 ग्राम अगर मिनरल मिक्सचर जो मिल रहा है बाहर कॉमर्शियली अवेलेबल है, फीड सप्लीमेंट की तरह अवेलेबल होता है, उसको भी आप डाल के उसके आहार में डालिए तो इसके हिसाब से आपका जो गाढ़ापन आ जाएगा दूध में।
1: जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर पंकज, जैसे कि मैं जानना चाह रही थी आपसे कि कौन कौन सी नस्लें हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो अलग अलग जो उद्देश्य है हमारे मुर्गी पालकों के उसके अनुसार जिसका चुनाव कर सकते हैं।
0: देखिए नस्लों के मामले में भारत इस समय मैं अगर कहूं कि सबसे सर्वप्रथम है और सबसे उच्च स्थान पर है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास से विभिन्न जो हमारे इको क्लाइमेटिक जोन हैं उनके हिसाब से और उत्पादन की दृष्टि से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बर्ड्स तैयार कर लिए हैं। हमारे पास अगर घर के पिछवाड़े पे पाले जाने वाली मुर्गियों की करीब करीब 13-17 नस्लें हमारे पास उपलब्ध हैं। अलग अलग इलाकों में ये विकसित की गई हैं और उन इलाकों में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। अगर विकसित उत्पादन वाली मुर्गियों को अगर हम देखें तो अंडा देने वाली हो या ब्रॉयलर हो, उस पर भी उत्पादन की दृष्टि से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और हमारे पास वो सारी नस्लें जो विश्व के किसी भी कोने में मौजूद हैं वो भारत में मौजूद हैं। और इनकी विपणन व्यवस्था भी देखें, इनकी उपलब्धता भी देखें तो जो हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो हमारे यहाँ की सरकारी हैचरीज भी हैं उसमें इनका उत्पादन अपेक्षाकृत जितना भी आवश्यकता है उस स्तर पर किया जा रहा है। और बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है कि हम थोड़े ही समय में अंडा उत्पादन करने वाले दूसरे देश बन जाएं वैश्विक स्तर पर। तो ये सारी चीज़ें इन बातों पे डिपेंड करती हैं कि हमारे पास चूजों की उपलब्धता है कि नहीं है, आवश्यकता के अनुरूप चूजे की मांग बढ़ती और घटती रहती है। क्योंकि आपने देखा है कि भारत हमारा जो है वो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। श्रावण के मास में मुर्गी के खपत पे कमी आ जाती है, गर्मी के दिनों में कमी आ जाती है और जाड़ों में ये अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। तो इसकी मांग के अनुरूप इसका उत्पादन हमारे यहाँ किया जा सकता है और जो कंपनियां हैं वो आपके घर तक आपको ये चूजे उपलब्ध करा सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: आपकी हो सकती हैं परंतु इसका चिकित्सीय परीक्षण और इसका शव परीक्षण आवश्यक रूप से करा लें और चिकित्सक की सलाह लें, क्योंकि नॉर्मल आप जो बता रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूं दो समस्याओं के कारण ये हो सकता है। एक कि आपने मुर्गी को प्रथम दिवस पे जो टीका लगाना होता है, जो हैचरी के स्तर पे टीका लगाना होता है वो होता है मैरेक्स डिसीज का, जिसके कारण दोनों टांगों में पैरालिसिस होता है। उस कारण में अगर प्राथमिक स्तर पर आप देखें और 1-2 सप्ताह के अंदर ये बीमारी हो रही है तो वो उस कारण से हो सकती है, और अगर 3-4 सप्ताह के अंतर पे ये बीमारी हो रही है तो वो सामान्यतया जो हमारा B2 होता है उसकी डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन B2। तो बी कॉम्प्लेक्स का भरपूर उपयोग करें उसके लिए, अगर उससे करेक्ट हो जाता है तो ये मानिए कि वो विटामिन के कारण है। परंतु अगर जब इसमें मृत्यु दर हो रही है या ये पक्षी अपंग हो रहा है तो इसका चिकित्सकीय परीक्षण जरूर कराएं और ये जानने का प्रयास करें कि ये बीमारी के कारण हो रहा है या ये किसी डेफिशिएंसी के कारण।
1: मैरिक्स के बारे में जैसे आपने बताया डॉक्टर साहब, तो उसमें भी बताते हैं कि बहुत एकदम शुरुआत में ही चूजों को टीका लगा देना चाहिए। तो अगर आप टीका नहीं लगवाया तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं ये चूक तो आपसे नहीं हो गई है। अंत में कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे?
4: ये हम बताना चाहते हैं कि हमने भी बहुत सारे देशी नस्ल के बारे में भी बात की और एक भारत सरकार का ये भी जैसे प्रोत्साहित किया जाए, जो कि अच्छी देसी नस्ल पाल रहे हैं भारत में, उस तरीके के जो पशुपालक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम रखे जाते हैं। उसमें भी एक चीज़ है गोपाल रत्न अवार्ड, जो कि पुरस्कार राशि दी जाती है, फर्स्ट को 5 लाख की और सेकंड को 3 लाख की और थर्ड को 2 लाख की राशि दी जाती है। तो ये वर्ष में एक बार किया जाता है, तो इसमें भी भाग लें और देसी नस्ल के लिए सुधार के लिए जो हमारे पशुपालक हैं।
2: किसान भाइयों, हमारे किसान साथियों के लिए एक सुनहरा मौका है, यहाँ अवार्ड रिवॉर्ड के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह खेती करे, उन्नत अच्छी से अच्छी खेती करे, अच्छी पैदावार ले, जिससे हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि हमारा किसान जो है हमारे पूरे देश के सभी लोगों का पेट भरता है। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार द्वारा प्रोत्साहित राशि दी जा रही है, आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, भाग लें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी के साथ किसान साथियों, यहां पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भी 90.8 FM के साथ।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपये हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छावा की आवाज। खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे किसान की समस्याएं हैं, जैसे कि पौधों में फूल का ना आना और पौधों की बढ़वार ना होना, पत्तियों का कोड़ा जाना आदि बहुत सी जो समस्याएं आती है, इससे हमारा किसान हार मान बैठता है। तो यहां पर हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो खेती बाड़ी कार्यक्रम है, इसके माध्यम से हम इन समस्याओं को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे इसको हम डिस्कस करें, इसमें हम केवीके की राय लें और उसके केवीके के माध्यम से अधिक किसानों तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे जो किसान है जो समस्याएं आ रही है उसको हमारे साथ साझा कर सके और उन समस्याओं का हम केवीके के एक्सपर्ट के माध्यम से हम उनका समाधान कर सकें। तो इसी के साथ किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
6: खासतौर से आज के समय को अगर देखा जाए तो हम सभी जानते हैं, कुदरत की बात की जाए, प्रकृति की बात की जाए, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। और जब कृषि क्षेत्र में हम खेती की बात करते हैं तो वहां भी प्राकृतिक खेती से बेहतर कुछ नजर विकल्प हमें नहीं आता। इसलिए जरूरी यही है कि प्राकृतिक खेती को जो हमारे और भी किसान हैं वो भी जाने। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि बाहरी देशों में भी बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती की जाती है। लेकिन जब बात हमारे देश की जाती है तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अब हमारे जो किसान हैं इस खेती से जुड़ने लगे हैं, और इस खेती के लिए भी क्या किसी तरह का जो प्रशिक्षण हमारे किसान सोचते हैं, या जब वैज्ञानिक पहलू की बात आती है क्या इस तरह की भी जटिलताएं उनके सामने आती हैं या नहीं, इस पर भी आपको हम पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कैसे प्राकृतिक खेती भविष्य की खेती कही जा रही है।
5: किसान भाइयों, यहाँ पर चर्चा को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हम आज को किस पर बात करने वाले हैं।

0: हमारी माता है और हम उसके पुत्र। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को पालती पोसती है, उसी तरह धरती भी अपनी उपज से इंसानों का पेट भरती है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में ये सभी तत्व मौजूद हैं। और कमाल की बात ये है कि एक अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूर पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। साथ ही प्राकृतिक खेती भूमिगत जल को बढ़ाने में भी है सहायक। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इस तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, और वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। खाद दो तरह से बन सकती है। पहला तरीका ये है कि एक देसी गाय का 24 घंटे का गोबर लेना है, जो करीब 10 किलो होगा। 24 घंटे में ही इकट्ठा किया 8 से 10 किलो मूत्र, 1.5-2 किलो गुड़, इतनी ही मात्रा में किसी भी दाल का बेसन और पेड़ के नीचे से मुट्ठी भर मिट्टी। इन 5 चीजों को प्लास्टिक के ड्रम में 180 लीटर पानी में लकड़ी के डंडे से सुबह शाम 5-5 मिनट मिलाना है, और इस मिश्रण को छायादार जगह पर रख देंगे। 4 से 6 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी, जो एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। इस तरह अगले 30 दिनों में 30 एकड़ खाद आपके पास होगी। ये खाद मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। दूसरी खाद घन जीवामृत है। इसमें 100 किलो गाय का गोबर सुखाकर बारीक कर लेते हैं, साथ ही 24 घंटे का गौमूत्र, 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन और एक मुट्ठी मिट्टी मिलाकर छायादार जगह पर ढक कर रख देते हैं। यूरिया की तरह ही इस खाद को 6-7 महीने तक कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधे के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है, और खास तौर से कर्नाटक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस तरह की खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उपयोजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस उपयोजना में अब तक 4,09,400 हेक्टेयर क्षेत्र कवर हो चुका है और 8 राज्यों के लिए 4,981,00,000 रुपए जारी किए जा चुके हैं। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह खेती करते आ रहे हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है।
1: तो जाना आपने आखिर प्राकृतिक खेती है क्या और किस तरीके से। देखिए, किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन आवश्यकता है तो उसके बारे में जानने की और उसके साथ साथ इस दिशा में आगे बढ़ने की। और खासतौर से अगर हम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बात करें तो लगातार मंत्रालय की तरफ से कोशिश यही होती है कि जो किसानों के हित में है सबसे पहले उसे प्राथमिकता दी जाए। और ऐसे ही कुछ स्थिति प्राकृतिक खेती के साथ भी हमें नजर आ रही है। इस बारे में डॉक्टर साइन आपसे हम जानना चाहेंगे, प्राकृतिक खेती हमने जाना अपनी इस रिपोर्ट में है क्या, आपसे हम समझना चाहेंगे आखिर किस तरीके की ये खेती है और कैसे किसानों के लिए लाभकारी है।
2: जैसे कि जानते हैं कि भारतवर्ष में हमारे ऑलमोस्ट 140 मिलियन हेक्टर से ऊपर जो हमारे एरेबल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, और जिसके आधार पर ऑलमोस्ट माने जो हमारे एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है वो टोटल वर्कफोर्स का ऑलमोस्ट 55% डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में, और ऑलमोस्ट 70% जो गांव के रहने वाले हैं उसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं
1: जी।
2: तो हमारे जब ये शुरू हुआ था स्वाधीनता के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, फूड सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा था कि हमें फूड सेल्फ सफिशिएंसी बनना है। लेकिन आज हम चलते चलते फूड सेल्फ सफिशिएंट तो बन गए। हमारे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960s में,
1: बिल्कुल,
2: जिसमें हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग हुआ या हाइब्रिड सीड्स के प्रयोग हुआ, तो इसमें क्या हुआ, हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। लेकिन हमने रियलाइज किया ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब सेल्फ सफिशिएंसी बने, जो हमारा मिट्टी है, जिसका सॉइल का हेल्थ है, जो हमारे ये जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो उसी एग्रीकल्चर के साथ साथ इनके भी कुछ प्रॉब्लम शुरू हुआ। इसके साथ साथ ह्यूमन हेल्थ का भी प्रॉब्लम शुरू हुआ, बिकॉज ये जो केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स डिपेंडेंट एग्रीकल्चर जो है, इसमें जो प्रॉब्लम्स है उसमें सुधार के लिए बहुत जरूरत हो गया है। इसलिए जो वर्तमान की सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अभी हमारे डायरेक्शंस जा रहे हैं नेचुरल फार्मिंग की, जो हम नेचर के तरफ चल रहे हैं, जिसमें एग्रो इकोलॉजी प्रैक्टिसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, ये केमिकल फ्री फार्मिंग का फॉलो कर रहे हैं, और जिसमें जो आत्मनिर्भर, जो अपने फार्म में सारे एग्रो इनपुट्स प्रोडक्शन करके उसको यूज करते हुए सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, तो उसके डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिडक्शन हो रहा है और जिसमें हमारा प्रोडक्टिविटी भी काफी माने आगे जा रहा है। इसको जब सॉइल कार्बन को हम फिक्स करते हैं और उसको नेचुरल प्रोसेस में लेते हैं और हेल्दी प्रोड्यूस लेके आते हैं, तो फार्मर को भी ये बेनिफिट होता है,
1: काफी लाभ जो है देखिए किसान को मिलता है अगर प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं। और आप भी जानते होंगे जब हम प्राकृतिक की बात करते हैं तो कौन कौन से कारक हैं, और वही कारक हैं जो कृषि में भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन जब इसकी शुरुआत की बात आती है, यूं तो ये खेती प्राचीन काल से हमारे देश में हो रही है, जो किसान है वो बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि ये शायद एक पद्धति किसान की ही है, इजाद की हुई, और जो इसको सफल भी बना रहे हैं। लेकिन जब शुरुआत की बात हम करते हैं, इस बारे में डॉक्टर नीलम आपसे हम समझना चाहेंगे, जो किसान है हमारे वो जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन जब इसकी शुरुआत की अगर खासतौर से बात की जाए, कैसे प्राकृतिक खेती की शुरुआत हम कर सकते हैं।
3: देखिए, मैं थोड़ा सा जो डॉक्टर अश्विन ने जो किया बताया उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आप देखिए कि हमारे देश में जो हमारी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो लगातार कम हो रहा है। मिट्टी का स्वास्थ्य दर्शाने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन एक इंडिकेटर होता है
1: जी।
3: हमारे यहाँ पर जो हमारी मिट्टियां हैं उनका ऑर्गेनिक कार्बन अब 0.4 से 0.5% हो गया है, जबकि हमें अगर अच्छी से खेती करनी है तो ये 1 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, आपने देखा कि हमारे यहाँ पानी की किल्लत अभी किसानों को होने लगी है सिंचाई में, और आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन जो हमारी जल की उपलब्धता है जो कि 5,500 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर ईयर थी, अभी वो 500 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर ईयर, 1500 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर ईयर हो गई है। तो हम 5500 से 1500 तक आ गए हैं, जो कि समय के साथ और कम होगा। दूसरा है कि पहले हमने जब हमारे यहाँ ये ग्रीन रेवोल्यूशन या जिस हमारे देश में लगभग 60 के दशक में, तो हमारे किसान हमारी खादें देते थे और हमारी पैदावार बहुत अच्छे से बढ़ती थी। हुआ क्या, खाद देने का दर हमारा बढ़ता रहा लेकिन पैदावार उस ढंग से नहीं बढ़ी
1: जी।
3: तो अभी हुआ क्या, एक तरफ आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, दूसरा आपका पानी की उपलब्धता कम हो रही है, तीसरा आपकी जो पैदावार है वो आपकी उतनी नहीं आ रही जितनी होनी चाहिए।
1: परिस्थितियां जो है विपरीत होती
3: जा रही है
1: और प्रकृति के साथ देखिए यही होता है, जब हम कहते भी हैं कि जो हमारी कुदरत है या प्रकृति है उसके साथ जब खिलवाड़ किया जाता है तो किस तरीके की विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन अब आवश्यकता है उन विपरीत परिस्थितियों को सही ढंग से एक सही दिशा देने का और उसके लिए अब सरकार प्रयास कर रही है। टी विजय कुमार जी उनके पास अब आइए चल लेते हैं। टी विजय कुमार जी आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जब हम लगातार बात करते हैं प्राकृतिक खेती की, किस तरीके से, क्योंकि अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए, आंध्र प्रदेश की राज्य की अगर हम खासतौर से बात कर लें, क्या स्थिति है वहां पर प्राकृतिक खेती की और कितनी संभावनाएं उन किसानों के लिए जो अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं।
4: ये कार्यक्रम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा 2015 से हमने ये अभियान चलाया है और अभी भी जो नीलम पटेल मैडम और श्वाइन साहब ने बताया वही परिस्थितियां हैं
1: जी।
4: किसानों की जमीन की भी प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी की भी प्रॉब्लम है, तो हम किसानों के पास गए कि ये समस्या का परिष्कार जो है हम कुदरत की ओर चले, वी डू नेचुरल फार्मिंग। और यहाँ पर लगभग 15 साल से काफी गांवों में अलग अलग किसान जो हैं ये अपना प्रयास कर रहे थे और जो सुभाष पालेकर जी हैं उनका जो प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल फार्मिंग के, उनके द्वारा हमने 4 बार बड़े बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दिलवाया किसानों को
1: जी।
4: और ये अभी 3,700 गांवों में ये कार्यक्रम फैल गया है, मीन्स 30% ऑफ विलेजेस, 30% गांवों में अभी ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारे राज्य में लगभग 50 लाख किसान है और इस साल हम 7 लाख किसानों को इसमें जोड़ेंगे
1: जी। एक बड़ा आंकड़ा आपने यहाँ बताया विजय कुमार जी, किस तरीके से ज्यादा जो किसान है इससे जुड़ रहे हैं और काफी संख्या में अलग अलग जो गांव है वहां भी ये सारी जानकारी दी जा रही है। हमारे साथ भी यहाँ जो प्रगतिशील किसान मौजूद है उनका किस तरह का अनुभव रहा है प्राकृतिक खेती से जब वो जुड़े इस बारे में भी जान लेते हैं। राजकुमार जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो जाहिर तौर पर कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, कई तरह की बातें हमारे सामने आती हैं, आपका किस तरह का अनुभव रहा जब आप प्राकृतिक खेती से जुड़े?
5: मुकुल जी, मैं 1993 से कृषि के क्षेत्र में आया
1: जी
5: और 12 वर्ष मैंने वो रासायनिक खेती की और मैं उसका भी बेस्ट किसान था
1: जी,
5: उसका भी मैं रिकॉर्ड उत्पादक किसान रहा। लेकिन जैसे जैसे मैं उसमें आगे बढ़ता गया उत्पादन जरूर बढ़ा लेकिन मिट्टी को हमने बांझ करने का काम किया, क्योंकि हमारी मिट्टी उन दिनों पानी ग्रहण करने की क्षमता छोड़ चुकी थी
1: जी।
5: जहां एक विश्वविद्यालय 10 केजी जिंक डालने की बात करता था पूरे वर्ष के लिए, मैं एक क्रॉप में ही 60 केजी डाल रहा था
1: जी। और ये अभी भी शायद हमारे कुछ किसान करते हैं
5: ऐसा, अब नहीं, अब तो और उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है
1: जी।
5: पहले तो मुख्य रूप से 1-2 तत्व ही बाहर से डालते थे, लेकिन अब तो अंबार लग चुका है, जैसे जैसे हम रसायनों का प्रयोग करते गए मिट्टी को कमजोर करते चले गए और मिट्टी को कमजोर करना कभी भी किसी देश के हित में नहीं हो सकता, उस प्रणाली पर आप लंबे समय तक नहीं चल सकते।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई भी देश की आप बात कर लीजिए लेकिन जहां जब मिट्टी का अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि सफलता, किसान कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन जो उम्मीद है हमें, जिस सफलता की उम्मीद करके हम चलते हैं वो सफलता शायद हमें नहीं मिल सकती, उस तरह का उत्पादन हमें नहीं मिलता। लेकिन खासतौर से हमारे जब किसान इससे जुड़ जाते हैं, भले ही हमारे देश में जलवायु की विभिन्नता हो और अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य की, वहां पर किस तरीके से जो प्राकृतिक खेती है, क्योंकि अमूमन हम यही सुनते हैं हिमाचल प्रदेश में अगर आप जाते हैं तो पूरी तरीके से जो प्रकृति है वो आपको वहां पर नजर आएगी, लेकिन प्राकृतिक खेती की जो संभावनाएं हैं या कितने किसान जुड़े हैं ये जान लेते हैं। डॉक्टर राजेश्वर से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे प्राकृतिक खेती की अगर बात की जाए।
6: देखिए, जो विषय पूरे देश भर का है, जो स्वाइन साहब से शुरू हुआ और डॉक्टर नीलम और विजय कुमार सर ने कहा, वही विषय हिमाचल प्रदेश के भी आए। एक परसेप्शन के लिए थोड़ी अलग थी कि पहाड़ का शुद्ध होगा, पहाड़ का प्रोडक्शन अच्छी है और पहाड़ की मिट्टी अच्छी है, परंतु पिछले एक दशक के डाटा को देखें तो हमारी मिट्टी डिजर्टिफिकेशन, हम जो सबसे तेजी से डिजर्टिफिकेशन की ओर राज्य बढ़ रहे हैं, हिमाचल उसमें एक है
1: जी।
6: सबसे ऊपर अभी हमारा इरिगेशन का पोटेंशियल नहीं बढ़ पाया है और एक पोस्ट डेटा है जो बताता है कि पिछले एक दशक में 25% किसान खेती छोड़ गए हैं
1: जी।
6: तो ये विकट सिर्फ हिमाचल प्रदेश का नहीं, जो 8 करोड़ के आसपास हमारे जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनके जो छोटे किसान हैं, लगभग 87% ऐसे किसान है 0.6 हेक्टेयर उनकी एवरेज लैंड होल्डिंग है, मैकेनाइजेशन यहाँ नहीं है। तो ये जो सुभाष पालेकर जी ने जो एक टूल किट दी हमारे लिए, ये यहाँ पर एक लोगों के लिए एक पूरा इनका जो जो रीडिजाइन हुआ, जो शिफ्ट हुआ पूरा डिजाइन पर, ये काम किया। किसान को ये लगना शुरू हुआ कि क्योंकि आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है परंतु इसकी लगभग 10 करोड़ की जो इकोनॉमी है वो एप्पल और ऑक्सीजन वेजिटेबल्स की है। तो साल दर साल जो पेस्टिसाइड का स्प्रे, फर्टिलाइजर्स का, फंजीसाइड्स का बढ़ता गया, हम 18 स्प्रे पर क्रॉप तक जा रहे हैं। तो जो किसान थक चुका उसको लगा कि अब हमें एक वाइबल ऑप्शन चाहिए। 18 स्प्रे करने के बाद भी अगर प्रोडक्टिविटी लेवल हमारा या तो स्टेगनेंट हो गया है या कम हो रहा है
1: जी, तो शुरू में, और शायद हर एक किसान के लिए संभव भी नहीं है कि 18 स्प्रे जो है अपनी फसल में दे पाए। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो लागत है वो बढ़ जाती है एक किसान के लिए, और हर एक किसान को जानना ये जरूरी है कि लागत को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। हमारे साथ जो प्रगतिशील किसान है वो अपनी लागत को कम भी कर रहे हैं, और बल्कि उनका मानना है कि बाहर से उन्हें कुछ सामान लेने की आवश्यकता होती ही नहीं। फूल कुमार जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, आप भी पिछले काफी समय से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, किस तरीके से आप एक बड़ा अंतर पाते हैं और लागत को अगर देखा जाए, खर्च को अगर हम देखें, क्या स्थिति?
7: ये प्राकृतिक खेती में जी हमने बाहर से कुछ भी खरीदना ही नहीं है किसान ने
1: जी।
7: सब अपनी गाय से, अपने मतलब बनी से, जैसे नीम आग के कुछ क्यों ही समस्या के लिए लेने हैं तो नहीं, तो आपने खेत में ही गाय के गोबर और मूत्र से जीवामृत, गन जीवामृत और बीजामृत और अपने खेत का बचा हुआ अवशेष उसी का खेत में प्रयोग करके और वहीं पे आपने उसको खाद के रूप में बदल देना है। जितना जितना हम अपने खेत में बायोमास का प्रयोग करते जाएंगे उससे हमारे नीचे केंचुओं को काम करने के लंबे समय तक काम करते हैं क्योंकि उनको अनुकूल वातावरण मिल जाता है और वो बाद में आच्छादन हमारा वहीं पे गड़ के और वहीं पे खाद का काम करता है
1: जी।
7: और बाहर से किसान जब तक कुछ भी खरीद के ले आएगा तो उसकी उसकी आमदनी जो है उस पर सीधा असर पड़ेगा। जब बाहर से वो कुछ भी खरीद के नहीं लाएगा और एकदम से नेचुरल अच्छा पैदा करेगा
1: तो
7: उसको खाने वाले का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और अपने खेत का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा
1: जी,
7: और खुद किसान का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल, तो ना सिर्फ बतौर उत्पादक बल्कि अगर उपभोक्ता के नजरिए से भी हम देखें तो प्राकृतिक खेती जो है काफी महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से अब हमारे जो किसान है इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सुभाष जी ने एक नई दिशा जो है हमारे देश के किसानों को दी है जिसमें लगातार वो एक ही ध्येय के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती जो हमें जीवन से जोड़ रही है, और इसी के लिए अब हमारे जो बाकी किसान भी हैं प्रयास कर रहे हैं।
8: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
9: किसान साथियों, जानकारियों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, लेकिन यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM पर, छबुआ की आवाज़।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आपने अभी एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। इसी के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: ये जो नेचुरल फार्मिंग है, इसके लिए भारत सरकार पूरा कोशिश कर रहे हैं जो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, किसान भाइयों को बहनों को सपोर्ट करने के लिए। तो हमारे जो है BPKP नाम पे एक कंपोनेंट है जिसमें नेचुरल फार्मिंग को हम बढ़ावा दे रहे हैं
2: जी।
1: जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है इसके नाम पे जाना जाता है, जिसमें हम डिफरेंट एरियाज में उसको सपोर्ट कर रहे हैं
2: जी।
1: तो 5 कंपोनेंट उसमें है, जैसे कि ये क्लस्टर फॉर्मेशन के साथ साथ भी कैपेसिटी बिल्डिंग का भी बहुत जरूरत है, इसलिए क्लस्टर फॉर्मेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग जो किसान के साथ ये है उसके लिए एक बड़ा कंपोनेंट है। उसके साथ साथ हमारे जो मैन पावर डेवलपमेंट, बिकॉज इस सिस्टम में मैन पावर डेवलप करके उनको फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करने में मदद करेंगे
2: जी,
1: और पूरा सिस्टम को आगे ले जाने में ये है, इसलिए उसके लिए एक कंपोनेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट को हम देते हैं इसमें असिस्टेंस। और उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है ये बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मार्केट में
2: जी।
1: तो एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी असिस्टेंस दिया जाता है। उसके साथ साथ जो किसान जो अपने खेती में सारे इनपुट बनाते हैं और उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए एक डायरेक्ट डिबिटिव प्रोसीजर में उनको भी डायरेक्टली फार्मर्स को भी एक इसमें इंसेंटिव्स है। उसके साथ साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है ये भी कंपोनेंट, बिकॉज जब मार्केटिंग करने से पहले प्रोसेसिंग करना है, देन वैल्यू एडिशन करना है और उसके साथ साथ मार्केट लिंकेज करना है, उसके लिए भी एक कंपोनेंट है। ये जो 5 कंपोनेंट है जिसमें हम ये प्राकृतिक जो खेती है उसको आगे लेने के लिए डिफरेंट अमाउंट्स हम सहायता देते हैं, सो ताकि जो हमारे किसान भाइयों हैं उसको आगे ले जाए काफी मात्रा में। ये हमारे बेसिक का जो स्कीम है BPKP का,
2: और ये उद्देश्य भी देखिए रहेगा कि किस तरीके से जो किसान है प्राकृतिक खेती को आगे ले जाते हैं। ना सिर्फ अगर हम बात करते हैं अभी हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि राजेश्वर हमें बता रहे थे क्या स्थिति बनी हुई है इस बारे में, राजेश्वर जी कुछ और जानकारी आपसे मैं लेना चाहूंगा। जैसा आपने बताया कि जाहिर तौर पर चुनौतियां हमारे सामने थी, लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए तो अब किसान का जो रुझान है वो जाहिर तौर पर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ा है।
3: देखिए, आज सबसे बड़ा जो सफलता का इसका कारण है वो किसान के खेत पे मॉडल है
2: जी।
3: जो किसान के खेत पे मॉडल है उससे जो इसकी आउटस्केलिंग हो रही है वो उसमें एक जुनून किसान को बन रहा है। आप ये मान के चलिए कि एप्पल का किसान जहां 12 स्प्रे करता था, आज वो गोबर और गोमूत्र से बने हुए सारे आदान प्रयोग कर रहा है, तो ये अद्भुत इम्पैक्ट उसके एरिया में दे रहा है। तो इस ढंग से आज हिमाचल प्रदेश में 154,000 किसानों ने प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दी
2: जी। बिल्कुल, एक बड़ा आंकड़ा आपने यहाँ पर दिया कि किस तरीके से, देखिए जो किसान है उनका रुझान सीधे तौर पर नजर आता है, लेकिन जब किसान का रुझान भी है और सरकार की तरफ से हम कह सकते हैं कि पूरे योजनाबद्ध तरीके से हर कदम किसान के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसे में जानकारी और जो है वो कहां से हासिल कर सकते हैं इस बारे में डॉक्टर नीलम आपसे हम जानना चाहेंगे क्या क्या माध्यम किसान के लिए कि वो और ज्यादा जानकारी जो है प्राकृतिक खेती की ले सकें।
4: देखिए कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को हम इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि किसानों की लागत को, जो खेती की लागत है उसको कम कर सकें, और अगर हम खेती की लागत को कम कर सकेंगे तो जाहिर सी बात है जो उनको मुनाफा होगा खेती से वो बढ़ेगा। और ये जो प्राकृतिक खेती है ये हमारे पिछले 1.5 साल में अपने देश में 6.5 लाख हेक्टेयर ऑलरेडी इसके अंदर आ गई और किसान इसको अपना रहे हैं, और मेरे ख्याल से पिछले दशकों में ये पहला मूवमेंट है जो किसानों ने अपने आप से शुरू किया है। अब ये है कि इसके जानकारी कैसे मिले, हम नीति आयोग में 2018 से इस पे लगातार काम कर रहे हैं, और 30 नवंबर को, अभी हाल में 30 नवंबर को एक नीति आयोग ने एक बहुत बड़ी वेबसाइट प्राकृतिक खेती पर लॉन्च करी है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है
2: जी।
4: तो जो भी किसान भाई हैं इसको अपने मोबाइल पे इसको अगर इस पे जाएंगे इस वेबसाइट पर प्राकृतिक खेती पर, तो आपको प्राकृतिक खेती क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, इसमें जो इनपुट या आदान प्रयोग होते हैं उसकी बनाने की विधि क्या है, उसका यूट्यूब वीडियो, आपके जैसे डॉक्टर श्विन ने बताया कि जो हमारे पूरे प्रदेश में जो नोडल ऑफिसर हैं हर प्रदेश के, उनके पता, उनके टेलीफोन नंबर्स, और इसके अलावा पूरी दुनिया में कहां कहां प्राकृतिक खेती को विभिन्न नामों से, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे एफएओ हो, जो पूरी दुनिया में हो रहा है, उन पे क्या सक्सेस है, और कुछ किसानों की सफलता की कहानियां भी कि उसमें टेलीफोन नंबर के साथ दी हुई है। तो किसान भाई उससे उस पे पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं और देख सकते हैं, और उन सब के नंबर भी हैं, तो टेलीफोन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसीलिए उनको और ज्यादा इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारा मटेरियल प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ पूरा, एक से लेके उसके उसकी सफलता की कहानी से लेकर कंपोनेंट से लेके गवर्नमेंट स्कीम से लेके जो हमारी मिनिस्ट्री की स्कीम्स है, जो सपोर्ट प्रोसेस है, सब कुछ एक साथ उपलब्ध है। किसान भाई जरूर उसको देखे और उसको देख के पढ़े और उसको समझ करके कोशिश करके इसको अपनाएं और अपनी खेती की लागत को कम करें।
2: बिल्कुल, और देखिए कैसे ये खेती है एक ऐसी जो आपको जीवन से जोड़ेगी, और हर एक इंसान आज के समय में प्रकृति से जुड़ना चाहता है, तो ऐसे में और भी आवश्यक हो जाता है। साथ ही यहाँ राजकुमार जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक खेती की अगर बात की जाए तो माना जाता है कि अगर आपके पास एक भी पशु है तो उसके जरिए भी आप इसकी बेहतर ढंग से शुरुआत कर सकते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
5: जी मुकुल जी, आपने सही सुना है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि मैं रासायनिक खेती 12 वर्ष की, 3 वर्ष मैंने जैविक भी की, लेकिन जो मुझे एक स्तंभ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था, जिसकी मैं इच्छा लेके आया था। लेकिन सुभाष पालेकर पद्धति में जब मैंने 2004 से ये आरंभ की, लगभग मुझे 15 वर्ष हो चुके हैं, और मैंने अपने खेत में एक गाय से ही ये खेती आरंभ की थी
2: जी।
5: और एक गाय से तो मेरी खेती क्या पड़ोसी की भी खेती हो सकती थी
2: जी,
5: क्योंकि उस समय मैं 12 एकड़ में ये कृषि कर चुका हूँ, मेरा पूरा फार्म 12 एकड़ से है, और मैं उसमें तलन भी लेता हूँ, तिलन भी लेता हूँ
2: जी,
5: अनाज की फसलें भी लेता हूँ,
2: अलग अलग फसलें,
5: और सभी प्रकार की मौसमी सब्जियां लेता हूँ, और उनका मैं आपको एक आश्वस्त करता हूँ, रासायनिक खेती से कोई किसी भी फसल में हमारा उत्पादन कम नहीं है, और उत्पादन ही नहीं, जिसकी मैं चर्चा शायद कुछ हमारे से रह जाती है कभी कभी, क्योंकि हम गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं कर सकते
2: जी।
5: हमारे उत्पाद में इतनी गुणवत्ता होती है कि हमारे उपभोक्ता उसको लेने के लिए एक उत्साह एक उनके अंदर रहती है, पहले मुझे आर्य जी से लेनी है।
2: यानी उपभोक्ता को सबसे पहले देखिए जो महत्वपूर्ण है वो गुणवत्ता, और वही गुणवत्ता जो है आप शायद सोच भी नहीं पाते होंगे कि इतना गुणवत्ता युक्त उत्पाद जो है वो आपको कहीं बाजार में मिल सकता है, जो कि हमारी प्राकृतिक खेती से निकलकर आ रहा है और उसकी मांग लगातार बढ़ भी रही है। यहां एक बार फिर से आइए, रुक कर लेते हैं डॉक्टर टी विजय कुमार जी का, आंध्र प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे आपसे, आंध्र प्रदेश की भी अगर बात की जाए, जैसा आपने बताया कि एक बड़ी संख्या में जो किसान है वो जुड़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की बात की जाए, केंद्र सरकार की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो फलीभूत होते अब नजर आ रहे हैं। आने वाले समय को अगर देखा जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं प्राकृतिक खेती के लिए?
6: हमारे राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव में ये काम चलना चाहिए और हर किसान को इस प्राकृतिक खेती से जोड़ना चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि अगले साल ही हर गांव में प्रेजेंस होना चाहिए, और ये लेकिन किसान को समय लगता है। अभी जो आपके किसान भाई वहां पर बैठे हैं बता रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश में हमने क्या किया है, ये किसान ही ट्रेनर, किसान शिक्षक
2: जी,
6: कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बोलते हैं, अभी लगभग 6,000 ऐसे मॉडल फार्मर्स हैं जो एक एक व्यक्ति 100 किसानों के साथ काम करेगा, और इस साल हमने 4,000 लोगों को और जोड़ा है इसमें, तो हर साल बेस्ट फार्मर्स को ट्रेनर्स के रूप में लेकर ये बदलाव जो है ला रहे हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है महिला संगठनों का
2: जी,
6: तो महिला संगठन जो हैं, लगभग हमारे राज्य में 80 लाख महिलाएं जो हैं ये संगठनों में जुड़े हैं
2: जी,
6: तो जो ग्रुप लीडर्स हैं उनके पास जाते हैं और उनको पहले मोटिवेट करते हैं, तो जब एक ग्रुप में ग्रुप लीडर बदलते हैं, वो 10 मेंबर का जो ग्रुप है वो आपस में सीखता है, और सारे इनपुट्स गांव में बनाने पड़ते हैं, तो महिलाएं जो है खुद ये बायोलॉजिकल इनपुट्स है, घन जीवामृत है या बीजामृत है, ये सब खुद बना लेते हैं। तो हमारे जो शक्ति है गांव में, महिलाओं की शक्ति है, इसको आगे ले जा रही है। और किसान शिक्षक, तो हमारे ख्याल में किसान ही सबसे बेहतर ट्रेनर्स हैं और साइंटिस्ट भी हैं।
2: जी बिल्कुल, एक मजबूत कड़ी के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पर किसान को, जैसा आपने कहा कि ना सिर्फ किसान के लिए बल्कि किसान के द्वारा ही ये सारी जानकारी जो है एक किसान से दूसरे किसान पर पहुंचती है। प्रतिशील किसान है करमसेन जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करमसेन जी, जानना चाहेंगे आपसे, आपने किस तरह का अंतर देखा? पहले अगर हम रासायनिक खेती की बात करें या जैविक खेती भी करते हैं किसान, अब जब हम प्राकृतिक खेती को देखते हैं कितना लाभ इसमें आपको नजर आता है?
7: 2011 में पालनपुर यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद एकदम, उससे पहले मैं केमिकल खेती करता था
2: जी।
7: तो अपने पद्मश्री सुभाष पालेकर जी के सानिध्य में ट्रेनिंग प्राप्त की थी पालनपुर यूनिवर्सिटी में जी। वो ट्रेनिंग जैसे घर आते ही हमने एकदम अडॉप्ट कर लिया था इसको।

0: बिल्कुल, यानी तो हर एक फसल में हम सक्षम हैं प्राकृतिक रूप से इसकी खेती करने में भी। और यहाँ फूल कुमार जी आपसे मैं बेहतर ढंग से जानना चाहूंगा कि आप खेती करते हैं, कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, और क्या कुछ ऐसा भी है कि कोई ऐसी विशेष फसल जिसकी खेती ना कर सकते हो प्राकृतिक रूप से?
1: देखिए, ये प्राकृतिक खेती है जी, इसमें हर फसल कर सकते हैं
0: जी,
1: और एक नहीं, एक खेत में एक फसल नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक खेती में एक फसल में कम से कम 5, 10, 15, 20 तरह की
0: जी।
1: अभी ये बात थोड़ी बताने में किसानों को शायद ऐसी लगेगी कि ये संभव नहीं है, पर जब हम खेत देखते हैं, मैं अभी मेरे खेत में एक एकड़ में 25 तरह की सब्जियां लगी हुई हैं।
0: 25 तरह की सब्जियां?
1: हाँ जी,
0: जी।
1: और जो हमने सुभाष पालेकर जी की पद्धति से जो जंगल मॉडल लगाए हैं, जो पंचक्षेत्रीय बागवानी लगाई है, उसमें 5 से 7 तरह के पेड़ नीचे उसमें मसाले, हल्दी, हरी मिर्च, मतलब छांव में पैदावार देने वाली। और उनका मेथड क्या होता है कि उस खेत के किसी भी पेड़ का कोई भी पत्ता, फल और सब्जी और मसाला निकाल के जो भी फसल अवशेष है, केवल आपने वही फसल अवशेष वहीं पे डालना है। और गाय आधारित जो भी हमारा जीवामृत, गंजीवामृत वो आपने खेत में देना है, बाकी आपने कुछ नहीं करना, सब प्रकृति पे छोड़ देना है
0: जी।
1: प्रकृति ही सब करती है, नीचे उसमें केचुए अपने आप काम करते हैं, सूक्ष्म जीवाणु काम करते हैं। हमने जो केमिकल डाल के हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं को कम कर दिया था, उनको जीवामृत पूरा करेगा, और हमने केवल उन सूक्ष्म जीवाणुओं को नेचुरल वातावरण देना है। प्राकृतिक वातावरण वहां पे जब हम दे देंगे तो वो अपना काम प्रकृति अपने आप शुरू कर देगी
0: जी।
1: जब ये देखते हैं हम मॉडल किसानों के खेतों पर, तो विश्वास होता है। ऐसे बताने से कि एक खेत में इतनी फसल कैसे ली जा सकती है, किसान खेतों में देखेंगे ना, उससे उनको 100% विश्वास हो जाता है।
0: तो यानी एकदम से भले ही यकीन ना हो,
1: जरूर जाना चाहिए खेतों पे
0: जी। बिल्कुल, ये काफी जरूरी। देखिए, एकदम से हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। और इस सच को आप, हम अगर कहें तो आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हमारे जो किसान है वो सफल रूप से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और आने वाले समय को अगर देखा जाए तो इसमें भी किस तरीके से एक नया मोड़ जो है, नया रूप जो है, वो नजर आएगा इस नए भारत में। ये देखना जरूर काबिल तारीफ होगा, हमारे जो किसान है वो बखूबी इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आने वाली परिस्थितियां जो होंगी उनमें कैसे ये सफल हो पाएगी, इस बारे में भी हम हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ चर्चा करेंगे।
2: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપડી સમસ્યા અને આપડો સમાધાન, આપુ રોજ કરહુ વાતેં ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
3: प्राकृतिक खेती में हम लोग गाय आधारित खेती करते हैं, जो गाय का गोबर गोमूत्र से खेती करते हैं, और इतना बढ़िया मुनाफा और इतना कम खर्च में हमारा खेती होता है, और साथ साथ में प्रकृति के साथ में रहने का, मतलब हमारे खेत के अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, अलसिया होते हैं, और उसकी वजह से खेती में कोई भी टाइप के बाहर के पदार्थ नहीं डाल के सिर्फ प्रकृति से ही साथ में लेके हम खेती करते हैं, और बहुत बढ़िया उसके रिजल्ट मिलते हैं हमको।
0: बिल्कुल, बेहतर परिणाम जो है देखिए वो मिलते हैं, ये मानना यहाँ पर हितेश जी का, और यही बेहतर परिणाम है जो कि एक किसान को लगातार आगे प्रोत्साहित करते हैं, किसान आगे बढ़ते हैं। लेकिन खासतौर से अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए, इस बारे में डॉक्टर नीलम आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे देश को अगर हम देखते हैं तो कहाँ कहाँ पर अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें इसकी शुरुआत हो चुकी है और बड़े पैमाने पर किसान इससे जुड़े भी हैं?
4: देखिए, ऐसा है कि कुछ के तो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन एक मैं बात बताना चाहूंगी कि देश के हर एक राज्य में अब किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, और आपने जैसे देखा कि अपनी वो लागत को कम कर रहे हैं और मुनाफा बढ़ा रहे हैं। और अगर हम अभी देखें, मुख्यतः हमारे पास 11 राज्यों का हमारे पास आंकड़ा है जो 6.5 लाख हेक्टेयर है, और इसकी शुरुआत हमारे कर्नाटक से हुई थी, लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश बहुत आगे आए, जैसा कि आप विजय कुमार जी बता रहे थे, उनके किसान आगे आए, और गुजरात है, अब इसके बाद आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश है। तो अगर आप देखते हैं कि हमारे चाहे दक्षिण भारत से लेके पर्वतीय राज्य तक किसानों ने इससे फायदा लिया है और इससे फायदा ले रहे हैं। और आपने देखा पूरे कार्यक्रम में किसानों ने क्या बताया कि जो उनके पास चीजें उपलब्ध हैं अपने गाँव में, घर में, उसी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ना तो उनको बाजार जाना पड़ रहा है, ना अलग से पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो संसाधन हमारे संरक्षित हो रहे हैं, इन्वायरमेंट हमारा, पर्यावरण भी संरक्षित हो रहा है, लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है और जो हमारा एक उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री का

0: कि किसानों की आय को दोगुनी करना। तो हमने नीति आयोग में 114 किसानों की सफलता की कहानियों का एक संग्रह किया और वो 14 राज्यों से थी। मैं आपको बताऊं, दोगुनी नहीं, हमारे किसान भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं और बाकी भी हमसे बिल्कुल जरूर हमारे साथ वो मेरी हमें हाँ मिलाएंगे कि दोगुनी नहीं, हम 3 गुनी 4 गुनी तक अपनी इनकम हम कर पा रहे हैं प्राकृतिक खेती से। तो हमारे किसान भाई अगर इसको जुड़कर सीख लें पहले कि हमारे दूसरे भाई कैसे कर रहे हैं, तो उनको जरूर इसमें फायदा मिलेगा और अपने जो और राज्यों के हमारे किसान हैं उसी तरह उसके साथ वो जुड़ सकते हैं
1: जी।
0: और हमारे मंत्रालय इसमें मदद कर रहा है, नीति आयोग तो 2018 से लगातार काम कर रहा है
1: जी।
0: और जैसा कि मैंने बताया था, हमने जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक हैं उनकी क्या सोच है, उनके हमने लेक्चर कराए, उनको हमने नीति आयोग में आमंत्रण दिया और अपने देश के भी सारे जितने हमारे वैज्ञानिक थे या एक्सपर्ट थे उनके साथ मीटिंग कराई। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारे देश के लिए जो हमारी परिस्थितियां अभी हैं उसमें प्राकृतिक खेती ही एक इस वक्त सबसे अच्छा विकल्प है, जिससे हम सबको एक साथ लेके चल सकते हैं, चाहे नेचर हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारी पृथ्वी हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, किसानों का स्वास्थ्य हो, या हम दुनिया को भी एक अच्छा एक हम वर्ल्ड लीडर बन के आ सकते हैं। और अभी हम वर्ल्ड लीडर हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती में अभी हमारे देश में है, तो हमारे लिए गर्व का विषय है और इन सबको हमें मिल करके इस प्रयास को आगे बढ़ाना है
1: जी। बिल्कुल, इस प्रयास को लगातार हम आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद हम यही करते हैं जो किसान हैं और भी ज्यादा बड़े क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करेंगे। लेकिन देखिए, इस वर्ष को हम आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में भी मना रहे हैं और ऐसे में यहाँ राजकुमार जी, अगर हम बीजोमृत की बात करें, जीवोमृत की बात करें, ये कितने कारगर हैं प्राकृतिक खेती में?
2: मुकुल जी, प्राकृतिक कृषि में जैसे आपने पूछा बीजोमृत का क्या उपयोग है, जब हम बीजामृत लगाते हैं तो हम फसल को इंश्योर कर देते हैं, 90% बीमारियों से बचने का एक ही हमारे पास रास्ता है। और मैं तो ये कहता हूँ, जैसे हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं उससे हम अपने कुछ किसान इसको खाद का रूप मानते हैं
1: जी।
2: मैं ऐसा नहीं मानता, मैं इसको एज ए कल्चर मानता हूँ, क्योंकि जब हम कल्चर से हम उन बैक्टीरियों की संख्या बढ़ाते हैं, क्योंकि 1 ग्राम में 300 करोड़ बैक्टीरिया हैं और जब हम एक जीवामृत का ड्राम छोड़ते हैं तो लगभग 30 लाख करोड़ बैक्टीरिया उसमें छोड़ते हैं और हर 20 सेकंड में अपनी अलग संख्या डबल संख्या कर लेते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमें उन जीवों को, जिनको हम जब रासायनिक खेती करते थे पता नहीं था हमें कि हम उनको कितनी दुर्दशा से मारते थे
1: जी।
2: और आज हम उनका पोषण कर रहे हैं और वो हम उनका पोषण नहीं करें बल्कि वो हमारा पोषण कर रहे हैं।
1: यहाँ फूलकुमार जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, जो हमारे किसान हैं वो जाहिर तौर पर पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या प्राकृतिक खेती में भी किसी तरह की चुनौतियां आपके सामने आती हैं जो आपको लगता है कि निकट भविष्य में उनका कुछ समाधान होना चाहिए तो और बेहतर ढंग से और ज्यादा किसान जो है इससे जुड़ सकेंगे?
3: देखिए, किसान को इसमें समस्या तब तक आती है जब तक वो सही से सीख के नहीं करता और बताए गए सभी तरीके अपने खेत में वो मतलब इस्तेमाल नहीं करता
1: जी।
3: जब वो सही से सीख लेता है और सही से खेत में अपने पे सारे सारे तरीके अपनाता है तो उसको किसी भी प्रकार की कुछ भी समस्या नहीं आती। ये सब काम प्रकृति करती है अपने आप
1: जी।
3: किसान ने सिर्फ उसको सही से जो मतलब गलत काम जो किए हैं हमने, ये सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने वाला, आग लगाने वाला, या मतलब अपना बायोमास को बाहर चबट्ठों में या कहीं भी भेजने वाला, जब हम उसको सही से समझ लेंगे तो हम अपने खेत में जैसे नीलम जी ने बताया हमारी आमदनी दो तीन गुना नहीं, हम कई गुना, हमने सोचा नहीं होगा, किसान ने इतना कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी इनकम भी हम खेत से ले सकते हैं,
1: दिगनी चौगुनी आमदनी हो सकती है।
3: बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, बस किसान को सही से सीख के करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, देखिए बतौर किसान इनका खुद का अनुभव रहा है कि सिर्फ हमें एक कदम आगे बढ़ाना होगा और यहाँ पर कोई इस तरह की आपके लिए मुश्किल नहीं है कि एक नई चीज है, कोई नई तकनीक है, बल्कि एक ऐसी पद्धति है जिस पर लगातार काम होता रहा है, अब आवश्यकता है इस पद्धति को बढ़ावा देने की, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। आखिर में यहाँ स्वाइन साहब, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा, आपने बताया कि किस तरीके से जो बदलाव है वो प्राकृतिक खेती के तहत हम देख पाएंगे अपने कृषि क्षेत्र में, लेकिन किसानों की मदद की बात की जाए, क्योंकि हमने देखा कि सरकार ने तो ना सिर्फ किसान कल्याण की बात की है साथ में कृषि का विकास तो होगा ही, किसान का कल्याण भी होगा, प्राकृतिक खेती से ये कितना सार्थक आपको नजर आता है?
4: डेफिनेटली ये जो प्राकृतिक खेती है, जैसे कि हमारे सारे किसान भाइयों ने बताए हैं, एक तो है कि कॉस्ट कम हो रहा है, उनको इनकम में वृद्धि हो रहा है, प्रोडक्टिविटी वृद्धि हो रहा है, उसके साथ साथ एक सर्टेनली जो इकोसिस्टम है हमारे वो भी एकदम सस्टेनेबल वे में आ रहा है। और इसमें जो एग्रीकल्चर जो आज आप देख रहे होंगे
1: जी,
4: कि पूरा दुनिया भर में एक चर्चा हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह है उसको कम करना जरूरत है। इसमें सारे बहुत सारे कंट्रीज इसमें कमिट भी किए हैं, भारत भी इसमें कमिट किए हैं जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, और ये COP26 में भी ये चर्चा हुआ है जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि प्राकृतिक खेती के बारे में एम्फसिस दिए हैं वेरी क्लियरली। तो आगे का रास्ता काफी उसका बहुत भविष्य उज्जवल है। इसमें भारत सरकार भी एकदम स्ट्रैटेजी बनाए, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी भी बनाए कि इसको कैसे आगे लेके जाए। जैसे कि है हम लोगों का जो बेसिक फोकस एम्फसिस है पॉलिसी है, इसमें हम जैसे एरिया में हम चल रहे हैं, जैसे ड्राईलैंड एरिया है, रेनफेड एरिया है, हिली एरिया है, ट्राइबल एरियाज है, जहाँ पे हम उसको अच्छा से अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि उसको करने का
1: जी।
4: उसके साथ साथ एक और हमने एम्फसिस किया है कि जैसे FPO स्ट्रैटेजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्ट्रैटेजी, जो टुगेदर, क्योंकि आत्मनिर्भर होने के लिए अपने खेती में सारी चीजें प्रोड्यूस करना, इनपुट तैयार करना है, तो इसलिए एक विलेज लेवल स्ट्रैटेजी भी तैयार हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक स्ट्रैटेजी भी तैयार हुआ
1: जी।
4: जिसमें ये जो SHG वगैरह के बाद हमने एक चैंपियन फार्मर का भी जिक्र किया है, जैसे कि वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में चैंपियन फार्मर भी होगा, और जैसे कि विलेज लेवल अगर देखेंगे वहां पे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होगा
1: जी।
4: तो इसलिए कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो है वो फिर जो पंचायत लेवल में वो लोकल रिसोर्स पर्सन होंगे
1: जी।
4: तो ये तीन लेवल ऑफ जो है, चैंपियन फार्मर, लोकल रिसोर्स पर्सन पंचायत लेवल में, और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ये जो मैन पावर का ये है, इसमें हम जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जैसे हमारा फुलकुमार साहब बोले हैं कि जब उसको पता लग जाएगा इसको बहुत आगे लेके जाएगा, बिकॉज इनकम वृद्धि काफी ये है
1: जी।
4: तो उसको एक स्ट्रैटेजी बना के हमने चला है ताकि ये जो है हमारा सारी चीजें वो आराम से हो जाए। और उसके साथ साथ हमने एक स्ट्रैटेजी भी बना रहे कन्वर्जेंस
1: जी,
4: कि बहुत सारी चीजें जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके साथ इसके कन्वर्जेंस है, FPO स्कीम है उसके साथ कन्वर्जेंस है,
1: उनका सामंजस्य इसमें नजर आ सके,
4: नजर आता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें भी हम उसको डोकटेल कर रहे हैं ताकि ये चीजें हमारे कन्वर्जेंस में आ जाए। तो भारत सरकार तरफ से भी काफी कन्वर्जेंस इसमें दिया गया है
1: जी,
4: स्टेट के तरफ से भी इसमें इफेक्ट है। तो हमें तो पूरा इसका भविष्य बहुत उज्जवल लग रहा है, जबकि ये जो हमारे आप जैसे कि जानते हैं कि जो मिट्टी का जो जो सॉइल का जो कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन है, जो नेचर का है, आज हम देख रहे हैं कि जहां पे प्राकृतिक खेती होता है वहां पे बर्ड्स, जहां पे केमिकल खेती में नहीं नजर आते थे, आज प्राकृतिक खेती में भी हम देख रहे हैं कि बर्ड्स वापस आ रहे हैं वहां पे, जो नेचुरल इकोसिस्टम एक रिवोल्ट हो रहा है।
1: ये वही बदलाव है जिसकी आज के समय में आवश्यकता थी, और वही बदलाव देखिए हमारे किसानों की मेहनत के बलबूते, हम कह सकते हैं प्राकृतिक खेती के बलबूते, वो नजर आ रहा है। आज के समय में अगर हम बात करते हैं, जलवायु की बात की जाए, जल की बात करें, जमीन की बात करें, ये तीनों कहीं ना कहीं जुड़ते हैं हमारे किसान के जीवन से, और उसी जीवन से जुड़ती है हमारी प्राकृतिक खेती, जिसके लिए आवश्यक है कि हमारे किसान इसको जाने, समझें और फिर इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं, जिससे आत्मनिर्भरता भी इस देश में आ सके और इस देश का किसान और भी मजबूत हो सके। तो आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में जो हमारे विशेषज्ञ रहे, उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी इस बारे में दी कैसे प्राकृतिक खेती इस देश को आगे बढ़ा रही है और इस देश की कृषि को एक नया रूप दे रही है। नए भारत की नई कृषि जो है प्राकृतिक खेती के रूप में हमें आने वाले समय में नजर आ सकती है। फिलहाल आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इतनी सारी जानकारियां उनको दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार,
0: नमस्कार,
2: धन्यवाद।
1: तो जाना आपने भी, प्राकृतिक खेती आखिर क्यों एक मूल मंत्र अब नजर आ रहा है, एक कारगर विकल्प के तौर पर हमें नजर आ रही है इस देश की कृषि को बेहतर बनाने के लिए, और उसके साथ साथ
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
6: पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था।

संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहां पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा।

विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। जीवन से जोड़ती प्रकृति खेती। जी हाँ किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना, कैसे हमारी जो प्रकृतिक कृषि है वो कैसे हमें जीवन से जोड़ती है। जो प्रकृतिक खेती है ना केवल हमारे स्वास्थ्य को बल्कि हमारे पशुओं के, हमारी जमीन के और हमारे जल स्रोतों को भी शुद्ध करती है। किसान साथियों, हम जितना प्राकृतिक खेती करेंगे उतना ही हम हमारी मृदा को, हमारे वातावरण को और हमारे जल स्रोतों को हम बचाए रखेंगे। किसान साथियों, आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिया होगा। साथ ही हम ये भी आशा करते हैं कि आप में से काफी किसान जो हैं, जो अभी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और जो किसान अभी जो रासायनिकों खेती में ज़्यादा रासायनिक खेती ज़्यादा कर रहे हैं, वो किसान भी धीरे धीरे अपना रुख प्राकृतिक खेती की ओर करेंगे। साथ ही किसान साथियों, हमारा जो झाबुआ का केविकी है, इसके माध्यम से भी आप बहुत सी ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत से जो खाद है जो हमारे पशुओं से हम बना सकते हैं, पशु मूत्र, पशु मल से जो खाद बनाए जा सकते हैं, उनकी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। यह पूर्णतः मुफ्त ट्रेनिंग है। इसके लिए आपको सिर्फ केविकी में आकर यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो किसान साथियों, आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिया है और अपने खेतों में इसका प्रयोग भी करेंगे। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांट्या भील 90.8 एफएम के साथ, झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। आज के कलाकार के बेहद बेहद इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एक नए खूबसूरत एपिसोड में आप सभी दोस्तों आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान हैं अर्पिता चौधरी जी, फार ईस्ट से, तिनसुकिया से। अर्पिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू अवर प्रोग्राम। हमारे सुनने वालों के लिए प्लीज अपना परिचय दीजिए ना, आप कौन हैं, क्या करते हैं?
1: मैं तिनसुकिया असम से हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ
0: जी। और
1: गाना उना सीखा है कुछ कुछ, ट्राई भी किया है, पहले पब्लिक परफॉर्मेंस भी किया हुआ है, लेकिन शादी के बाद क्या होता है हम लोगों का,
0: अरे वही शादी के बाद आप हस्बैंड को डांटते हो, बच्चों को डांटते हो?
1: ना ना ना, नेवर। हस्बैंड भी म्यूजिशियन ही है, ड्राम प्लेयर है।
0: ओ,
1: तो
0: अरे अमेजिंग अमेजिंग, सो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल म्यूजिकल फैमिली। तो फिर तो मजा आता होगा, अच्छा संगीत में बैठक जमती होगी घर में।
1: हाँ हाँ, संगीत का महफिल।

0: बैठता है, माहौल भी म्यूजिक का ही
1: हाँ
0: है।
1: तो यही तो पूछ रहा था ना मैं आपसे। देखिए इतना तो कुछ करती हैं आप, और पिताजी फिर कहती हैं कुछ नहीं करते, क्या बात कर रहे हो।
0: वही शौक से कुछ तो गाती हूँ,
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: वही।
1: तो दोस्तों आपने सुना, अर्पिता जी एक म्यूजिक फैमिली को चलाती हैं, एक म्यूजिक फैमिली मेकर हैं। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को उन्हीं के गाए हुए इस गीत से।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा स्टार्ट और बहुत ही प्यारी गायकी। अर्पिता जी, आप जब छोटे थे तो बचपन में क्या बनना चाहते थे आप?
1: वैसे तो स्कूल टीचर इज अवर रोल मॉडल नो, तो बहुत मन में इच्छा था कि टीचर बनूं। वही
0: ओके। तो कोई ना कोई तो आपके फेवरेट टीचर होंगे उस जमाने में, जिनको देखकर आपको लगा होगा कि मुझे टीचर बनना चाहिए, कौन थे वो?
1: बहुत सारे स्कूल टाइम में बहुत सारे टीचर्स थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं हम लोगों को। करते थे
0: जी। एक दो टीचर्स का नाम तो लीजिए।
1: हम लोगों का जो थे गोपाल दुनी, हम लोग बोलते थे
0: जी। ओके। तो दोस्तों आपने सुना, अर्पिता जी बचपन में टीचर बनना चाहती थी और बहुत सारे टीचर्स से वो इन्फ्लुएंस्ड भी थी। तो अगला जो गीत है, अगला जो सॉन्ग है अर्पिता जी का, वो हम अर्पिता जी के टीचर्स को डेडिकेट कर रहे हैं। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: बहुत बढ़िया। अर्पिता जी, बचपन की बात हो रही है, टीचर्स की बात हो रही है, तो जब आप स्कूल में थे तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था?
1: एसएसटी, सोशल स्टडीज।
0: सोशल स्टडीज, एसएसटीज।
1: सोशल स्टडीज,
0: बहुत बढ़िया। तो सोशल स्टडीज में भी कोई खास चीज थी जो आपको पसंद आती थी, जिसकी वजह से सोशल स्टडीज आपका सब्जेक्ट फेवरेट हुआ?
1: बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स थे ना, एडिट थे तब।
0: जी,
1: पढ़ने में इंटरेस्ट लगता था, बोरिंग चैप्टर नहीं था कोई
0: ओके। तो
1: भी।
0: कोई एक चैप्टर तो बताइए ना, कोई एक टॉपिक तो बताइए ना।
1: अभी याद नहीं है,
0: ओके जी,
1: प्रॉपरली याद नहीं है। हाँ
0: ठीक है, कोई बात नहीं अर्पिता जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, अर्पिता जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत बढ़िया अर्पिता जी, आपको क्या लगता है, आपने तो दुनिया देखी है, एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव है आपको, अगले 5 सालों में दुनिया कैसी दिखाई देने वाली है, क्या अंदाजा है आपका?
1: टेक्निकली बहुत इम्प्रूव हो चुका है और भी होंगे शायद,
0: जी
1: होता ही रहेगा। वही आजकल का दुनिया में मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोगों का टाइम में तो इतना नहीं था, शायद और भी आगे बढ़े।
0: ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। टेक्निकली अर्पिता जी का मानना है कि दुनिया और आगे बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत अर्पिता जी का ही गाया हुआ।

0: थैंक यू।
1: बहुत बढ़िया अर्पिता जी, अगर आपके बारे में कोई किताब लिखी जाए तो मुझे बताइए ना कि उसका टाइटल क्या होना चाहिए, उसका शीर्षक क्या होना चाहिए?
2: म्यूजिकल जर्नी।
1: म्यूजिकल जर्नी, बहुत बढ़िया। दोस्तों,

अगर अर्पिता जी के ऊपर एक किताब लिखी जाएगी तो उसका टाइटल होगा म्यूजिकल जर्नी। बहुत खूब, द टाइटल इन इटसेल्फ इज वेरी म्यूजिकल। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक म्यूजिकल सॉन्ग, म्यूजिकल म्यूजिकल गीत, बहुत ही सुरीला, सुनते हैं अर्पिता जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत बढ़िया, बड़ी ही प्यारी गायकी। अब पिताजी, आपका पसंदीदा रंग क्या है? कलर कौन सा पसंद करती हैं आप? और वो रंग आपके बारे में क्या कहता है? आपको क्यों पसंद है वो रंग?
1: कोई भी सोबर सॉफ्ट कलर अच्छा लगता है, लेकिन व्हाइट, लाइट पिंक अच्छा लगता है। लाइट
0: क्यों?
1: शेड सोबर एंड सॉफ्ट लगते हैं,
0: ओके,
1: हार्श नहीं होता है।
0: हार्श नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने,
1: हाँ,
0: हार्श कलर्स पसंद नहीं आते हैं अर्पिता जी को। सॉफ्ट एंड सोबर कलर अर्पिता जी को पसंद है। बहुत खूब, बड़े ही प्यारे सॉफ्ट एंड सोबर गीतों की तरह। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: अर्पिता जी, इमेजिन कीजिए, फर्ज कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको किसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, ऐतिहासिक व्यक्ति के साथ बातचीत करने का मौका मिले, बैठ के कुछ कॉफी पीने का, चाय पीने का मौका मिले, तो आप किसके साथ बैठकर बातचीत करना चाहेंगी? कोई हिस्टोरिकल फिगर, हिस्ट्री में से कोई।
1: हम लोग एकदम छोटे से ही रविंद्र संगीत गाते हुए बड़े हुए हैं, बिकॉज वही तो है हम लोगों का रोल मॉडल इन एवरी बेंगोलीज, माने माइंड में जो है वो रविंद्रनाथ ही है।
0: बिल्कुल,
1: वही वो मिल जाते,
0: बहुत
1: देखने से ही
0: जी,
1: मन भर जाता।
0: क्या बात है, बड़ी ही प्यारी बात कही, बहुत एप्रोप्रिएट बात कही, बड़ी अच्छी चॉइस है आपकी, बहुत यूनिक। और मुझे सुनकर भी बहुत बहुत अच्छा लगा कि संगीत से संबंधित एक पर्सनालिटी और रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके साथ बैठकर आप चाय पीना चाहेंगी, आप उनके साथ बातचीत करना चाहेंगी, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में सुन रहा था, एक बहुत ही अमेजिंग बात मेरे को पता चली उससे। अब उसकी ऑथेंटिसिटी मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो व्यक्ति बता रहे थे वो खुद काफी ऑथेंटिक हैं। उन्होंने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई, बहुत छोटे में ही उन्होंने एजुकेशन, स्कूल जाना छोड़ दिया था, क्योंकि स्कूल के टीचर्स जो पढ़ा रहे थे उनको समझ नहीं आ रहा था, वो घर पे ही पढ़ते रहे, उनके फादर ने उनको अलाउ किया। उसके बाद बड़े होकर उन्होंने बंगला में एक कविता लिखी जिसका नाम था गीतांजलि, सभी को पता होगा। और लोगों ने उस पोयम को, उस कविता को पढ़कर कहा कि साहब आपको इंग्लिश में इसको लिखना चाहिए। उनको इंग्लिश नहीं आती थी और कभी वो स्कूल भी नहीं गए थे। उसके बाद 2 साल उन्होंने घर पर बैठ के इंग्लिश सीखी, इमेजिन कीजिए। और उसके बाद उसी गीतांजलि कविता को इंग्लिश में लिखा, उसको इंग्लैंड के एक पोएट ने, जो कि नोबेल प्राइज विजेता था, पढ़ा। और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की इंग्लिश में लिखी हुई गीतांजलि को प्रमोट किया, और उस कविता के ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और बहुत गर्व हुआ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अर्पिता जी का ही गाया हुआ।

0: असल में मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, तो ये आदत ही मुझे मार देती है। वो लोग समझते हैं कि आई एम वेरी प्राउड, वही बात है।
1: दोस्तों, आज हम लोग इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। अर्पिता जी ऐसा घमंडी नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है। वो अपने में रहना चाहती है, विचार करते रहना चाहती है, सोचते रहना चाहती है। इस चीज को अपने जहन से निकालिए। वो घमंडी नहीं है, वो प्राउडी नहीं है, वो एक अच्छी इंसान है। बहुत बढ़िया, चलिए इसी बात पर एक गीत हो जाए आप सभी लोगों को डेडिकेटेड।

0: बहुत सुंदर। अर्पिता जी, अगर आपको ईश्वर कहे कि चलिए आपकी मैं 3 इच्छाएं पूरी करता हूं, तो क्या 3 इच्छाएं मांगेंगी आप?
1: हम लोगों का वॉयस जो है, अपना वॉयस तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, वही बात मेरे साथ भी है। वॉयस थोड़ा स्वीट करते।
0: ओहो, क्या बात है, सो स्वीट। ओके ओके।
1: एक दो जो इच्छाएं है मन में वो 50% पूरी होने से भी चलेगा।
0: अच्छा, ओके।
1: है अपना अपना तो है कुछ अरमान दिलों में, वही सब।
0: नहीं,
1: और थर्ड, पीसफुल्ली रहना अच्छा लगता है।
0: पीसफुली रहना अच्छा लगता है आपको, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दोस्तों आपने सुना क्या 3 इच्छाएं हैं। सबसे प्यारी इच्छा तो यही है कि उनकी आवाज और मीठी हो जाए और स्वीट हो जाए, बड़ी ही प्यारी बात। तो चलिए, जब तक अर्पिता जी की आवाज और स्वीट होती है और हमें और स्वीट गाने मिलते हैं, तब तक जो भी हमारे पास अर्पिता जी के स्वीट स्वीट गाने हैं, हम उन्हीं को सुनते हैं अगले गीत में।

0: बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा गीत। अर्पिता जी, आज तक की डेट में आपको सबसे अच्छी तारीफ क्या मिली है, सबसे अच्छी एप्रिसिएशन क्या मिला है?
1: मिली है सबसे अच्छी मिली है एक छोटा सा 5 इयर्स 6 इयर्स का बच्चा, सब दीदी बोलते तो वो भी दीदी बोल दिया आंटी बोलने के बजाय, तो वही अच्छा लगा जो सोचा है इस टाइप में थिंकिंग उसका है, आंटी नहीं समझ के थोड़ा हट के सोचा है।
0: बहुत प्यारी बात, क्या बात कही आपने, देखिए ना दोस्तों कितनी प्यारी बात कही।
1: जी बच्चे का जहन में है
0: जी जी,
1: जो आंटी नहीं बोल के दीदी बोले।
0: वेरी नाइस, बहुत प्यारी बात दोस्तों, आपने सुना कितनी प्यारी बात छोटे से बच्चे ने करी। अर्पिता जी को सुनकर भी अच्छा लगा, हमें भी सुनकर अच्छा लगा कि आंटी बोलने के बजाय या कुछ और बोलने के बजाय, क्योंकि सब लोग उसको उनको दीदी बोल रहे थे तो उसने भी दीदी बोल दिया। वाओ, मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को एक्नॉलेज करना, रेस्पेक्ट करना, प्यार करना, उसको क्या कह के बुलाना से कोई मतलब नहीं है। हम देखिए ना, हम भगवान को भी तो तू कह के बुलाते हैं। कब हम बोलते हैं कि भगवान जी आप आ जाओ, भगवान जी आप खुश हो जाओ, आप कब बोलते हैं? हम तो भगवान को तू कह के बुलाते हैं कि तू ही है मेरा दाता, तू ही है मेरा रक्षक, तू बोलते हैं। हाउ क्यूट इज दैट, बहुत खूब, बहुत प्यारी बात। अर्पिता जी आगे बढ़ते हुए बड़ा ही प्यारा सा गीत हम उस बच्चे को डेडिकेट करते हैं।

0: अर्पिता जी, हमारे सुनने वालों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए क्या संदेश है आपका?
1: सुनते रहे, शांति मिलती है। गानों से व म्यूजिक से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है।
0: जी
1: अब सिर्फ जब खुशी में हो तब भी सुनते रहिए, जब दुख में हो तब भी सुनते रहिए, गाना सुनते रहिए।
0: बहुत खूब,
1: बस मैं यही बोलना चाहती हूँ।
0: बहुत खूब। दोस्तों, बिल्कुल जहीन से आ एक संदेश है अर्पिता जी का। दुख हो तभी भी गीत सुनिए, सुख हो तभी भी गीत सुनिए। यूं देखें तो अर्पिता जी संगीत को, म्यूजिक को भगवान के तुल्य मानती हैं, ईश्वर के तुल्य मानती हैं, क्योंकि हम ईश्वर को भी तो बोलते हैं ना कि सुख हो या दुख हो हमें उसको याद करते रहना चाहिए। उसी तरीके से संगीत को भी दुख हो या सुख हो हमें अपने पास रखना चाहिए। बहुत खूब अर्पिता जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम
1: थैंक
0: में
1: यू टू
0: आए।
1: यू ऑल्सो।
0: मोस्ट वेलकम। हमें उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, सुनती रहेंगी, हम लोगों को गाइड करेंगी, हमारे जो नए सिंगर्स हैं उनको भी गाइड करेंगी और इस फैमिली को आगे बढ़ाने में हमारा साथ देंगी। थैंक यू सो मच
1: हाँ,
0: अर्पिता
1: जरूर
0: जी।
1: जरूर, श्योर श्योर। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।

0: बजाते थे तो मैं उनके साथ गाती थी। तो ये सिर्फ एक शौक से ही मैं गाती हूँ।
1: तो आप क्या मूल रूप से बंगाली कम्युनिटी में आते हैं?
0: बंगाली हमारे बिलोंग, मेरे दादाजी तो बंगाली थे, बट यहाँ पे आने के बाद, सेटलमेंट यहाँ होने के बाद हम हिंदी ही बोलते हैं।
1: okay.
0: हम यहाँ के लोकल।
1: बहुत बढ़िया। तो अभी आप मतलब घर पे ही रहती हैं, होम मेकर हैं, घर संभालती हैं, ऐसा ना?
0: नहीं सर, मैं जॉब करती हूँ।
1: हाँ वही तो मैं पूछ रहा था। मैम,
0: मैं क्लरिकल जॉब में हूँ एज ए हेड क्लर्क अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर पे।
1: वाओ, दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत मजेदार। तो हमने जाना ओम कुमारी मैम क्या करती हैं, उनका परिवार और किस तरीके से वो वहां पर बसी, सारी पढ़ाई लिखाई उनकी वहीं पे हुई, बल्कि उनका नेटिव टाउन जो है वो भी पोर्ट ब्लेयर ही है। वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, बहुत खुशी हुई ओम कुमारी मैम की एक टैलेंट हमको पोर्ट ब्लेयर से भी सुनने को मिल रहा है। आइए दोस्तों,
0: मेरी शादी हुई है तमिलनाडु।
1: अच्छा, आपकी शादी तमिलनाडु में हुई? अरे
0: जी जी,
1: तमिलनाडु मतलब
0: मेरे हस्बैंड तमिलनाडु से है, दिंडिगल, दिंडिगल डिस्ट्रिक्ट में।
1: अरे वाह, तो अभी वो यही है कि वो वहीं है?
0: नहीं, जॉब यही है उनका, तो यही है, उनकी भी पढ़ाई लिखाई यही हुई थे।
1: ओ,
0: उनके फादर यही जॉब में थे, तो बट हमारा आना जाना एवरी ईयर लगा रहता है।
1: इंटरेस्टिंग,
0: घर हमारा वहां पे।
1: बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिये, कहाँ कहाँ से संगीतकार, गीतकार, गायक, गायिकाएं, म्यूजिशियंस हम लोगों को मुलाकात होती है, क्योंकि म्यूजिक की तो कोई सीमा ही नहीं होती ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो
0: म्यूजिक तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जोड़ देता है।
1: जोड़ ही देता है। बहुत बढ़िया।
0: अभी आपसे जुड़े हैं ना।
1: बिल्कुल ठीक फरमाया मैम।
0: म्यूजिक के जरिए ही जुड़े हैं आपसे।
1: म्यूजिक के जरिए ही जुड़ना हुआ है। बहुत खूब।
0: जरूर।
1: तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को, और ओम कुमारी मैम के गाए हुए इन गीतों का पहले लुत्फ उठाएं, टेस्ट करें, देखें क्या चीज है, और फिर आगे बढ़ें। आइए, पेश करता हूं ये गीत।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी शुरुआत और अमेजिंग गायकी हमारे देश के बिल्कुल सुदूर कोने से गूंजती हुई आवाज, बहुत खूब। चलिए ओम कुमारी मैम, अब आपको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। आप कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि अपने आप को किसी से आप तुलना करते होंगे, कंपेयर करते होंगे कि भाई मैं ऐसी होती या क्या मैं ऐसी हूं क्या या ऐसी तो नहीं हूं मैं, तो किसी से आप तुलना करते हैं अपनी?
1: नहीं सर, वैसे मैं कभी किसी से तुलना नहीं करती हूँ, बस मुझे भगवान ने जैसे बनाया है मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने आप में।
0: बहुत खूब। नहीं होता क्या है ना मैम कि अक्सर क्या होता है कि जी महिलाएं खाना बना रही हैं, फिर उनके हस्बैंड आकर उनको बोलते हैं यार तुम्हारी मम्मी जैसा तुम नहीं बना पाती हो, तो वो महिला कहती है यार तुम मेरे को मेरी मम्मी से कंपेयर मत करो, मम्मी तो इतना शानदार खाना बनाती थी लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया है, तो उस तुलना की बात कर रहा था मैं।
1: नहीं, खाना तो मैं बना लेती हूँ, बचपन से ही खाना बनाने का शौक था, मम्मी के साथ बनाती थी बहुत छोटे उम्र से
0: जी,
1: तो कर लेती हूँ, बस अपने मदर के नक्शो कदम पे चल के सब कुछ सीखा है।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लेकिन फिर भी किसी से कभी तुलना करने की इच्छा नहीं होती कि यार मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे, ऐसा कुछ?
1: नहीं कभी नहीं।
0: अरे वाह, ये अच्छी बात है, अपने आप में संतुष्ट होना दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। आप संतुष्ट है ना तो आप जिंदगी में आराम से जी लेते हैं, अदरवाइज जलन जलन में बड़ी गाड़ी ले लो, बड़ा घर ले लो, ज्वेलरी ले लो, ये ले लो, ईएमआई लोन, आदमी बेचारा कुचल के रह जाता है। संतुष्ट होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सर,
0: बहुत बढ़िया बात कही ओम कुमारी जी, ये एक बहुत प्यारा लेसन हम सब लोग ले सकते हैं। चलिए इन गीतों का आनंद उठाएं जो ओम कुमारी मैम ने हमारे लिए गाए हैं, तैयार किए हैं। लीजिए, पेश करता हूं।

0: बहुत सुंदर।
1: चलो थोड़े से अपने संगीत के बारे में बताओ। यूं तो आपने बताया मुझे कि आपके पिताजी को गाने का शौक था, उनके पास हारमोनियम था, तो आप उनके साथ गाती थी। लेकिन आपको माना कि आपने कहा कि शौक किया गाती हैं आप, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
2: जी।
1: फिर भी गायकी में या संगीत में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मेरे कहने का मतलब है, गजलें पसंद हैं, भजन पसंद हैं, फोक म्यूजिक पसंद है, बॉलीवुड पसंद है, क्लासिकल पसंद है? अब देखिए इसमें ना दोनों चीजों मिक्स कर लीजिएगा, गायकी भी और सुनना भी। जरूरी नहीं है कि आप क्लासिकल गा ही पाए, लेकिन हो सकता है क्लासिकल सुनने में अच्छा लगता हो। सो अपनी पसंदीदा संगीत के बारे में हमें बताइए।
2: बिल्कुल सर, एक्चुअली बचपन से ही मैं भजन बहुत गाती थी, क्योंकि घर के पास ही मंदिर था तो भजन गाना होता था हमेशा। और उसके बाद में बचपन से ही स्कूल में भी जो भी पार्टिसिपेट होते थे, कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी प्रोग्राम होता था, तो मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था और मैंने किया भी है। और उसके बाद क्लासिकल तो मैंने कभी सीखा नहीं कहीं पे भी, बस लिसनिंग मेरा शौक था, शुरू से गाना सुनने का शौक था। तो जब भी मैं किचन में काम करती थी तो सबसे पहले मैं अपना रेडियो ऑन करती थी और पुराने गाने जो लता जी के हैं, आशा जी के हैं, जो भी है, मुकेश जी के, किशोर जी, इन सभी के गाने, मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है, तो वो गाना चला देती थी और मैं अपना काम करती थी। तो ये मेरा शौक था बचपन से।
1: बहुत खूब, ये चीज होती है खूबसूरती दोस्तों। इसी तरीके से हम अपने संगीत को एंजॉय करते हैं, संगीत को अपने जीवन में उतार लेते हैं। आपको सच बताऊं ओम मैम, मैं कोई ऐसा संगीत का बहुत ज्यादा प्रेमी बचपन में या आगे बढ़कर नहीं था, लेकिन खास करके जब ये प्रोग्राम्स बनाने शुरू किए हैं ना, जब से आप जैसे गायकों से मुलाकात होती है ना, तब से मेरी संगीत के प्रति जो श्रद्धा है, मोहब्बत है, लगाव है, वो बढ़ता ही जा रहा है। एवरी सिंगल डे मतलब संगीत मेरे लिए एक पूजा की तरह बनता जा रहा है। बहुत खूब।
2: बिल्कुल, संगीत एक पूजा ही है। अगर आप संगीत को अपनी जिंदगी में रखोगे तो कभी कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा।
1: बड़ी
2: संगीत ऐसा है।
1: बहुत सुंदर। तो चलिए आइए दोस्तों इसी पूजा में हाथ बटाते हैं ओमपुरी में, ओम मैम का, और सुनते हैं ये प्यारा प्यारा सा गीत उन्हीं की आवाज में जो उन्होंने हमारे लिए रिकॉर्ड किए हैं।

0: बहुत खूब। अब कई बार ये होता होगा ना, जैसे अभी अभी मेरी जबान फिसल गई थी, है ना, आपको ओम कुमारी की जगह लोग ओमपुरी बोल देते होंगे। अब सोच के देखो, इनमें तो तुलना ही नहीं हो सकती, कहां ओमपुरी साहब और कहां, मतलब आई मीन कहां ओमपुरी और कहां ओम कुमारी मैम, तो लेकिन फिसल जाता होगा।
1: शब्द ही ऐसा है ना, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है इसी।
0: क्या बात कह दी, और अब बाप रे बाप। चलो, इसी बात से मेरे को एक चीज ख्याल आ रही है, जब आपने कहा कि इसी शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, वैसे भी ओम की जो ध्वनि है वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है, वो सबसे पहला स्वर है बेसिकली संगीत का। तो इस बात से कनेक्ट होके लग रहा है, आपके पोर्ट ब्लेयर में कल्चर किस तरीके का है मैम? क्या ये पोर्तुगीज कल्चर है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, तमिल है, बंगला है, किस तरीके का कल्चर है वहाँ? और वहाँ मंदिर वगैरह है?
1: सर, यहाँ पे सभी तरह के कल्चर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं। हम इसलिए कहा ना मैंने कि ये मिनी इंडिया है।
0: ओके।
1: एक्चुअली यहाँ पे जब जापानीज का कब्जा था, तो उससे पहले जब ये गुलाम था हमारा देश, तो उसके बाद जब कैदी बाहर से सब जो आए थे वही यहाँ पे आके सेटल्ड हुए हैं।
0: ओके ओके।
1: तो उसके बाद ही फिर यहाँ पे तो हर तरह के लोग आते हैं, फिर कई गवर्नमेंट जॉब वाले बाहर से आते, डिफेंस एरिया है यहाँ पे, डिफेंस का एक बेस है अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार कमांड, यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, सभी जाति के लोग आते हैं, सभी लैंग्वेजेस के लोग हैं, तो यहाँ पे ऐसा धर्म का या कोई ये नहीं है, सभी धर्म के लोग है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सभी है।
0: Okay.
1: और सब लोग प्यार से रहते हैं यहाँ, यहाँ की सबसे अच्छी बात यही है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, अमेजिंग। और बाकी क्या, जैसे लोकल वहां पर, चलिए ठीक है, मान लिया कि एक आर्मी बेस हो गया, तो आर्मी पर्सनल्स बहुत होंगे, और क्योंकि मेरे ख्याल से अंडमान निकोबार शायद यूनियन टेरिटरी हुआ।
1: यस,
0: तो
1: yes,
0: उसके सारे और सारे ऑफिशियल्स होते होंगे, लेकिन फिर भी वहां का लोकल व्यापार क्या होता है ओम मैम, कोई लोकल बिजनेस वहां पर जो होता हो?
1: यहाँ पे फिशिंग होता है, फिशरमैन्स होते हैं, यहाँ पे एक्चुअली कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है बस, और लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं, धान
0: अच्छा।
1: उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं।
0: ओके।
1: और अभी तो फिर भी एडवांस हो रहा है, तो सभी लोग अपना अपना बिजनेस शुरू किए हैं, कोई कुछ दुकान खोल रहा है, कोई कपड़ा का दुकान चला रहा है, तो थोड़ा बहुत अभी बढ़ रहा है,
0: डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है।
1: डेवलपमेंट हो रहा है।
0: होता क्या है मैम,
1: टूरिज्म, टूरिज्म है, टूरिज्म सबसे ज्यादा है यहाँ पे। टूरिस्ट आते हैं बहुत सारे जगह से आते हैं, सारे इंडिया से, बाहर से फॉरेनर्स आते हैं। अच्छा स्पॉट है, अच्छे बीचेस है, यहाँ का एक राधानगर बीच तो वर्ल्ड में 7 नंबर पे है, हैवलॉक में, एशिया का।
0: ओके, बहुत खूब। तो जाहिर से बात है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में, क्योंकि हम लोग बहुत कम ही जा पाते हैं, इसलिए बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है कि कैसा तो मौसम होता होगा वहां, क्या कल्चर होता होगा, कैसे लोग वहां रहते होंगे, क्या खाना पकाते होंगे, सब्जी कैसी मिलती होगी।
1: आप जब तक आओगे नहीं तो देखोगे कैसे सर, आप आइएगा जरूर।
0: जरूर जरूर मैम, जरूर। तो चलिए, चलते चलते ये भी बता दीजिए कि वहां पर आने का सबसे अच्छा कौन सा, साल में कौन सा वक्त रहता होगा जब अच्छा लगता होगा, या
1: नवम्बर दिसंबर?
0: तो नवम्बर दिसंबर में तो बहुत भीड़ होती होगी मैम।
1: हाँ, भीड़ तो रहती है, यहाँ आते रहते हैं टूरिस्ट, हमेशा आते हैं हर सीजन में, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज बारिश होती है कभी
0: right.
1: भी, वैसे कोई मौसम का ये नहीं, कभी भी बारिश होगी, कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो दोस्तों दिस इज इम्पोर्टेंट। जी कहिए कहिए।
1: नवंबर दिसंबर इज द बेस्ट फॉर टूरिस्ट।
0: ओके, तो दोस्तों कभी भी प्लान बना

0: बहुत बहुत बढ़िया। तो मैम आपको क्या लगता है अगले 5 साल से 10 साल के बीच में आपकी क्या प्लानिंग है, मतलब अपने म्यूजिक से संबंधित या फिर अपने परिवार से संबंधित, आप कैसे ग्रो करना चाहते हैं? कुछ सोच के रखा होगा कि भाई वहां पर मैं एक बंगला बनाऊंगी या बेटा बेटी को यहाँ पर पढ़ाऊंगी या फिर मैं अपनी म्यूजिक एल्बम लॉन्च करूंगी, कुछ ऐसा सोचा है?
1: नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। एक्चुअली भगवान ने मुझे कोई इशू नहीं दिया है। मैं अपने भाई बहन के साथ रहती हूँ, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं हम, मेरे दो भाई पूरी विद फैमिली, और हम एक परिवार एक ज्वाइंटली रहते हैं, तो एक वही खुशी है। और म्यूजिक मेरा शौक है, मैं गाती हूँ अपने घर में अपनी खुशी के लिए, और ऐसा कोई मेरा अभी कुछ प्लानिंग तो नहीं है आगे के लिए।
0: तो नहीं मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि म्यूजिक की एल्बम वगैरह बनाइए ना, आजकल तो कितना आसान हो गया है। या तो वहां पे पोर्टबेयर में भी कोई ना कोई स्टूडियो होगा, या फिर छोड़िए स्टूडियो, आप तो अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कीजिए, गाना गाना शुरू कीजिए और डालिए उसके ऊपर, आपकी एल्बम वैसे ही तैयार हो जाएगी।
1: देखते हैं सर, कोशिश करेंगे आगे चल के, अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं बना है।
0: अच्छा,
1: आगे सोचेंगे।
0: बहुत बढ़िया, यही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आगे बढ़ते रहने के लिए कोई ना कोई टारगेट जरूर रखिए, जिसको चेज करेंगे तो हम लोग बहुत खुश रहते हैं। बहुत खूब,
1: बिल्कुल।
0: आइए फिर इन गीतों का लुत्फ उठाइए, आनंद लीजिए, दूर दराज पोर्ट ब्लेयर से गूंजती हुई आवाज हमारे कानों में पड़े, आइए सुनते हैं।